0: हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए। अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का
0: हाँ जी
1: 47वां अध्याय है, और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के, और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है, तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थत शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण। प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया, पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है। क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषादुतारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तमः निन्यूड़ गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिस्

0: स्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया। क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि एक बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ता।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं, तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की, और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुश्य विलोकयन्त्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विवल भाव विवल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया है कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैल प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषये अतिव असि तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि

0: एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
3: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
4: जी।
5: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
4: बिल्कुल।
5: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
4: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
4: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
3: जी,
4: आपको बदलना पड़ेगा
3: जी।
4: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
3: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसी ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
4: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर। नमस्कार।
6: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
7: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
6: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
7: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
6: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
7: तो फिर एक वादा करो।
6: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
7: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
6: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली. अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. You know, it's most important is to understand कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को दे.
1: आपसे देख ली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा हाँ. में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी, एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बींग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके. बट वॉट इज माई मेन पर्पज इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल, यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके
1: आई फील ब्यूटिफुल।
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझ

0: देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवर सेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना, या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है। उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
0: वॉच इट
1: एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
0: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद

0: टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन. ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग. तो अवेयरनेस, अक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस. और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान भी कर सकते.
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज़ अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता. नो, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन. बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. सो अगेन, इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो, अवेयरनेस चाहिए. बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
1: यस, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट वे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ. इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो. सो इट इज जस्ट
1: जस्टिफिकेशन ऑफ अ
0: वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
1: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है. तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा. एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस, शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. लेकिन मेरे अगर मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
0: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
0: ओम शांति.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन और हमारे साथ आज नए एक्सपर्ट जरूर जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सभी लिसनर्स तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं या फिर गाना सुनना चाहते हैं, गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है भाई, अपना मोबाइल फोन उठाना है और व्हाट्सएप करना है। नंबर है 8010781078। आप नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का कर रही हूँ इंतजार। और इसी के साथ चलिए अभी आपके लिए बड़े कमाल के गाने लेकर आई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी होने वाली है बातें। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हैप्पीनेस कोच है, हेल्थ एक्सपर्ट है और साथ ही साथ योग गुरु भी है। तो चलिए उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तो साक्षी आपके साथ और बहुत सारी करिए बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

मशहूर हो जाए। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा, संडे का दिन है ना, तो हमें मन करता है कुछ ऐसा खाने का, यानी कि एग हो गया, ऑमलेट हो गया, सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट में हमने जो है वो एग खा लिया है, तो ऐसा मन कर जाता है, संडे वाले दिन ऐसा होता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बाजार से जाके लेकर नहीं आते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, अपने आप आ जाती है चीजें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थे जहां तक एक तरफ सारे जो कस्टमर्स हैं उनको घर बैठे आसानी से सामान उपलब्ध कराया है, वहीं देखिए कई सारी जो क्वालिटी है वो खाने की ना जरूरी नहीं है, एकदम उम्दा क्वालिटी में आए और कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में FSSAI ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अंडे की क्वालिटी को लेकर जवाब मांगा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अंडे जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडों को स्टोर कैसे जो है करें, और साथ ही साथ उन्हें खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक अंडे नॉर्मल तापमान पर 28 to 30 degrees Celsius में 10 to 12 days के लिए रह सकते हैं, तब तक के लिए फ्रेश है, इसके बाद नहीं। इसके बाद वही ज्यादा गर्मी के मौसम में अंडों की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, और इस तरह से उमस और ज्यादा तापमान अंडों की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। और इसके अलावा FSSAI की माने तो अंडों को रेफ्रिजरेटर शेल्फ या एग ट्रे में ही रखना चाहिए, अलग से आप उसे कहीं और स्टोर ना करें, एग ट्रे में ही रखें, जिससे कि तापमान बना रहता है, सही रहता है। साथ ही FSSAI का जो कंज्यूमर को ये भी कहना है कि अंडों को उसी शॉप से खरीदें जहां आपको लगे कि ठंडा तापमान रहता है, जहां पर हवादार होने के साथ साथ अच्छे से वो कवर भी रहती है, वहीं से आपको अंडे जो है वो खरीदने चाहिए। अंडे सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए इसका सेवन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर देखिए ये ज़्यादा दिन के अंडे जो है वो हो जाते हैं, तो उसे ना खाएं, वो आपके सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी बॉडी देखिए 9 अमीनो एसिड नहीं बना सकती, तो एक अंडे में जो 9 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें सभी 9 अमीनो एसिड होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत होती है, और ये इस तरह के अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड इसी वजह से माना जाता है। तो इसीलिए एग खाना अच्छा है, लेकिन उनकी एक्सपायरी चेक करके, क्या वो ख़राब तो नहीं हो गया। अभी पिछले कुछ दिनों में आपको मैं एक रियल बताती हूँ इंसिडेंट, मैंने भी अंडे ऑर्डर करे और 2 मिनट या 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद वो आधे घंटे बाद अंडे आ गए। अच्छा, अंडे आने के बाद जब मैंने उनको एक को क्रैक किया, उनको जैसे मैंने क्रैक करके उसको डाला, तो उसका योक और उसका जो वाइट पार्ट होता दोनों मिक्स था, यानी कि अंडा ख़राब था और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि एक अंडा है, उसे फेंक दिया। दूसरा अंडा देखा तो अंदर से वो ब्लैक था, यानी कि अब अंडे गर्मी की वजह से सड़ रहे हैं। और इसी वजह से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप अंडे ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप उसको देखिए ये सोच के ना खरीदें कि वो बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा है। हो सकता है अगर वो इतनी ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा है तो अंडा ख़राब भी हो सकता है, इसी वजह से वो कम कीमत पर मिल रहा है। तो कोशिश ये करें कि बाहर जाके मार्केट जाके देख परख के अंडा लेकर के आए, क्योंकि आप अपनी सेहत के साथ ऐसे में खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे तो खराब हो ही रहे हैं, सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, लेकिन अंडों को आप खुद जाके खरीद के लेकर के आए ताकि आपकी सेहत बनी रहे। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक और होंगी बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील बैड।

0: बमक बम बमक बम बमक बम बमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

वेलकम बैक रेडियो मैडम रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त वक्त वक्त, जी हाँ, अब वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैडम रचना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपना इंटरनेट ऐप हमारा जो है वो डाउनलोड करना है अपने फोन में। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और झट से हमारे इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए आप। और साथ ही अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। जी हां, तो कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, अभी 2 दिन पहले ही जो है पर्यावरण दिवस रहा, 5 तारीख को जो है 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है। तो इस पूरा ये जो हफ्ता है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं पर्यावरण दिवस, एक बहुत ही खास दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: देखिए, पर्यावरण दिवस मनाने से अच्छा है पर्यावरण के बारे में एक अपने सोच और बुद्धि का विकास करना, एक हमारी समझदारी जो है पर्यावरण के प्रति खास करके जरूर अपने अंदर में जागृत करना चाहिए। क्योंकि जो आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जरूर सोचिए। आप आए हैं, आप कल चले जाएंगे, लेकिन आप अपने पीछे क्या छोड़ करके जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को फायदा देगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पर्यावरण के प्रति सजगता का यह दिवस है और सजगता का यह समय है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड वेलबींग, की किस तरह से जुड़ाव जो है मन का वो होना चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस बारे में और आपसे जानना चाहूँगी मैं, कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज है संडे का दिन और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो ये कि सबसे पहले ये आप बताएं कि नेचर और वेलबींग का जो कनेक्शन है वो क्या है और ये मेंटल हेल्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
1: देखिए, नेचर और वेलबींग का जो है इनसेपरेबल कनेक्शन है। नेचर है तो वेलबींग है, वेलबींग है तो नेचर है। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है
0: जी।
1: एक ही सिक्के के दो पहलू का नाम है, इस तरह से समझिए आप। अगर आप प्रकृति के गोद के बीच में अगर आप हैं, पर्यावरण के संतुलन के साथ हैं, तो आपका स्वास्थ्य स्वतः अच्छा रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा
0: जी।
1: इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति के बीच में अपने आप को तैयार किया, अपने आप को सृजन किया। क्या सृजन किया? अपने मन के विकास के लिए। मन की उच्च अवस्था को उन्होंने कहाँ प्राप्त किया? किसी 5-स्टार होटल में नहीं, मॉडर्न एमिनिटीज में नहीं। वो कहाँ पर जाकर के साधना करते थे? हिमालय में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों के किनारों में। वहां पर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिलता था, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती थी, मन की शांति, जो पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिलता था उनको वहां पर। इसलिए पर्यावरण और मन दोनों बहुत ही जुड़ाव है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है। एक ही सिक्के के दो पहलू का नाम है। अगर पर्यावरण है तो मन स्वस्थ है, अगर मन दुखी है तो पर्यावरण को पकड़िए। देखिए, किसी दिन आप अगर बहुत तनाव में रहते हैं, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आप तनाव में रहते हैं, 1 घंटे के लिए मोबाइल को छोड़ दीजिए, डिजिटल कनेक्शन को आप डिस्कनेक्ट कीजिए, सीधे किसी पार्क में जाइए, साइलेंस होकर के आप बैठिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा सिर्फ पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखिए आप। जब आप लौटेंगे आपका मन बिल्कुल चेंज मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आज के स्ट्रेसफुल ये जो लाइफस्टाइल है, इसमें नेचर के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करना हमारे माइंड के लिए किस तरह से, जैसे कि आपने अभी बताया, लेकिन और किस तरह से जो है हमें जो है अफेक्ट कर सकता है, तो वो जरा हमें बताएं।
1: देखिए, पतंजलि योग सूत्र की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें यम और नियम की बात होती है। तो नियम में हम आ रहे हैं जिसमें पतंजलि ने लिखा है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्ध, स्वच्छता। ये स्वच्छता क्या है? हम अपने शरीर को तो स्वच्छ करके रख रहे हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं,
0: करेक्ट,
1: लेकिन अगल बगल के जो वातावरण है वो भी हमारी दायित्व है कि हम उसको कैसे हरा भरा रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि आप का जो एक इनसेपरेबल कनेक्शन है प्रकृति के साथ बना रहे।

0: इसीलिए योग सूत्र में भी इसकी बातें होती है
1: जी।
0: और जब अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो एक वर्ड आता है यौगिक इकोलॉजी। यौगिक इकोलॉजी का अर्थ होता है पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना।
1: करेक्ट।
0: जहाँ मन का पूर्ण विकास हो, चेतना का पूर्ण विकास हो, और आप स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, जिसको हम कहते हैं आत्म अनुशासन में रहना, आत्म संयम को सिद्ध करना और आत्म साक्षात्कार करना। इसलिए पर्यावरण का बहुत ही जरूरत है एक दूसरों के लिए। मन स्वस्थ तभी होगा जब आपका पर्यावरण स्वस्थ होगा।
1: बिल्कुल।
0: आपका वातावरण अच्छा होगा, आपके अगल बगल के जो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको तैयार करना होगा। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए जो है पर्यावरण के साथ आप समय दीजिए। हम तो पूरी दुनिया में मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। हम बहुत इजी ले लेते हैं, हम सीरियस नहीं होते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, क्या आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने क्या किया है पर्यावरण के लिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम 5 पौधों को लगा दीजिए।
1: जी।
0: और खास करके जिन लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मैं आपके माध्यम से, इस रेडियो मानव रचना के माध्यम से, उन लोगों को अपने जन्म दिवस पर एक पौधे लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। लगाना नहीं है, संरक्षण करना है, उसको बड़ा करना है।
1: बिल्कुल।
0: अपने जीवन में अगर आप 50-60 के होंगे तो 60 पौधे लग जाएंगे, 70 पौधे लग जाएंगे। अपने जीवन के जन्मदिन पर आप एक पौधा लगाइए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा पौधा लगाइए।
1: बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, कुछ और भी सवाल हैं जो आपसे जरूर जानना चाहूंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, तो जरूर जान सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, और डॉक्टर राजेश आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी। अच्छा डॉक्टर राजेश, जैसे कि हम बात करें नेचर से, क्या ऐसा हो सकता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो चैलेंजेस हैं, वो उनको मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है?
1: बिल्कुल सही चीज आपने पूछा है। आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आल्सो, आप पर्यावरण के साथ अगर जुड़ेंगे तो ठीक होगा। जब डिप्रेशन अगर हो जाए आदमी को, तो मैं तो कहता हूँ चले जाओ कहीं पहाड़ों में छुट्टियों मना के आओ, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ थोड़ा समय गुजार करके तो देखो।
0: डॉक्टर राजेश, मेरा ना यहाँ पर एक सवाल आता है कि कई सारे लोग हैं जो अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां भी हैं या एक लंबा टाइम पड़ा है, तो क्या करते हैं लोग कि फैमिली के साथ चले जाते हैं पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन इस वजह से पहाड़ों पे भी भीड़ हो गई है। तो क्या सिर्फ पहाड़ों के पास जाके ही आप अपने मन को शांत कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय नहीं है कि घर पर भी, क्या इनडोर प्लांट्स के साथ या घर पर रह के भी मन को शांत किया जा सकता है या नहीं?
1: हाँ, घर में भी हम कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं अपने छोटे मोटे गार्डन में, नहीं गार्डन है तो गमले में आप बागवानी कर सकते हैं, प्लांट का केयर कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, पेड़ पौधे फूलों को आप देखभाल कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। पहाड़ पौधे का अर्थ है कि पहाड़ और जंगलों में जाने का अर्थ, ये बात सही है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एमिनिटीज में हम जीना सीख चुके हैं, हमारे पास तो अब जंगल झाड़ रहे नहीं। जहां हम रहते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, अगल बगल दो चार हैं, नदी जो थे अब वो नाले बन गए हैं। जहां नदियां बहती थी, मैं अपने घर में जहां मैंने अपने बचपन गुजारा है झारखंड में, वो पहले नदी था जहां हम लोग नहाया करते थे, अब वहां वो नाला बन गए, उनमें सब लोग सीवेज वाटर डालना शुरू कर दिए। तो ये तो हमने कितना गलत काम किया ना।
0: बिल्कुल,
1: मुझे देख के रोना आता है। मैं जब लोगों को कहता हूँ यहाँ हम लोग नहाया करते थे बचपन में, अब सब लोगों ने उसमें अपने सीवेज के नाले निकाल दिए उसमें, तो ये हमारी गलती है। हमें इसका ख्याल रखना होगा, कुछ तो आने वाली पीढ़ी के लिए रखना होगा। इसलिए लोगों को अब तो रहा नहीं शहर में जहां हम रहते हैं, तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ता है पहाड़ों में, तो ऑब्वियसली भीड़ हो जाती है।
0: और इस वजह से जैसे अगर हम पर्यावरण की भी बात करें, तो पहले जो टेम्परेचर होता था पहाड़ों पे आप जाते थे तो मैक्सिमम वो जाता था 32-33 ये मैक्सिमम होता था, लेकिन आज के टाइम में पहाड़ों में भी टेम्परेचर जो है दिन के टाइम वो मेजर किया गया है कि 40-45 तक पहुंच गया है।
1: देखिए एक चीज और भी जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पहले जो घर बनते थे ना, वो दूसरे तरीके के बनते थे, मोटे मोटे दीवार होते थे, ख्याल रखा जाता था। आज जो पतले दीवार होते हैं और इसके बाद जो हम बड़े बड़े गिलास लगाते हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि बड़े बड़े गिलास मत लगाओ, क्योंकि ये जो गर्म होती है तो फिर हीट को पर्यावरण को ही देती है। इसलिए गिलास कम से कम उपयोग कीजिए, जितना जरूरत हो मिनिमम गिलास का उपयोग कीजिए अपने घर में। देखिए घर में हीट कम होगा और पर्यावरण को भी, अभी लोगों ने पूरी बिल्डिंग बनाई है और गिलास लगा दिया, तो उसके तो हीट होंगे ही ना। एयर कंडीशन हम चलाते हैं, वो भी तो बाहर, फाइनली हीट तो बाहर ही फेंक रहे हैं।
0: करेक्ट,
1: सारे जगह कंक्रीट पूरे बन गए हैं चारों ओर, तो कंक्रीट का भी तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो हीट बढ़ रही है। तो इसलिए अब पर्यावरण का जो गर्म, इतनी गर्मी जो लोगों को मिल रहा है, इसका जो मेन जो सोर्स जो है, मनुष्य ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, कुछ और भी सवाल हैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, और संडे का आज दिन है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी कि रिसर्च के मुताबिक ग्रीनरी और नेचुरल सराउंडिंग्स हमारे मूड और इमोशन वेलबींग को किस तरह से इम्प्रूव करता है, और साथ ही आजकल जो नेचर थेरेपी है या ग्रीन थेरेपी है, इसका मतलब क्या है या ये कैसे काम करती है, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, हरा रंग जो है वो हरियाली का है, वो खुशियां प्रदान करता है, एक पॉजिटिव देता है, आपके ब्रेन के वेवलेंथ को वो मेंटेन करता है, खास करके अल्फा वेव को, इसलिए वो बहुत ही जरूरी है। जहां भी आप रहते हैं घर में, इंडोर प्लांट रखिए 2-4, नहीं कुछ हो तो एरिका पाम जरूर रखिए, मनी प्लांट रखिए, इससे ऑक्सीजन का भी लेवल बढ़ता है। तो इसलिए हरा रंग जो है आपके जीवन का यह सार है, चाहे वह खाने के समय में आप यूज कीजिए, कुछ ना कुछ हरा भरा, और अगल बगल भी रखिए। इसलिए हरा के साथ जो मन का एक गहरा लगाव है, मन के साथ आपके पूरे स्वास्थ्य का एक कनेक्शन है इस रंग के साथ, इसलिए हरियाली में जीना ज्यादा अच्छा है। कोशिश कीजिए अपने अगल बगल कुछ हरे पौधों को घर में रखिए, इससे क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई होगा, दूसरा क्या कि मूड जो है स्कैटर्ड जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब आप पेड़ पौधों को देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना काम डाउन हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मॉर्निंग वॉक, सनलाइट या फ्रेश एयर को मेंटल हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है वो बताएं।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक में जाएंगे 1 घंटे का, शुरू कीजिए 10 मिनट से, 10 मिनट में आप देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, फिर उसको 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट, हर बार 5 मिनट बढ़ाते चलिए, और 1 घंटा जब आप आ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने अपने लिए क्या किया है। जब आप करते हैं, आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन होती है पूरे सेलुलर लेवल पर, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करती है आपकी मॉर्निंग वॉक। ना दौड़ना है, ना तेज चलना है, और ना स्लो चलना है, मॉडरेट वे में आप वॉक कीजिए, लेकिन बिना फोन के साथ, बिना फोन के साथ, क्योंकि और हम लोग क्या करते हैं, कान के अंदर बहुत सारे वो स्पीकर वगैरह लगा लेते हैं, गाना सुनते जा रहे हैं, नहीं, उसको भी हटा दीजिए, अपने अगल बगल देखते चलिए, अनुभव कीजिए, फील कीजिए, थोड़ा अपने लिए, अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। इसमें आपकी टोटल वेलबींग फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी और रिपेयर हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए 1 घंटे का वॉक तो जरूर कीजिए, देखिए आपकी सारी बीमारियां किनारा लग जाएगी।
0: बिल्कुल। देखिए, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से जानना, तो जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, मैं अब आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी बच्चों और टीनेजर्स के बारे में। क्या बच्चे और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में नेचर का कोई खास रोल होता है? क्योंकि बचपन में तो मतलब एक होता है कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप जॉब कर रहे हो तो आप थोड़ा ब्रेक लेके आप नेचर में जाइए, लेकिन बच्चों और टीनेजर्स के लिए भी क्या ये सेम चीज़ है?
1: देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है गार्डनिंग करने में, मिट्टियों से खेलने में। खास करके मैं बताता हूँ कि एक जनरेशन पहले जो मेरे फादर लोग थे, हम लोग जिसमें, हम लोगों का समय बचपन में मिट्टियों के साथ जुड़ा। पहले सुनते थे, माँ डांटती थी बच्चों को, मिट्टी मत खाओ, मिट्टी मत खाओ। आज के बच्चों को तो मिट्टी मिलता ही नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अब तो मैं नहीं सुनता हूँ कि बच्चे मिट्टी खाते हैं, क्योंकि उसकी सौंध की खुशबू ना बच्चे के मन को आकर्षित करती थी और वो मिट्टी डालता था मन के मुँह के अंदर और उसका अनुभव करता था। अगर आप भागवत पुराण को खोलेंगे तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बाल रूप में एक बार मिट्टी खा ले तो यशोदा आकर के बोले, मुंह खोलो दिखाते हैं। भगवान ने मजा किया, बोला चलो माता के लिए मैं मुंह खोलता हूँ, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा तो अकस्मात हो गई, ये मैं क्या देख रही हूँ, पूरा संसार दिख रहा है। और फिर भगवान ने कहा, अरे मैंने तो मुंह दिखा दिया, अपना ब्रह्मांड दिखा दिया, अब ये तो माता स्वरूप हमारे साथ नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर खेल खेल लिया, सारे मेमोरी खत्म कर दिए, डिलीट कर दिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बच्चों को समय दीजिए मिट्टी से जुड़ने का, गार्डनिंग कीजिए, पेड़ लगाना है, फूल पौधे का ख्याल करना है, वाटरिंग करना है गार्डन में, चिड़ियों के लिए पानी देना है, चिड़ियों के लिए खाना देना है। ये सब तो छोटे छोटे चीज हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जीव जंतु पर्यावरण के प्रति, और ये बहुत ही उनके अंदर एक विकास होता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जैसे बच्चे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका जुड़ाव भी होना, लेकिन आजकल जो फ़ोन की एडिक्शन है ये नहीं छूट पाती है। बच्चे को हम कितना भी अब बोलें तो उनको वो फोर्सफुल डिसीजन लगता है पेरेंट्स का कि नहीं, गार्डनिंग जो है वो नहीं करनी है। एक बार को अब वो बोल भी दें लेकिन फ़ोन का एडिक्शन, तो कैसे ये नेचर जो है वो हील कर सकता है? फोन को एडिक्शन को हटाना जो है वो कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है और कैसे होगा ये?
1: देखिए, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कि धीरे धीरे प्यार से कह करके कि अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर फोन लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे का आप समय बनाइए, कुछ नियम बनाइए। खाने के टेबल पर फोन नहीं रहेगा, पूजा के समय फोन नहीं रहेगा, गार्डनिंग हम करते हैं फोन नहीं रहेगा, वॉकिंग करते हैं फोन नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे।
0: तो क्या अगर नेचर की बात करें हम, तो उसके साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ, तो क्या हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है?
1: ऑफ कोर्स, इंटायर आपका पूरा बायोरिदम चेंज होता है। जो आपकी बॉडी की एक जो इंडिविजुअल रिदम है, ये जो बायो रिदम है, ये आपके कॉस्मोस के साथ, कॉस्मिक रिदम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप वॉकिंग करते हैं, पर्यावरण से जुड़ते हैं, तो आपके पूरे स्लीप पैटर्न के अलावा भी, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है, थायराइड की इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, यही सब तो मिसमैनेजमेंट है। तो सारे रिदमिक जितने हैं आपके, मैंने बोला आपको कि शुरुआत आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म से होता है। एक बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपका ट्यून हो गया, तो 99.9% डिजीज आपने रिजॉल्व कर लिया।
0: बिल्कुल। और साथ ही मेंटल वेलबींग के लिए अगर आप अपने लिसनर्स को कौन सी सिंपल नेचर बेस्ड डेली हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए आप सलाह देंगे, वो जरा हमें बताएं।
1: सबसे पहले वॉकिंग जरूर कीजिए, और दूसरा, जब आप डे शुरू करते हैं तो पहला चीज जो खाना इंटेक है ना, उसको चबा के खाइए, चाहे वो गाजर हो, चबा के खाइए। और सलजम हो, बीट रूट हो, जो भी आप खाते हैं, ऐसा कोई भी भोजन जो आप चबा के खा सकते हैं डायरेक्ट रॉ फूड के रूप में, नहीं कुछ मिलता है, खीर आप ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए, उसको चबा के खाइए। पहला इनटेक यहाँ से कीजिए भोजन। नहीं कुछ मिलता है, कभी आप स्पिनेच लीजिए ग्रीन, उसका जूस निकाल लिए, उसको पी सकते। पहला चीज कुछ ना कुछ नेचर बेस्ड, प्लांट बेस्ड आप डालिए अपनी बॉडी को। और समय गुजारिए थोड़ा सा पार्क में जरूर, लेकिन बिना फोन के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, जिसके बाद एक और सवाल है मेरा, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैनम रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ और हमारा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ।

0: उसको भी आप नेचुरल वे में एक्सेप्ट कर लीजिए। मेन होता है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं तूफान से लड़ने के लिए। अगर घर मजबूत है ना तो तूफान कुछ नहीं करता है। घर का फाउंडेशन अगर आप बना रहे हो, घर की पिलर अगर अच्छी है तो तूफान आए बरसात आए कुछ नहीं होता है, वो बगल से निकल जाता है। इसलिए अपने फाउंडेशन को आप मजबूत कीजिए ना, उसके लिए आप समय दीजिए अपने लिए। समय कैसे देना है, अपने आप को हेल्दी वे में हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप एक्सेप्ट कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है। अरे भाई, आपके पास पूरा समय है। आपके पास सोशल मीडिया के लिए समय है। इंस्टाग्राम पर बैठते हो, रील देखते हो, घंटों निकल जाते हैं और एक घंटा आपके लिए अपने पास नहीं है। जाइए किसी पार्क में, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा जॉगिंग कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलिए, किसी क्लब में जाइए, स्विमिंग जाइए, अभी थोड़ा आप इन सब जगहों में तो जाइए, घर के चार दीवारी से बाहर निकलिए। ड्राइंग रूम में अपना समय मत गुजारिए, वो जगह आपके हेल्थ का नहीं है
1: जी।
0: आपको बाहर जाना है। जब तक आप आउट नहीं होंगे अपने अपार्टमेंट से तो आप हेल्थ रिजुविनेट नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और मैंने ये सीक्रेट आपको बताया है कि घर को छोड़िए, अगर आप प्रॉपर हेल्थ चाहते हैं, 1 से 1.5 घंटा आपको बाहर गुजारना है। अब आप डिजाइन कीजिए क्या करना चाहते हैं। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में जाइए। योग में इंटरेस्ट है, योग में जाइए। गार्डनिंग, फ्लावर का इंटरेस्ट है, गार्डनिंग करने के लिए जाइए।
1: बिल्कुल।
0: समय गुजारिए बाहर में। देखिए आप कैसे, कोई इमोशन बर्नआउट नहीं होता इसके बाद। आपकी माइंड और शार्प होती है और आप तैयार होते हो कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप अपने अंदर तैयार करते हो सिचुएशन के साथ को रिलेट होने के लिए, क्योंकि अब आपके पास एंजाइटी नहीं रहा। आप अपने आप को इतना तैयार करके रखे हो मेंटल लेवल पर कि छोटे मोटे ये सब सब आपके लिए इजिली रिजॉल्व हो जाते हैं चैलेंजेस। इसलिए तनाव आपके जीवन का हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि तनाव मुक्त जीवन है तो फिर कोई जीवन का मायने नहीं है
1: जी।
0: अरे किसके जीवन में तनाव नहीं रहा है, कृष्ण के जीवन में तो देखो, कुंती के जीवन को तो देखो, द्रौपदी के जीवन को तो देखो, राम के जीवन को तो देखो, किसके जीवन में तनाव नहीं है। इसलिए तनाव तो आपके हिस्से हैं जीवन के। इसकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक प्रयास करना चाहिए हमें। समस्याएं आती है तो समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करना, समाधान ढूंढना है। और समाधान तभी आप ढूंढ सकते हैं जब आपका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, आपकी भावनाएं जो हैं संतुलित होगी। इसलिए मन और भावनाओं का जो तालमेल है यह आपके वेलबींग से आता है। इसलिए आप अपने लिए 1 घंटा जरूर समय निकालिए बिना फोन के।
1: बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी, साझा करी, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद रेडियो मानव रचना के श्रोतागण। आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बिखेरिए।
1: बिल्कुल। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो हम लेकर के आते हैं हर हफ्ते आपके लिए, और इसमें कोशिश होती है हमारी कि आपको हम वो चीज़ें बताएं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ नोइंग द स्टार्टअप इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ नोइंग द कंट्री, इन टर्म्स ऑफ नोइंग द सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो आज का शो आपस से बहुत खास होने वाला है, करेंगे डिस्कस कौन सी इंडस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं इंडस्ट्री के बारे में जो आपको बतानी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे आज के स्टार्टअप के बारे में। बट फिलहाल कहीं जाइएगा मत, मेरा सलाम कबूल करिए, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।
2: मैं

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन US डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

हैरान हो गई थी मऊआ। फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 यूपीआई ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली यूपीआई के थ्रू की है। यूपीआई जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, यूएई ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शंस हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इसे एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइए, कम ऑन, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टेक्स से भी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: Dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na
1: मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइक।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। आरबीआई ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई काफी मदद कर रहा है। आरबीआई आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो आरबीआई इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग आरबीआई तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए आरबीआई बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो आरबीआई ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज है जो इंडियन है, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। तो उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियो कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव। ना इज्जत की

राजा बन के हम सन्यासी काम है चलते

महाराज पधारे, चिंता चरक चिलम और चेले साथ साथ में सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आई, म्यूजिकल वाइब अच्छी लगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में जो बताया वो अच्छा लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। आज की मेरी कंपनी फाइव मनी, फाइव बेसिकली फाइनेंस एंड शॉर्ट फॉर्म करके फाइव मनी इसको किया गया है। हम सब पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो हम में से बहुत लोग नहीं पूछ पाते हैं। अगर पूछ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज क्या हम अपने पैसे को समझते भी हैं? सैलरी आई, एक्सपेंसेस हुए, सब्सक्रिप्शन कट गए, यूपीआई की पेमेंट्स हो गई, और मंथ एंड में बस एक क्वेश्चन रह जाता है, भैया पैसा कहाँ गया, इतना तो कमाया था। एग्जैक्टली ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है हर एक मध्यवर्गीय इंसान की दिक्कत है, जो हर एक मध्यवर्गीय इंसान या जो सेम लूप से गुजरता है वो रिलेटेड इस चीज से कर पाएगा। ट्रेडिशनल बैंकिंग आपको आंसर देती है इसके, लेकिन अलग तरीके से देती है। ठीक है, आंसर होते हैं अकाउंट बैलेंस कितना है, ट्रांजेक्शन कब हुआ, बट नई जनरेशन को जवाब चाहिए। जवाब किस तरह के, मेरा स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, मैं कहां अननेसेसरी खर्चा कर रहा हूं, हाउ कैन आई ऑटोमेटिकली सेव एंड इन्वेस्ट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2019 में स्टार्ट हुई ये कंपनी विच इज फाइव मनी, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको एपीफाई जो है टेक्नोलॉजीज ने बनाया था, एंड अपने आप को इन्होंने पोजिशन किया है एज अ स्मार्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट इंडियंस। सो द आइडिया वॉज वेरी सिंपल, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से आइडिया आया कि पेमेंट्स इंडिया में डिजिटल हो रहे थे, लेकिन पर्सनल फाइनेंस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ डिजिटल पेमेंट, स्पेशली यूपीआई अडॉप्शन, उसके बाद फाउंडर्स को ना गैप नजर आया कि लोग ना सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बट पैसा मैनेज करना भी मुश्किल है लोगों के लिए। तो मोस्टली जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो ओल्ड पैटर्न पर चल रही थी, और इस तरीके से उनको डिजाइन किया गया था कि वो आपकी ट्रांजेक्शन तो करा सकती है, बट पैसे सेव करने का, आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का वो खासा इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो वहां पर तो ये था कि ये रहा आपका बैंक अकाउंट, आपको जो मर्जी चाहिए वो करिए। बट यहां पर ये जो जवाब लेकर के आए हैं, विच इज ये रही आपकी धनराशि, समझिए इसको, कंट्रोल करिए इसको और ग्रो करिए। ये एक नियो बैंक है, यानी कि फुल फ्लैज जैसे ट्रेडिशनल बैंक हुआ करते थे वैसा बैंक नहीं है, लेकिन बैंक की तरह ऑपरेट करता है। ओके, सो दिस इज आर टुडेज कंपनी विच इज फाइव मनी। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट कहीं जाइएगा, मैं उठ रही हूं हमारे साथ, फील गुड फील।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आए गाने। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। तो इस फाइव मनी हमारी आज की कंपनी है, इसके दो फाउंडर हैं, एक है मिस्टर सुजीत नारायणन, दूसरे हैं सुमित ग्वालानी। पहले हम सुजीत जी की बात करेंगे। सुजीत नारायणन जो हैं वो इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट नाम निकल के सामने आता है। बिफोर फाइव मनी उन्होंने गूगल के साथ काम किया है, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था गूगल पे के पीछे। मतलब पहले उसको तेज इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको गूगल पे ने एक्वायर किया था, बट उस एक पर्टिकुलर कंपनी को बनाने में, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनका आप कह सकते हैं एक मेजर रोल था इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग गूगल्स पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। इनके एक्सपीरियंस ने इन्हें सिखाया कि पेमेंट्स आर ओनली द एंट्री पॉइंट, द बिगर प्रॉब्लम इज हाउ डू पीपल मैनेज देयर फाइनेंशियल लाइफ आफ्टर पेमेंट। एंड उसके बाद जब इन्हें बात समझ में आई तो फिर उन्होंने उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काम करना शुरू भी किया। दूसरा नाम है यहाँ पर सुमित ग्वालानी। सुमित ग्वालानी गूगल इकोसिस्टम से ही आते हैं, उन्होंने काम किया कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बिल्डिंग गूगल पे इन इंडिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट दोनों फाउंडर्स के लिए था कि दोनों ने इंडिया की एक बहुत बड़ी मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था एंड लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के साथ कंफर्टेबल होते हुए उन्होंने देखा, कुछ उनका भी उसमें योगदान रहा। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट उसके बाद अगली प्रॉब्लम इन्हें समझ में आई कि लोगों को स्मार्ट बनाना है पैसे के साथ, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड दिस कंपनी व्हिच इज फाइव मनी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी बातें आपको बताई आप समझ पाए हैं। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

वेलकम बैक। शो को आगे बढ़ाएंगे। आज की कंपनी हमारी है फाइमनी। फाइमनी एक इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो D2C नियो बैंकिंग एप्लीकेशन के तौर पर इन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया था। यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आपको मिलता था, क्रेडिट कार्ड आपको मिलते थे, इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको मिलते थे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बट अभी कंपनी ने थोड़ा शिफ्ट किया है। अभी कंपनी जो है AI ड्रिवन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल होता है उसमें ये कंपनी काम कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंडिया में आइडेंटिफाई किया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ एक ऑब्जर्वेशन है उसको आप ये देखिए कि आप किस नए पैकेट में आप उसको दे सकते हैं, क्या नई प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइमनी ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी विच वॉज, आप इमेजिन करिए एक इंसान जिसकी सैलरी है 70,000 रुपए प्रति माह, 3 बैंक अकाउंट हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, UPI एप्लीकेशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर जगह पर स्कैटर्ड है। सो ही इज नॉट हैविंग एनी कंप्लीट पिक्चर। Phi wanted to become the control room of that guy's financial life. And that's when they started. अब यहाँ पर important चीज़ ये है कि exactly इनका business model है क्या? First आता है smart banking experience. Users digital savings को access कर सकते हैं through partner banks, ठीक है? Second, सबसे important चीज़, expense tracking. Instead of showing 500 rupees spent, इस कंपनी ने जवाब दिया आप स्पेंड कर कहां पे रहे हो, और मंथ का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है कि खाने पर 8,000 रुपए गए, शॉपिंग पर 12,000 रुपए गए, आपके पैटर्न रिकॉग्निशन वहां पर ज्यादा हुए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस असिस्ट, एक यूजर यहां पर मनी हिस्ट्री अपनी सर्च कर सकता है, व्हेन डिड आई लास्ट पे फॉर माई नेटफ्लिक्स अकाउंट या अमेजोन प्राइम अकाउंट, ठीक है, व्हाट वॉज माई फूड स्पेंडिंग लास्ट मंथ। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने इस कंपनी को जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपर हैंड दिया, जिसकी बदौलत लोगों ने इसको पसंद करना शुरू भी किया और एक्चुअली अडॉप्ट भी किया, कंपनी ने अपनी जगह बनाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर ऑटोमेटेड सेविंग, ठीक है। इनका एक फीचर था पहले FYT रूल्स करके, ठीक है, एवरी टाइम यू ऑर्डर अ फूड 50 रुपए ऑटोमेटिकली आपके सेव हो जाएंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा होगा, मतलब जैसे मानकर चलिए हर बार इंडिया अगर मैच जीतेगा 100 रुपए सेव हो जाएंगे, तो एक सिंपल बोरिंग सी एक्टिविटी को इन्होंने एक बिहेवियरल हैबिट बना दिया एंड इट एक्चुअली वर्क्ड। सो ये है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो इस कंपनी ने लोगों को दिया और लोगों को पसंद भी आया। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आशा करता हूँ आपको मजा आ रहा है शो सुनने में। फिलहाल एक और बार अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, फील गुड फील लाइव। अब बात करते हैं इस कंपनी की यूएसपीज की। फाइव मनी की यूएसपी है, फर्स्ट इज बिहेवियर प्लस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस एप्लीकेशन नहीं बनाई इन्होंने, इन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस नहीं किया, ह्यूमन बिहेवियर को समझा है एंड हाउ ह्यूमंस बिहेव विद मनी, इसको इन्होंने कैटर किया। क्योंकि मनी प्रॉब्लम्स आर यूजुअली नॉट मैथमेटिकल, दे आर बिहेवियरल। सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। फाउंडर्स जो हैं वो गूगल से एक्सपीरियंस लेकर के आए थे, सिंपल डिजाइन, फाइनेंशियल जागन बहुत कम, कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच उनके पास था वो। थर्ड आता है डेटा इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है, अगर आपने 20,000 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, तो 20,000 रुपए आपके गए, बट यहां पर है 20,000 रुपए आपने जो खर्च किए हैं वो कहां पर किए हैं भैया, कैटेगरी कौन सी है। तो मंथ एंड में आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपकी इतनी स्पेंडिंग है, अपने पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल बी मोर माइंडफुल अबाउट इट। तो ये वो चीजें हैं जो इस कंपनी ने चेंज करी, नथिंग लाइक कि बहुत अलग से कुछ लेकर के आए। इट्स जस्ट लाइक सिंपल एवरीडे प्रॉब्लम्स को, उनके हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, हमें दिखाना शुरू कर दिया कि तुम ये कर रहे हो। That's how this whole thing worked. Key growth drivers तो भैया इंडिया का UPI revolution रहा है obviously, क्योंकि UPI सब लोगों ने use करना शुरू कर दिया। Young working professionals, millennials, Gen Z employees, digital natives, इन सबको target किया और उन लोगों को, क्योंकि पैसे बचाने हैं, finance को समझना है, तो ये इस company को समझ में आया। Founder credibility, Google पे से आए हैं, Google पे बना के आए हैं दोनों लोग, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे से समझते हैं, मैथ को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, फाइनेंस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इंडियन कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फंडिंग का सपोर्ट भी रहा बहुत सारी कंपनी से, तो ये वो कंपनी के की ग्रोथ ड्राइवर्स बने जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया, जिनकी बदौलत ये कंपनी उठी और वहां से आगे बढ़ पाई। तो यूएसपी और की ग्रोथ ड्राइवर्स हमने आपको बताए, बट अगेन आई एम सेइंग कि हर बार गुंजाइश होती है कुछ और बेहतर कर देने की, तो ये कभी मत सोचिएगा कि कुछ परफेक्ट बन चुका है। नथिंग इज लाइक परफेक्शन, कीप वर्किंग। एक और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: Alright, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा है शो सुनने में। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो 8010781078 इस नंबर पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर वक्त है शो को कंक्लूड करने का। हमने फिनटेक इंडस्ट्री की बात करी, हमने फाई हमारी जो आज की कंपनी है उसकी बात करी। बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम फाई मनी ने सॉल्व करी है जो एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसको आवाज नहीं दे पा रहे थे हम लोग कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये कंपनी आपको बताती गई कहाँ जा रहा है और बचाना चाहते हो, लो चलो इसमें भी हेल्प करते हैं आपकी। लाइक दिस कंपनी हेल्प्ड अस। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपनी फाई मनी। आज की हमारी कंपनी रही, अच्छे से हमने आपको बताया। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा अगर आपको अपने को स्टार्ट करना है तो, कि कुछ भी परफेक्शन नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, हमेशा गुंजाइश होती है कुछ और बेहतर करने की, ये अपने साथ हमेशा याद रखिएगा बस। फिलहाल इसी नोट पर चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी पिलौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। एक्सपर्ट जुड़ते हैं हर हफ्ते हमारे साथ इस प्रोग्राम में, जो देते हैं आपको हेल्थ रिलेटेड एक खास टॉपिक पर अपनी बेहतरीन एडवाइस। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसे कैपिटल के फॉर्म में भारत अब पहचानने लगा है और पूरी दुनिया में हमें कहा जाता है कि हम सबसे ज्यादा पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के भारत में ही देखते हैं। जी हाँ, डायबिटीज, मधुमेह कहने को एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिंपल सी प्रॉब्लम अगर कंट्रोल में ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हम बात करते हैं, जिसमें डायबिटीज बात करना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे डिजीजेस लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं या फिर जेनेटिक आ रहे हैं, पर ये आ तो रहे हैं और भारत में आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले होते चले जा रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 के फॉर्म में आपने सुनी होगी, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, किस तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए और क्या डायबिटीज जो है वो कभी रिवर्स हो सकती है, ऐसे कुछ सवाल हैं मेरे पास और आपके पास भी होंगे। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर तारिक, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और इनसे हम बहुत से सवालों के जवाब आज डायबिटीज से जुड़े हुए जानेंगे। सो डॉक्टर तारिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना। सबसे पहला सवाल सर मैं जानना चाहती हूँ, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पर लें तो डायबिटीज में ये होता है कि आपका शुगर लेवल जो है, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं, वो बहुत हाई चला जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे मेडिकल फॉर्म में पूछूं तो हमें थोड़ा सा विस्तार में और सिंपल भाषा में समझाइए कि डायबिटीज यानी मधुमेह एक्चुअली में बॉडी में क्या है।
3: डायबिटीज बेसिकली हम इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, आम भाषा में हम बोलते हैं कि शुगर बॉडी में बढ़ गई है तो ये मेटाबॉलिक डिसीज़ है। इसमें जो बॉडी में इंसुलिन या तो बन नहीं पाता, अगर बनता है तो वो बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो इसको ही डायबिटीज़ बोलते हैं
2: जी।
3: और डायबिटीज़ वैसे तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन जो कॉमन डायबिटीज़ है वो टाइप टू डायबिटीज़ मेलिटस है, तो जो कि बड़ों में पाई जाती है, जो ओबेस लोग होते हैं उसमें उनमें पाई जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि उसमें इंसुलिन या तो बनती नहीं है, बनती है तो बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बच्चों में जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, हमारा इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज पर अटैक करता है और वहाँ पर इंसुलिन बन नहीं पाता, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन डिफिशेंसी होती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हम OHAs मेडिसिन खाते हैं वो काम नहीं करती, इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही देते हैं, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन होता है
2: जी। जी, उसको कंट्रोल करने का तरीका इंसुलिन है। और टाइप 2 की अगर हम बात करें तो उसमें मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया,
3: मेडिसिन प्लस इंसुलिन हम
2: दोनों ही
3: चल सकता है
2: जी। सो टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हर घर में कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट मिल ही जाते हैं और संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, अगर ऐसा कोई आपके घर में भी है और आपके मन में कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे 8010781078 पर। बातचीत बहुत सारी चल रही हैं और ये जो पॉडकास्ट है, ये ऑडियो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप पर भी। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर iOS स्टोर से और RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर पॉडकास्ट सेक्शन में आप डॉक्टर तारिक के साथ हुई ये सारी बातचीत कभी भी कहीं भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। फिलहाल रेडियो मानव रचना पर वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातचीत चल रही है बहुत सारी डायबिटीज के बारे में, और डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा हद तक ये जो है परेशान कर देती है. जिस पेशेंट को डायबिटीज होती है, सिर्फ उसे मीठी चीजें दूर नहीं होती हैं, उससे बहुत सारी और भी चीजें दूर रखनी पड़ती हैं. जी हाँ, यानी उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत बदलना पड़ता है. अब डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये तो हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया. लेकिन कैसे पता लगे कि डायबिटीज बॉडी में आ गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत समय तक ये पता ही नहीं लगा पाते कि उनके शरीर में डायबिटीज आ चुकी है या उन्हें शुगर हो चुकी है. तो ये सिम्टम्स जानना भी बेहद जरूरी है. डॉक्टर तारिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर तारिक, सिम्टम्स की बात अगर हम करें तो एक व्यक्ति अपने शरीर में अगर उसके डायबिटीज हो जाती है तो उसको सबसे पहले क्या महसूस होगा, कैसे वो ये पता लगाए?
1: डायबिटीज इनिशियली स्टेज में तो पता ही नहीं चलता, वो एसिम्टोमेटिक रहती है. तो जब किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो बहुत टाइम तक तो कुछ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता. कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे जब डायबिटीज होती है तो लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे और भूख भी ज़्यादा लगती है, उसमें पेशाब ज़्यादा आता है. इस पर रात में भी बहुत कई बार वो लोग पेशाब करने के लिए उठते हैं. और अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से वेट लॉस भी होता है. कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, कि डायबिटीज क्या करता है, इम्यूनिटी कम करता है, उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं. तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है डायबिटीज का पहचानने का.
0: यानी आप ज्यादा बीमार हो रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि डायबिटीज हो सकता
1: है. और बहुत टाइम में कभी बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज में जो उसके कॉम्प्लिकेशन है, वो डायबिटीज न्यूरोपैथी, एक जो नस जो होती है उसका डैमेज होने लगती है. तो अगर पैर में चोट लग जाए तो उसके वो पता ही नहीं चल पाता कि उस घाव का, और फिर डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर है कंट्रोल नहीं है तो वो घाव भरता नहीं है, जिसकी वजह से वो जख्म बहुत ज्यादा गैंग्रीन में बदल जाता है.
0: ओके.
1: तो ये भी एक सिम्टम है कि कोई पेशेंट आ रहा है गैंग्रीन से, तो उसको हम लोग डायबिटीज शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसको डायबिटीज है. उसको वो बोलते हैं कि मुझे तो डायबिटीज है नहीं, तो फर्स्ट टाइम ऐसे पता चलता है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़े लोगों की बात हो गई, लेकिन टाइप वन की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑटो इम्यून होता है और जनरली छोटी एज में होता है. तो टाइप वन पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस पे ज्यादा चर्चा होती नहीं है, जनरली लोगों को यही लगता है कि बड़ों को डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज बच्चों को भी होता है. सो क्या इसके सिम्टम्स बच्चों में क्या देखे जाएंगे?
1: टाइप वन डायबिटीज जनरली बच्चों में होता है, और मैंने जैसा अभी आप बताया था कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है. इसमें जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो पैनक्रियास पे अटैक करता है. पैनक्रियास से ही इंसुलिन सेक्रेट होता है.
0: जी.
1: अब वो पैनक्रियास पे अटैक, जब वहाँ पर इंसुलिन बनेगा नहीं, तो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ही टाइप वन डायबिटीज होती है. इसमें भी वही सब सिम्टम्स होते हैं कि शुगर अगर ज़्यादा है रहेगी तो उसमें प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है. तो ये सब टाइप वन डायबिटीज के सिम्टम्स है. एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. जब सीवियर फॉर्म ऑफ टाइप वन डायबिटीज होता है ये, तो इसमें जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें ये एक मतलब एक इट इज़ एक इमरजेंसी. ये बहुत तो इसमें जान का भी खतरा रहता है. तो इसमें शुगर इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ही टाइप वन डायबिटीज होता है.
0: जी जी. यानी कीटोसिस की आप जो बात करें, ये बहुत, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये थोड़ा बताएं?
1: इसके सिम्टम्स में ये रहता है कि पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, वो डिहाइड्रेटेड रहता है पूरा, ये सब चीज़ें. और अगर मैं ये डायबिटिक कीटोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से उसको सांस भी लेने में कभी कभी दिक्कत होती है. तो ये इट इज़ एक इमरजेंसी. इसको अगर ये किसी को पेशेंट को दिख रहा है तो इसमें लापरवाही ना करें, तुरंत हॉस्पिटल में जाए और उसका इलाज कराए, वरना इसमें जान जाने का खतरा रहता है.
0: जी. यानी बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है, बड़ों में भी होता है.
1: बड़ों में भी होता है.
0: जी.
1: कॉमनली ये टाइप 1 डायबिटीज के में पाया जाता है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, लेकिन बड़ों में टाइप 2 में भी मिलता है.
0: जी जी बिल्कुल. यानी अगर वॉमिट ज्यादा हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिहाइड्रेशन फील हो रहा है और पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जो है जरूर कंसल्ट करें. इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें. बहुत सारी बातें और भी जानेंगे डायबिटीज से जुड़ी हुई, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसवी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. डायबिटीज जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया में है लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही आंकड़े हैं और डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है भारत को. इस वजह से इस प्रॉब्लम पर चर्चा करनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है और हम जो आज बात करें हैं वो डायबिटीज के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करें हैं. डायबिटीज़ को कैसे समझें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे जानें और कैसे अपनी बॉडी को फिट रखें डायबिटीज़ होने के बाद भी. हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर तारिक. डॉक्टर तारिक, डायबिटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं आपने अभी बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये किसी भी एज में हो सकते हैं. इसका एज से कोई अब मैटर जो है वो ज़्यादा रहा नहीं गया है लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो कैसे जो है कौन से टेस्ट हैं जो कराए जाएं. अगर किसी व्यक्ति को कुछ फील हो रहा है कि हाँ उसे डायबिटीज़ हो रही है तो वो अपने आप कैसे चेक करें और साथ ही जब डायबिटीज़ हो जाती है तो रेगुलरली कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कराने चाहिए. तो डायग्नोस्टिक्स पे ज़्यादा मैं ध्यान देना चाहूँगी इस वक्त.
1: डायबिटीज़ अगर आप घर पर हैं तो अगर आपको लग रहा है ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं. जैसे एक तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं खाली पेट, तो उसके लिए 8 घंटे का आपको फास्टिंग होना ज़रूरी है. तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं क्योंकि रात में हर कोई फास्टिंग में रहता है. तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं. अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़. एक होता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज या पोस्ट पेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज. अगर ये 200 से ज़्यादा आ रहा है तो ये भी एक डायग्नोस्टिक है डायबिटीज़ का. एक जो टेस्ट है HbA1c, ये अगर 7 से ज़्यादा अगर जा रहा है, ये घर पर तो नहीं कर सकते, ये लैब में करते हैं हम लोग, तो वो भी एक डायबिटीज़ मेलिटस का डायग्नोसिस और टेस्ट है.
0: ओके, यानी ये जो टेस्ट है हम नॉर्मल जो हमारे पास एक मशीन होती है शुगर चेक करने की, अगर उसमें फास्टिंग चेक कर लेते हैं तो भी हमें आइडिया मिल जाएगा.
1: जी, और इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट है, मैं आपको वही बता रहा था कि बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं चल पाता है कि वो डायबिटीज़ है, तो अगर डायबिटीज़ है तो हम कुछ टेस्ट और करते हैं सर, जैसे सर क्रिएटिन लेवल, क्योंकि पेशेंट बहुत टाइम से क्या होता है कि वो डायबिटीज़ रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता, तो उसका बहुत सारा बार क्या होता है कि किडनी पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसलिए हम किडनी पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई नहीं हुई, किडनी पर इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए हम ये सब टेस्ट करते हैं.
0: जी, यानी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं. डॉक्टर साहब, एक डायबिटिक पेशेंट है, अब उसको किसी ने डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट कर ली, तो वो दवाई उसे रेगुलर खानी है और खाना खाने से पहले खानी होती है, जनरली ये होता है, या इंसुलिन है तो खाना खाने से पहले उसे लगाना होता है. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसके अलावा उनको और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ में.
1: देखो, डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर दो टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं. एक तो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं. नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में तो जो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने के चांस बढ़ जाते हैं. एज के साथ साथ दूसरा रिस्क फैक्टर होता है एज के साथ साथ डायबिटीज़ के चांस होने के चांस बढ़ जाते हैं. और दूसरा जो फैक्टर होता है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और तो उसमें डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं. दूसरा रिस्क फैक्टर होता है डाइट, जो ये शुगर हुआ या फिर सोडा स्वीट्स वगैरह होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आजकल चल रही हैं बहुत लोग पीते हैं, इन सब चीज़ों से भी, मतलब ये प्रोसेस फूड हुआ, ये सब डायबिटीज़ के चांस इसमें बढ़ जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, ये इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं.
0: जी, यानी लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं इसको. हाँ. और ये लाइफस्टाइल अगर खराब होगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती
1: है. यहाँ तक कि हम लोग ये भी करते हैं कि अगर सपोज और किसी को डायबिटीज हो गई है तो सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं. अगर लाइफस्टाइल, बहुत कुछ लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो वो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं.
0: जी,
1: अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं हुआ तब जाके हम मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे ये दवाई वो शुरुआत करते हैं. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए.
0: और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, लेकिन ये है क्या, कैसे मॉडिफाई किया जाए लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफ का जो स्टाइल है वो तो एक सेट पैटर्न बन चुका है, लेकिन इसमें क्या बदलाव जरूरी है खाने में और अपने डेली रूटीन में, वो सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर तारिक से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
3: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ, ना इज्जत

बने मकार, नाते नमक हरामी

लाल बनाए, ऊपर अकेले बिल अंदर नकली घी और जाए, टॉप लीन का बदल के नंबर टेरी लीन बनाए, या बेईमानी तेरा हाथ जा बोल के लूट कर जाए।

राजा बन के हम सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ न मनते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र ढूंढना कर देवगढ़।

का जू पसंद है महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल, और हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और हम बात करें आज डायबिटीज के बारे में. डॉक्टर तारिक हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन SSP हॉस्पिटल फरीदाबाद में. और हम बात करें हैं डायबिटीज के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए हम बात करें क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, और वो ये दावा करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी. यानी रिवर्स मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो डायबिटीज हो चुकी है वो वापस नॉर्मल होने लग जाएगी. बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है? क्या डायबिटीज एक बार रिवर्स होने के बाद वापस नहीं आती? आइए जानते हैं डॉक्टर तारिक से. सो डॉक्टर तारिक, डायबिटीज रिवर्सल के बारे में हमने इंटरनेट पर हजारों रील्स देखी हैं. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है जैसे ही आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा या जैसे ही आपका रूटीन चेंज होगा. सो क्या है इसके पीछे का सत्य, हमें थोड़ा सा बताइए.
1: देखो, डायबिटीज में एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, जो डायबिटीज से जस्ट पहले की जो कंडीशन होती है उसमें डायबिटीज होती नहीं है, वो रिवर्सिबल हो सकती है, वो हो भी जाती है. लेकिन एक बार डायबिटीज हो गई तो वो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है. इंडिया में बहुत एक कॉमन मिथ है, बहुत लोग हैं वो क्या करते हैं, दवाई खाते हैं और वो जो उसकी फिर शुगर कंट्रोल हो जाती है. वो जो कंट्रोल है वो दवाई की वजह से है. वो सोचते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल हो गई तो इसलिए वो दवाई छोड़ देते हैं, फिर से बाद में वो प्रॉब्लम के साथ आते हैं और डैमेज हो जाते हैं मतलब बॉडी. तो इसलिए डायबिटीज अगर एक बार हो गई तो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है. तो इसे अपनी दवाई प्रॉपर लें, मेरे एक यही सजेशन है, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट
0: कंट्रोल
1: बहुत जरूरी है, और दवाई प्रॉपर टाइम से लेना चाहिए. तो डायबिटीज रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है.
0: डायबिटीज को रिवर्स करना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है, जो ये दावा कर रहे हैं. बेसिकली आप जब तक वो सारी चीज़ें खाते पीते रहेंगे जो ठीक ठाक आपकी डायबिटीज

0: डायबिटीज को रख सकती हैं, तो ठीक है जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो डायबिटीज वापस आ जाएगी। तो बेसिकली ये रिवर्स नहीं है, कंट्रोल्ड है। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपने जिक्र किया कि दवाई तक जो है आप रोक सकते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दिया है, जो पहले चीज़ें खराब थी उनको बेहतर कर दिया है, तो क्या है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या पे बात करेंगे।
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आता है एक्सरसाइज।
0: जी,
1: एक्सरसाइज डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज करनी कितनी है ये भी है, तो 150 मिनट पर वीक।
0: Okay.
1: और आप अगर देखा जाए तो आप 30 मिनट पर डे के हिसाब से हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि आपको रोज करनी है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो और आधा घंटा रोज कर रहे हो तो ये काफी है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए।
0: ओके, यानी अगर आप आधा घंटा डेली एक अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो काफी हद तक आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं।
1: दूसरी चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट। डाइट में मैंने अभी आपको वही सब बताया था कि एक तो जितने भी ये मीठी चीज है, जैसे शुगर हुआ और कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड, इन सब चीज को अवॉइड करना है। ये इसमें ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनकंट्रोल्ड रहती है। तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया था, अल्कोहल और स्मोकिंग, इन सब चीज़ को अवॉइड करना ये बहुत ज़रूरी है, और अपना मेडिसिन टाइम पर ले तो उससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे जब हम डाइट की बात करते हैं, आपने कहा कि प्रोसेस फूड नहीं खाइए, बहुत सारे लोग जो हैं वो नमकीन खाते हैं पैकेट में जो मिलती है, और कहते हैं ये तो नमक है, ये तो मीठा नहीं है, हम बिस्किट तो नहीं खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव?
1: हाँ, जो नमकीन के अंदर नमक होता है, नमक से बीपी बढ़ता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज। तो और दूसरी चीज ये होती है, जो नमकीन वगैरह जो होती है इसमें सब में प्रिजर्वेटिव, ये प्रोसेस फूड होती है, ये भी एक डायबिटीज, इससे भी मतलब एक अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को, और जितने भी प्रोसेस फूड आ रहे हैं वो सब हुआ, सोडा, लाइम और ये स्वीट्स और आइटम्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ के लिए।
0: जी बिल्कुल, यानी अगर आप कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो बिस्किट है चाहे वो नमकीन है, अब आप सोच रहे हैं कि आप डायबिटिक हैं तो आप नमकीन खा रहे हैं या नमकीन बिस्किट ले रहे हैं, बट एक्चुअली में इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनमें एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं, इनमें शुगर कॉन्टेंट भी होता है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं तो पीछे ज़रा उसके थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लीजिए। जो चीज़ सबसे ऊपर लिखी होगी वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, और जो चीज़ सबसे नीचे लिखी होती है वो सबसे कम मात्रा में होती है। जनरली इनमें भी एसिडिटी रेगुलेटर और शुगर होती हैं जो कि मेंशन होती हैं, सो उसकी परसेंटेज देखिए और अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, सिर्फ थोड़ी देर का टेस्ट है जो कि कुछ मिनट में गायब हो जाता है। तो बहुत सारी और भी बातें हम जान रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, कुछ एक्सरसाइजेज और जानेंगे डॉक्टर तारिक से, और साथ ही जानेंगे कि डायबिटीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए और हमारी बॉडी तक ना पहुँचे इसके लिए क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पर से अगर जेनेटिक कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही हैं।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात करें आज डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में. एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत सारे घरों में है और इसे कंट्रोल करने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, इंसुलिन, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो डॉक्टर से एडवाइस लेना बेहद जरूरी है. खुद के डॉक्टर खुद ना बने, खासतौर पर ऐसी चीजों में. हमारे साथ आज डॉक्टर तारिक हैं जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर तारिक, बहुत सारी बातें आप कर चुके हैं, आपने बहुत सारी एडवाइस भी दी हैं, लेकिन अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में, कुछ ऐसे मिथ होते हैं या फैक्ट्स होते हैं जिन पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें एडवाइस करें. क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? लोगों के दिमाग में होता है कि जितनी चीनी खाएंगे डायबिटीज़ के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, बट वी हैव सीन पीपल जो पुराने ज़माने के हैं आज भी दो चम्मच चीनी चाय में डालकर ले रहे हैं, पर डायबिटीज़ उनको नहीं है. तो क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है?
1: चीनी खाने से डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि जो चीनी है, इस आजकल तो हम स्लो पॉइजन की तरह बोलते हैं, कहते हैं तो अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं भी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए. चीनी की जगह आप जैसे गुड़ वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर डायबिटिक नहीं हो. और जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो पहले से ही अपना रेगुलर एक्सरसाइज, ये चीनी वगैरह, वो सब मैंने आपको बताया था, प्रोसेस फूड वगैरह, इन सब चीज़ को अवॉइड करें तो वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, डायबिटीज़ ना होने पहले से ही, मतलब अपने रिस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं अगर वो अपने ये सब चीज़ों को ध्यान रखें.
0: जी, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब. बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ अचानक से लो हो जाती है और अचानक से हाई भी हो जाती है, जब फ्लक्चुएशन होती है तो क्या करना चाहिए?
1: फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हैं. एक सपोज करो कि पेशेंट डायबिटिक है और मेडिसिन ले रहा है, तो वो क्या बीच बीच में अगर आप कोई अपना खाना मिस कर देते हो, आपने मेडिसिन ली है, खाना मिस कर दिया, तो फिर वो लो हो जाएगा. या फिर आपने अपने खाने का जो टाइम तो ड्यूरेशन थोड़ा सा लेट खाया हो तो उसकी उसमें भी उस केस में भी शुगर लो हो जाती है. या फिर ऐसा होता है कि मेडिसिन ले रहे हो, आप फॉलोअप में नहीं जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो बीच बीच में ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस वजह से भी सपोज़ करो डोज ज़्यादा हो गई तो उसमें केस में भी डायबिटी शुगर जो होता है ये लो हो जाती है. तो इसलिए आप प्रॉपर खाना लो, टाइम टू टाइम खाना लेना है और अपना रेगुलर डॉक्टर से फॉलो आपको करना है.
0: कितनी लो शुगर खतरनाक हो सकती है?
1: 70 से नीचे तो नहीं जानी चाहिए, 70 to 80 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और उसमें शुगर लो होने की वजह से बेहोश होने का खतरा रहता है. और रात में आप सो रहे हो और रात में एक काफ़ी लंबी रात होती है तो उसमें खाना बीच में नहीं खाते, दिन में तो हर 6 घंटे 8 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, रात में जब सो जाते हैं तो एक तो खाने नहीं कुछ खाते नहीं सोते हैं तो इसलिए लो रहती है. दूसरी बात ये सोते हुए पता नहीं चलता, तो रात का जो शुगर लो होना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है,
0: तो रात को अपनी चेक करके अगर आप सोएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और थोड़ा खा के सोएं.
1: जी.
0: और हाई की अगर मैं बात करूं, अब हाई हो गई है क्या उसको किसी तरीके से जल्दी लो किया जा सकता है इंसुलिन या मेडिसिन के अलावा भी, अगर हाई हो रही है किसी की शुगर?
1: नहीं, हाई का अगर पेशेंट का अगर शुगर लेवल हाई जा रहा है तो बेहतर तो ये है कि डॉक्टर के पास जाकर अपना मतलब दिखाएं, क्योंकि कितना हाई हो रहा है और वो उसी हिसाब से मेडिसिन उसी एडजस्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सपोज़ करो 400-500, तब तो हम लोग फिर उसको इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत हाई जा रहा है तो फिर हम उसी हिसाब से उनको मेडिसिन एडजस्ट करते हैं उसको.
0: जी बिल्कुल. तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके घर में अभी तक डायबिटीज़ नहीं आई है, कैसे खुद को ठीक ठाक रखें, और अगर इनके घर में किसी के घर में डायबिटीज़ है भी तो भी कैसे ठीक रखें?
1: मेरी यही एडवाइस है, तो एक तो अपना लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने में जो भी मैंने बताया प्रोसेस फूड वगैरह, ये स्वीट्स आइटम वगैरह इसको अवॉइड करो, आप खाने में सब्जी, फल फ्रूट्स या जो भी घर में आप हेल्दी डाइट है उसको मतलब यूज़ करें, और इसके अलावा प्रॉपर अपना डॉक्टर से फॉलोअप करें, मेडिसिन लें प्रॉपर. और दूसरी बात ये कि मेडिसिन अपना अपना छोड़ें, जो भी मतलब वो डिसीजन लेना वो डॉक्टर के, जो डॉक्टर एडवाइस करे उसको ही फॉलो करें, अपने आप कुछ ना करें.
0: जी, अपने आप दवाइयाँ खुद ना शुरू करें, डॉक्टर से मिलकर ही, उनसे परामर्श लेकर ही दवाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट करें या बंद करें. तो डॉक्टर तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और डायबिटीज से जुड़ी हुई जानकारी आपने दी. थैंक यू. सो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी भारत में रह रहे हैं. बहुत सारी खूबियाँ इस देश में, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ की तरफ ध्यान हम ज़रा कम दे रहे हैं. या तो आपको वो वर्ग मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा जिम जाता है, हेल्थ का ख्याल रखता है, या फिर वो वर्ग भी मिल जाएगा जो बिल्कुल कभी एक्सरसाइज करता ही नहीं है। तो आप इन दोनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये जरूर देखिएगा और अपनी हेल्थ को ठीक रखने के बारे में थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। फिलहाल बहुत सारी बातों के बाद उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और सुनते रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। फील गुड फील लाइफ, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं।

0: लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था और साथ ही PCOD हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की। और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: ओके, तो सिमरन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
1: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
0: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
1: जी,
0: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
1: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपनी हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
0: जी।
1: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
0: जी।
1: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
0: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
1: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4-4.5 साल।
0: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही हैं मतलब बहुत उम्दा मैं कहूंगी, आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या, कितना वेट था?
1: तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर
0: जी।
1: और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी, क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई? तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी? और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे। तो वो 78 kg का मार्क मुझे याद है, और एट द एंड वन एंड अ हाफ ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 केजीज पे थी.
2: वाओ सुपर्ब. सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफर, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ. सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
1: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी. जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई. डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है. और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए. तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है. तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गोंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज खराब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा, लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक जिद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया एक डेढ़ साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
2: वाओ वंडरफुल. सो एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज़ के लिए भी उतनी ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
1: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरनी देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5-6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से लगभग 80% महिलाएँ हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया, और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं. ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है. अच्छा. तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं. तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं. अगर आप 20s-30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमेन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है. तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए. और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमेन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है. मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है, जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है
2: जी।
1: तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है, मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है, पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ। तो विमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है।
2: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि विमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानने, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है, हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ एक घंटा, और वहाँ पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग। सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की,
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ। मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइफ्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोषण आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया। हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन कोचेस
0: हैं। हमने आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखी हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करेंगे, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 से 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है। और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है। सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं। तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोस भी होती हैं, तो वो वीडियोस के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल वाइज, वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन। तो वहाँ प्लान होता है, एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज़ में गुरु होना तो बहुत ज़रूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज़. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज़ जो हैं NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर काम, उनके बच्चे और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमन के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपेनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%. या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा विमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ही इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारे विमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते
0: जी.
1: फिर भी वही है जो स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए, रोज़ मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं. तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा। तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें। ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की ज़रूरत है। अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहाँ फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी।
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें, जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी।
1: धन्यवाद।
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपकी जैसी जर्नी पर हैं। तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने 2.5 घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए या कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे 1-1.5 घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड है।
0: अच्छा
1: जी। और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है। यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो 5 चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स, किसी से भी वो ले सकते हैं। तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलेड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन पीसीओडी आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजी सी अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत।
0: मतलब चीजें वही है, बस तरीका बदल गया,
1: स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो आरडीए रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है
0: जी,
1: ये सर्वाइवल नंबर है कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो आप बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
0: हाँ जी।
1: तो कैसे हम कहें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा या घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं। तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस, और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है, अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है। आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के,
0: थायराइड,
1: इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी पीसीओडी के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए, यही लाइफस्टाइल, यही 5 चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
0: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का।
1: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि you know, आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं
0: जी। और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
1: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएँ। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मेंटीज 120 मेंटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
0: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद जरूरी है।
1: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे 2 पे पहुँचे आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
0: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर और काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
1: थैंक यू गौरी।
0: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज़ भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकती है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
1: नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
0: जी।
1: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है।

0: तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
1: जी.
0: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जांच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3 महीने 6 महीने में बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए. जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं. हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुँच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है. डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं. ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है.
1: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे. तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी. हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं. हम भी तो यही, तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है. आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है. तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का. तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं. जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं
1: जी. मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
0: बच हैं. तो सकते हैं 100%. तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया. तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग. मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
1: जी.
0: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी वुमेन अच्छी हट्टी कट्टी वुमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं
1: जी.
0: और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी वुमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन वुमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है. घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
1: जी. और साथियों, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट ये डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ, लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका BMR, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से BMR थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है, अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं, आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेस, अडैप्टिव, बॉडी अडैप्ट कर जाती है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैट्यू हिट करेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे. तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें.
0: जी, तो सिमरन हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड. तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल.
0: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड.
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म.
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विथ फ्लेक्सिबिलिटी.
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए.
0: नाइस. एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा.
0: वाओ, ये तो सुपर. थैंक यू सो मच. तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है. सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं. तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, जी, बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल.
0: जी,
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि

0: आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर. मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर कर. और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि ये कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहें तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच. आई एम ऑल देयर टू गाइड देम. एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए. ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा.
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच. एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे. सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
2: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ.
3: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज को हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ. शो हमारा बहुत खास है, रेडियो मानव रचना 107.8 की एक पहल है जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग डोमेन्स से एक्सपर्ट्स यहां पे लेके आए आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे ये शो आपको सर्व करता है. सो द पर्पस इज टू लेट यू नो अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स इन इजी वर्ड्स, ताकि आप समझ पाएं अलग अलग प्रोफाइल्स को, अलग अलग यात्राओं को, जर्नीज को, और आपको ये पता लगे कि कुछ भी देखिए साहब इम्पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पर. लेकिन उसको थोड़ा और आसान करते हुए हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ प्रोसेस जिसमें आपकी हेल्प होती है जानने में कि एग्जैक्टली कोई भी चीज़ काम कैसे करती है. जैसे आज का हमारा शो होने वाला है मिलिंद के साथ. मिलिंद कपूर नाम है इनका और ये एक्चुरीज डिपार्टमेंट, जिसका ऑफिशियल नाम एक्चुरियल साइंसेज होता है, जिसमें बेसिकली इंश्योरेंस में जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो जो रिस्क एवेल्युएशन होता है वो काम करता है ये डिपार्टमेंट. पॉलिसी एग्जैक्टली कैसे बनती है, तो आज उस एक डोमेन की बात करेंगे क्योंकि पहले कभी हमने उस डोमेन की बात नहीं करी है. सो आज का शो अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है. हमारे साथ है मिलिंद, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे मिलिंद का. हाई मिलिंद, वेलकम टू आवर शो.
4: हाई सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर.
3: It's a pleasure to have you here. So first question would be about your journey. Please take us through the journey and tell us about ki exactly kaise strike hua. Kya kya kya laga aisa ki yaar actuaries mein jana hai.
4: तो सागर, मैं ना अपनी स्कूल लाइफ से स्टार्ट करना चाहूँगा. मैं हमेशा से स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाता था. मैं टेक्निकली मैथ्स में बहुत स्ट्रांग था, तो हमेशा मेरे को एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, ये मेरी हमेशा से स्ट्रांग थी. तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन दैट एरिया, बट मेरे को कभी पता नहीं था कि कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ पर मैं ये सब एक साथ कर सकूँ. उस टाइम पर CA, इंजीनियरिंग, ये सारा ज़्यादातर फेमस था. एंड इवन मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं CA करूँ, बट मैं CA करना नहीं चाहता था, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था. तो आई एम ग्लैड कि मैं ट्यूशन कोचिंग लेता था वहाँ पे. तो एक सर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि उनकी वाइफ एक्चुअरियल साइंस में कर रही हैं, एंड गिवन दैट आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो वाई डोंट यू ऑप्ट फॉर इट. तो अगेन, उन सर को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में. तो मैं गया घर पे, मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने गूगल किया, तो गूगल पे एक लाइन आई, वन ऑफ द हाइएस्ट पेइंग जॉब्स जो एक्चुअल साइंस में होती थी. तो फिर मैंने उसके बारे में और स्टडी करा कि इसमें होता क्या है. उसमें बताया गया कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में आपको नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, आपको बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के बारे में नॉलेज बढ़ती है कि आपकी इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी लेते हो तो उसका प्रीमियम कैसे सेट होता है, वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है. अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्क है कि कब आपको क्लेम पे आउट करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सारा रिस्क इवैल्यूएट करना होता है कंपनी के लिए. तो इस सब ने मेरे को बहुत क्यूरोसिटी जगाया कि रिस्क के बारे में जानना, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर. ऑल दो अगेन, सर्टेनिटी से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट देयर इज समथिंग अबाउट इट कि आप पैटर्न्स पढ़ सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो. तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइव करा. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्चुअल साइंस. एंड मैंने माइंड में बना लिया कि ठीक है, मैं एक्चुअल साइंस करूँगा. मैंने 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ्स लिया, मैंने वहाँ से आगे कंटिन्यू करा. नाउ माय एम वाज कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि एक्चुअल साइंस आई हर्ड कि बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स होने वाला है, डिफ़िकल्ट जर्नी होने वाली है, लॉन्ग जर्नी होने वाली है.

0: आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आई हैव अ बैकअप इन माई माइंड एज वेल. अगर कल को मैं एक्चुअल साइंस में नहीं कर पाता तो आई नीड समथिंग दैट इज बैकिंग मी. तो आई टुक बी कॉम ऑनर्स, आई स्टार्टेड एंड देन कॉलेज में ही द बेस्ट थिंग अबाउट एक्चुअल साइंस इज कि यू कैन स्टार्ट इवन आफ्टर ट्वेल्थ. देर इज़ नो नीड कि यू हैव टू हैव ग्रेजुएशन फर्स्ट और एनी थिंग लाइक दैट. आप कॉलेज के साथ ही उसको स्टार्ट कर सकते हो. तो कॉलेज टाइम में ही मैंने फर्स्ट ईयर में एज अ नॉन मेम्बर एक्चुअल साइंस का एक एग्ज़ाम दिया भोपाल जाके, एंड आई वॉज ग्लैड कि वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया पहला. एंड फिर मैंने उसकी मेम्बरशिप ली एंड देन मैंने धीरे धीरे उसकी स्टडीज़ करना शुरू करी. तो विद इन द कॉलेज ग्रेजुएशन पीरियड इटसेल्फ 3 साल में मैंने 4 पेपर क्लियर कर लिए थे. एंड देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई हैड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. तो वहाँ से फिर मैंने जॉब्स देखना शुरू करा. तो दिस इज़ वन थिंग दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम सी ए इज़ दैट कि अगर आप सी ए कर रहे हो तो आपको पहले सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं. देन इन दैट आर्टिकलशिप आप एक कंपनी में जाते हो, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड देन फाइनल एग्जाम्स देते हो एंड देन यू लुक आउट फॉर जॉब्स. एक्चुअल साइंस का ये भी मेरे को एक बेनिफिट लगा कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता हूँ, पेपर क्लियर कर सकता हूँ. और एक्चुअल साइंस में क्या होता है, एज एंड वेन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, एज एंड वेन यू क्लियर एग्जाम्स कंपनी आपका इंक्रीमेंट करती है फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम क्लियर. आपका पे उस बेसिस पे होता है. तो दैट रियली मोटिवेटेड मी कि ठीक है लेट्स गो हेड एंड डू दिस कोर्स. इनिशियली थोड़ा टफ था बट धीरे धीरे आई गॉट द हैंग ऑफ इट. मैं थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स लगाए बिकॉज मैं कॉलेज के साथ कर रहा था तो कॉलेज की स्टडीज़ भी थी, एक्चुअल साइंस के एग्ज़ाम्स भी थे. तो आई मेड श्योर कि मैं दोनों को इक्वली टाइम दे पा रहा हूँ. नाउ हमने अच्छी बात तो कर ली कि आप जॉब के साथ पेपर्स भी कर सकते हो बट इट कम्स विद अ चैलेंज एज वेल बिकॉज नाउ अडेज एवरी वन नोज कि जॉब्स कितनी चैलेंजिंग है, कितनी टाइम कंज्यूमिंग है. तो यू नीड टू मेक श्योर यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर स्टडीज एज वेल. मैं थोड़ा एक्चुअल साइंस के बारे में भी बता देता हूँ. एक्चुअल साइंस में टोटल 13 पेपर होते हैं, ठीक है. यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी पेपर टू गेट बिकम अ क्वालिफाइड एक्चुअरी, ठीक है. अनलेस अंटिल यू हैव क्लियर 13 पेपर्स यू आर अ स्टूडेंट एक्चुअरी और अ पार्ट क्वालिफाइड एक्चुअरी. एक्चुअल साइंस करने के 2 मीडियम्स हैं एटलीस्ट इन इंडिया, 2 अवेलेबल हैं मेजरली. वन इज़ IFOA इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज UK बेस्ड, ठीक है. वहाँ से आप कैसे कर सकते हो, आप इधर यू कैन टेक अ मेंबरशिप फॉर देम. उसके लिए आपके एक क्राइटेरिया होता है कि आपके मैथ्स में इन 12th 90% एंड अबव मार्क्स आ रखे हैं एंड आप इंग्लिश मीडियम स्टडीज़ करी हुई हैं आपने, ठीक है. यू कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप, गेट द मेंबरशिप एंड स्टार्ट गिविंग राइटिंग एग्जाम्स, ठीक है. दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर वे इज़ कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कोर्स कम्प्लीटली तो वट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव फर्स्ट पेपर एज अ नॉन मेम्बर. कि मैं पेपर दे के देख लेता हूँ यार मेरा क्लियर होगा तो मैं मेंबरशिप लूँगा वरना मैं नहीं लूँगा. तो एज अ नॉन मेंबर आप पेपर दे के देन यू कैन टेक अप मेंबरशिप. एक हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट भी है विच इज़ कॉल्ड IAI इंस्टीट्यूट एंड एक्चुअरीज ऑफ इंडिया. तो वो भी सेम चीज़ एक्चुअल साइंस के एग्जाम्स ऑफर करते हैं. उसमें क्या होता है कि यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट विच इज़ कॉल्ड ESET. आप वो एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, वो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग क्वांट्स ये सब इंग्लिश जनरल नॉलेज इन सब के क्वेश्चंस होते हैं. यू क्लियर दैट एग्जाम देन यू कैन टेक अप मेंबरशिप फॉर IAI एंड आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यही 2 इंस्टीट्यूट हैं जो एक्चुअल साइंस करवाते हैं, देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल बट दीज आर द मोस्ट कॉमन इंस्टीट्यूट्स दैट आर बींग फॉलोड अमंग अदर एक्चुअल स्टूडेंट्स, ठीक है. एक्चुअल साइंस देर आर ऑप्शंस कि आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, आपको कोचेस भी मिलते हैं लाइक आजकल एक्टेड है वो अपनी वीडियोस पब्लिश करते हैं ऑन पेपर्स एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. देर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल थ्रू आउट मतलब स्टेट्स लाइक इंडिया में, मतलब दिल्ली में है, मुंबई में है, अदर स्टेट्स में भी है. डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कोचिंग भी ऑफर करते हैं फॉर ऑब्वियसली अ पर्टिकुलर फी. तो दिस इज़ अबाउट द एक्चुअल साइंस कोर्स. और ओके सो नाउ इन एक्चुअल साइंस द पेपर्स आर डिवाइडेड इन सर्टेन लेवल्स, ठीक है. फर्स्ट इज़ योर CP सीरीज विच इज़ कोर प्रैक्टिसेस, सॉरी CM सीरीज फर्स्ट, देन CP सीरीज, देन SP सीरीज एंड फाइनली SA सीरीज. इन CM सीरीज यू हैव टू क्लियर 6 एग्जाम्स, 6-7 एग्जाम्स एंड देन सॉरी सीपी सीरीज में देर आर 3 एग्जाम्स, एसपी में 2 विच मेक्स इट 5 एंड एसएमए 1 दैट इज 6 एंड टोटल सीएम में देर आर 7 एग्जाम्स. सो दैट इज हाउ यू वांट टू क्लियर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग देर इज इन एक्चुअल साइंसेज की देर इज नो लिमिटेशन ऑन एनी एग्जाम. आप कोई भी एग्जाम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो. There is no condition about that. But generally people prefer to give SP and SA exams on a later basis because आपकी पहले basic technical knowledge strong हो जाती है and then आप वो theoretical exams, insurance, products के बारे में सब कुछ वो आप later on देना चाहते हो. So that is how it is generally followed.
1: Okay. So missing. दो तीन सवाल है मेरे यहाँ पर जो बहुत important है. First is अगर मैं actuaries की बात करता हूँ यहाँ पर तो क्योंकि इस टाइम जो लोग हमें सुन रहे हैं ऑब्वियसली बात है उनमें से मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग या शायद सारे लोग एक्चुअरीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे. ठीक है, उनके लिए बहुत एलियन टर्म है. कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअरीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्या स्किल सेट ऐसा होना चाहिए, क्या क्या वो यूएसपी होती है इंसान की जो उसको बोलता है कि हाँ यार ये इसमें ये चीज़ है ये एक्चुअरीज के लिए जा सकता है.
0: ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक किस चीज़ की टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए. वन इज कि मैथ्स, आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर द की थिंग्स जो कम आती हैं. वो स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ नॉट स्ट्रांग अ पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम कि कई बार क्या होता है कि स्कूल में बच्चा प्रॉबिबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं होता बट इवेंचुअली दे ग्रो अप, उनका माइंड ऐसा होता है कि दे आर क्यूरियस अबाउट इट, दे वॉन्ट टू डू गुड इन दोज थिंग्स. तो इवन इफ देर इज अ स्लाइट इंटरेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉबिबिलिटी दे शुड गो अहेड फॉर इट. देन अनदर थिंग इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स आती है एंड अकाउंटिंग आती है. तो दीज टू थिंग्स अगर इन में से किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल सेट है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उनका इंटरेस्ट इस एरिया में है, तो दे शुड डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट. ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अपनी बात करी, मेरा एनालिटिकल माइंडसेट था, मेरे को चीज़ें एनालाइज करना, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करता था, नंबर से बहुत इंटरेस्ट था. मैं सुडोकू खेलना मेरे को बहुत पसंद है. तो ऐसे अगर नंबर से खेलना या कैलकुलेशंस करना, स्टैटिस्टिकली सोचना कि इस अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इससे फाइनेंशियली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ऐसी कुछ स्किल्स हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली एक्चुअल साइंस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज टू गो इन.
1: ओके, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. मृंदा हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक्चुअलीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. फर्दर और कुछ चीजें हैं जो यहां पर हम डिकोड करेंगे, बट विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर शो चल रहे हैं पर वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान यहाँ पर मिस्टर मिलिंद कपूर एक्चुअरीज डिपार्टमेंट से आते हैं। एक्चुअरियल साइंस उसका ऑफिशियल नाम है और यहाँ पर हम उसे एक डिपार्टमेंट को, उसे एक पर्टिकुलर डोमेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प भी हो सकती है अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक कि यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर लाइफ। सो वी आर हियर ट्रिगरिंग योर क्यूरियोसिटी ताकि आपको ये पता लग सके कि अगर आपके पास ये वाला स्किल सेट है सो यू माइट थिंक ऑफ दैट डिपार्टमेंट एक्चुअरीज, क्योंकि बहुत कम इसके बारे में बात होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है जो एक्चुअरीज में तो काम करता ही ऑब्वियसली क्योंकि वो आपका जॉब डोमेन है, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन मेरी और मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो अप्लाई होता है, विच इज रिस्क इवैल्यूएशन। यू डू दैट पार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस डोमेन, बट आई वॉन्ट टू नो वट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला। लाइक अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को अपनी लाइफ में रिस्क कैलकुलेट करना है, हाउ कैन आई डू दैट?
1: सो सागर बेसिकली क्या होता है ना कि यू थिंक ऑफ इवेंट्स दैट कुड हैपन, ठीक है। रिस्क इवैल्यूएट करने का सबसे मेजर रीजन यही है कि आप रिस्क मिटिगेट करना चाहते हो कि यार मैं इस सिचुएशन में ना हूँ, इससे बेटर मैं पहले ये करके रख लेता हूँ। तो जनरली रिस्क इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ यू डोंट क्वांटिफाई द रिस्क कि इतना मेरा रिस्क होने वाला है। यू थिंक अबाउट कि हाउ कैन आई मिटिगेट द रिस्क और वट रिस्क कैन हैपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर ड्राइविंग, यू थिंक कि यार मैं जा रहा हूँ, देयर कुड बी चांसेस आई मेरे को इमीडिएट ब्रेक्स लगाने पड़े, तो यू टेक रिस्क मिटिगेशन, आपने सीट बेल्ट लगा ली, ठीक है। यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्पीड लिमिट, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ रिस्क मिटिगेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक ऑफ, ठीक है। जनरल डे टू डे एनवायरमेंट में देर आर वेरियस रिस्क दैट अब इन इंडिविजुअल कैन अब कम अक्रॉस, तो आपको जस्ट ये सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन दिस सिनेरियो, तो इस सिनेरियो में मेरे को क्या करना है कि मैं वो अवॉइड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनीज की भी बात करूं, तो कंपनीज कैसे रिस्क इवैल्यूएट करती हैं? कंपनीज रिस्क इवैल्यूएट करती हैं कि यार ठीक है, मेरे को आज मान लो मेरे को 10 लोग, मैं एज्यूम करता हूँ कि इस साल मेरे 10 लोग मर जाएंगे, मेरे को उनको क्लेम पे आउट करना पड़ेगा। तो कंपनी सोचते हैं कि यार मैं 10 तक क्यों सीमित रहूँ, क्या पता कोई पैंडमिक हो जाए, कोविड हुआ था जैसे, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, उसको एज्यूम करते हैं कि हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है, 10 नहीं 100 हो सकता है। तो इस केस में अब उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनके लिए सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि वो एक साइड पे पैसा एक्स्ट्रा बना के रखें अपने पास कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो चीज़ को मीट कर सकें, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है लोग ज़्यादा मरें। आपने देखा आजकल मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन चल रही है, हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में रिटर्न्स कम है, मार्केट डाउन जा रही है। तो इस केस में अगेन कंपनी ने कहीं पे पैसा लगा रखा होगा, उनका कंपनी को पैसा भी वापस रिटर्न जो है वो कम मिल रहा होगा, बट उनको पॉलिसी होल्डर जो है उसको तो एक अमाउंट फिक्स कर रखी है उन्होंने कि आप अगर आपका अगर क्लेम आएगा तो मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा। तो वो कैसे मीट करना है? अगेन उन्होंने कुछ पैसा उसके लिए साइड रखा हुआ है कि अगर मेरी मार्केट डाउन जाती है तो मेरे को फिर भी इतना पैसा देना होगा, तो इतना पैसा मैं अलग से उस चीज़ों के लिए रखता हूँ। ऐसे अलग अलग रिस्क कंपनी कंसिडर करती है और उसके बेसिस पे फिर वो आगे अपना फ्यूचर प्लान करती है।
0: ओके,

0: एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते टाइम जब आप एक स्क्रैप से बना रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू कीप इन माइंड? किन पैरामीटर्स पे आप उसको तोलते हो कि यार ये पॉलिसी मैं बनाऊंगा, इसका इतने सम अश्योर्ड पे इतना प्रीमियम होगा, एट द सेम टाइम कितना रेशो यहाँ पर आपके सामने स्टैट्स का होता है कि यार ये पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में प्रेडिक्शन इतना हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसमें बहुत हद तक शायद ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक रोल प्ले करता होगा कि इतनी पॉलिसीज बिकनी ही चाहिए, ठीक है? तो ये कैसे काम करते हैं नंबर्स?
1: तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज और सारी कंपनीज वर्क करती हैं, हमने सबने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सुना हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, कि मेरे को कंपनी लॉन्ग टर्म चलानी है, ठीक है? लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कंपनीज क्या एम करते हैं कि उनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए, ठीक है? तो जनरली जब भी एक पॉलिसी बिल्ड हो रही होती है, ठीक है, तो जैसे आपने बोला बिल्कुल सही कि एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ पॉलिसीज दे हैव टू मेक श्योर कि इतनी पॉलिसीज ऑन हो, क्योंकि जो उस पॉलिसी को बनाने में पैसा लगा है, सब कुछ लगा है, वो तो एटलीस्ट रिकवर हो, राइट? तो उसके लिए एक लिमिट होती है डेफिनेटली। बट देन जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, जनरली हमारे यहाँ पे फेमस प्रोडक्ट्स क्या हैं कि एक पर्टिकुलर, या तो आप टर्म में अगर आपकी डेथ होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, या फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टर्म कंप्लीट हो गई, आप जी गए वहाँ तक, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो अब वो जीने ना जीने की चीज़ जो है उसको स्टडी करना होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने बताया कि पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड को हम स्टडी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। उसके अलावा क्या होता है, आप देखते हैं हमारी कंट्री में सेंसस होता है, ठीक है, हम रिपोर्ट करते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम रिपोर्ट करते हैं कि ये अब पर्सन नहीं रहे, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर डेटा बनता है जिससे कैलकुलेट होता है कि पिछले 15 साल या 20 साल में कितने लोग मरे और कितने लोग जिंदा थे, तो एक हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है उससे कि इतने में इतने लोग मरे। तो वो चीज़, अब वो चीज़ भी उसमें ट्रेंड्स निकालने पड़ते हैं आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कंसिडर होती है एज, आप किस एज पे इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी हैबिट्स क्या हैं, क्या आप स्मोकर हैं, क्या आप स्मोकर नहीं हैं, ठीक है? आप ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी हेल्थ हैबिट्स थोड़ी ऑन अ वीकर साइड है, देर आर चांसेस कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, देर आर वेरियस थिंग्स, ठीक है, विच इंक्रीजेज योर मोर्टैलिटी, ठीक है? ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर इंश्योरेंस की बात करें, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपका पोस्ट कोड काफ़ी मैटर करता है, आपका एरिया काफ़ी मैटर करता है, आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया होगा, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में चोरी बहुत होती है गाड़ी की, तो वहाँ से क्लेम आने बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है? अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स क्या हैं, आपसे कंपनीज ये पूछती हैं कि नो क्लेम डिस्काउंट आपको मिलता है, राइट? वो इसीलिए मिलता है आपको, इट्स काइंड ऑफ अ बेनिफिट टू यू। वो बेनिफिट क्यों दे रही है कंपनी आपको, क्योंकि आपकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी है, आप स्पीड लिमिट्स फॉलो कर रहे होंगे, आप सीट बेल्ट लगा रहे होंगे, आप रेड लाइट्स फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं वाइल प्राइसिंग द पॉलिसी एंड वाइल सेटिंग अप द पॉलिसी एज वेल।
0: यहाँ पर हमने एक टर्म यूज करी है स्मोकर, एक्चुअली डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्मोकर या एक अल्कोहलिक इंसान जो है उसको रिस्क इवैल्यूएशन उसका कैसे होता है?
1: तो देखिए क्या होता है ना कि आपके जब ये स्टडी डेटा होता है, ठीक है, डेटा स्टडीज में अगर मान लीजिए आप 100 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं फॉर अ नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर पर्सन, ठीक है, उस पर एक फैक्टर लगाया जाता है ऊपर से कि अगर ये स्मोकर इंसान है तो इतना परसेंट इसका ज़्यादा चांसेस हैं मोर्टैलिटी होने के, मतलब इसके मरने के, ठीक है, तो इसलिए इसका इतना फैक्टर से प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये फैक्टर इज़ नॉट समथिंग दैट कंपनी एज्यूम कि ठीक है 1.2 ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ स्मोकर्स, इवन विद इन द स्मोकर्स एज वेल हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है थ्रू द ऑब्वियसली गवर्नमेंट एजेंसीज एंड वेरियस एजेंसीज कि इतने स्मोकर्स थे, इसमें से भी इतने स्मोकर्स मरे, ठीक है। अगर आप स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर डेथ्स का कंपैरिजन करेंगे, आप एक्सीडेंटल डेथ्स को हटा दीजिए, नेचुरल डेथ्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो देयर विल बी हाईली लाइकली चांसेस ऑफ अ स्मोकर पर्सन डाइंग एज कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर पर्सन। तो एक एक्चुअल साइंस में वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है जिसमें कि मोर्टैलिटी का ट्रेंड भी पढ़ाया जाता है कि एज 18 से लेके 90 या 120 एज तक कैसे मोर्टैलिटी ट्रेंड वर्क करता है।
0: ऑलराइट, और एक अल्कोहलिक,
1: एल्कोहलिक अगेन वर्क्स ऑन द सिमिलर बेसिस, बट अगेन एल्कोहल में देर कम्स अ कंडीशन कि आप कितनी ड्रिंक कर रहे हैं, कितनी रेगुलर कर रहे हैं, विच इज़ अगेन केस विद द स्मोकर एज वेल. बट देन स्मोकर के केस में ये है कि आपका दो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे, आप एक्टिव स्मोकर हैं या पैसिव स्मोकर हैं. ठीक है, एल्कोहल में तो आप ड्रिंक कर रहे हैं. अगर आप कई बार तो आपने न्यूज़ में भी सुना है डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं कि हैविंग टू पेग्स अ डे इज़ गुड, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनीज डोंट सी इट दैट वे. ठीक है, दे सेग्रीगेट पीपल हु आर ड्रिंकिंग टू मच एंड हु आर ड्रिंकिंग ऑन अ मिनिमल बेसिस. ठीक है, बिकॉज अगर मैं कम पी रहा हूँ तो मेरे चांसेस अगेन कम होंगे मेरे लिवर को इम्पैक्ट करने पे या कोई और बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करने पे. बट जो ज़्यादा पी रहा है रेगुलर बेसिस पे पी रहा है, तो उसके लिए पूरी स्टडीज़ करी जाती हैं, एक प्रिडिक्शंस कैलकुलेट करी जाती हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट करे जाते हैं बेसिस दैट, एंड दैट्स हाउ प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड.
0: सो अमेजिंग. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक एक्सेस मिला है एक पॉलिसी मेकर के माइंड का. तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको डिकोड करने की. लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. कहीं जाइएगा, मैं जुड़े रही हमारे साथ. फील गुड फील.

0: गुड फील लाइफ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ, और हमारे साथ है मिलिंद कपूर। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली रिस्क की। हम लोग बेसिकली रिस्क के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें खाली इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है, याद रखिएगा। ये आपके और मेरे जीवन से भी जुड़ी हुई है, तो इनको वैसे भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। मिलिंद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम बहुत बार डिसीजन लेते हैं इमोशनली लेते हैं, जब अपने करियर चूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो इमोशंस को अपने हम प्रायोरिटाइज करते हैं। एक एक्चुअरियल थिंकिंग से, एक एक्चुअरियल थिंकर के माइंडसेट से एक नॉर्मल आदमी क्या सीख सकता है, कैसे लेने होते हैं डिसीजन सही?
1: आई थिंक इसमें एक्चुअरियल थिंकिंग इतनी नहीं लगेगी, बट जो चीज विद एक्सपीरियंस मैंने सीखी है एटलीस्ट, वो है पेशेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हीट ऑफ द मोमेंट में काफी डिसीजन ले लेते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं यार, आई थिंक ये ऑप्शन अगर मैंने ली होती तो बेटर होता। एंड कई बार आई थिंक सबको लगता होगा कि वो किसी डिस्कशन में है, उन्होंने कुछ बोल दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ सोचा कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या बेटर कर सकता था। एंड आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरे को लगता है यार, मैं बाद में जो मेरे मन में आता है, मेरे को लगता है कि यार वो ही सही था, मुझे जो बाद में मैंने सोचा था वो सही था। तो ऑलवेज टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, देर इज नो हरी इन एनीथिंग, जस्ट बी पेशेंट अबाउट इट। ठीक है, लाइफ में हर किसी की टाइमलाइन अलग है, लाइफ में हर किसी के डिसीजंस अलग हैं, हर चीज़ अलग है, तो वी नीड टू एकोमोडेट विद आर ओन पेस। ठीक है, बट वी आर गोइंग अहेड विद, तो पेशेंट होना आई थिंक इस केस में बहुत ज़रूरी है।
0: सो अमेजिंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल जो सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड आई वुड से, कि लोगों को लगता है यार इंश्योरेंस क्यों ही लेना है, इतना गलत सोचना ही क्यों है। आपके पास क्योंकि डाटा होता है, स्टैट्स होता है, तो आप फिलोसफिकल बात नहीं करोगे, आप मेरे को जाहिर सी उम्मीद है कि आप डाटा के हिसाब से जवाब दोगे। तो आप बताइए कि कितना ये बात सही है और कितना हमें उसको सीरियस लेना चाहिए इंश्योरेंस डोमेन को।
1: देखिए, दिस इज वेरी ट्रू। मैंने फॉरेन मार्केट में भी काम किया है एंड इंडियन मार्केट में भी काम किया है, बट आई रियलाइज दिस कि इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज स्टिल अनटैप्ड। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देर आर स्टिल एरियाज वेयर पीपल डोंट बाय इंश्योरेंस। ठीक है, बिकॉज आई थिंक मैं खुद एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो आई थिंक हमारी प्रायोरिटी पहले क्या रहती है, सेविंग करना, कि यार ये पैसे जोड़ लो ये तुम्हारे काम आएंगे, ये पैसे जोड़ लो ये तुम्हारे आगे काम आएंगे, तो हम वो ही माइंड सेट में रह जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है टर्म एश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्म के ड्यूरिंग अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को उसमें पैसा मिलेगा। अब लोग सोचते हैं यार, अगर मैं मरा ही नहीं उस टर्म में तो मैंने जो प्रीमियम दिया वो तो मेरा बेकार हो गया, मेरे को तो पैसा मिला ही नहीं, इससे बेटर मैं एक FD कर लेता हूँ, मेरे पास एटलीस्ट वो पैसा भी है और वो चीज़ भी है। बट लोग वो ये नहीं सोचते कि जितना वो प्रीमियम दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको सम एश्योर्ड में मिलता है जनरली। ठीक है, टर्म एश्योरेंस ऐसे हेल्प करता है, बट हम एज अ फैमिली, हम इंडियंस ये सोचते हैं कि यार मेरे को सेव कर लूँ, मेरे पास पैसा है वो मैं कभी भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बड़े सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम इंश्योरेंस को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आजकल आफ्टर कोविड एटलीस्ट हमने ये देखा है कि लाइफ हैज़ नो गारंटी, लाइफ हैज़ यू, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस इज वेरी मच देयर टू प्रोटेक्ट यू, योर फैमिली, योर किड्स, फॉर देयर स्कूलिंग, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर वट एवर नीड्स दैट दे हैव। ठीक है, आई थिंक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ये रूल है मोटर इंश्योरेंस का कि यू हैव टू हैव कंपल्सरली मोटर इंश्योरेंस, इंडियंस गो फॉर इट, वी गो फॉर इट। ठीक है, बट अदरवाइज वी नीड टू अप्लाई दिस रूल टू आवर कल्चर कि हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ बैकअप। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने BCom ऑनर्स करके मैंने बैकअप रखा अपने पास कि यार अगर मेरे से एक्चुअरियल साइंस नहीं हुई तो मैं BCom ऑनर्स करके मैं CA कर सकता हूँ, मैं CS कर सकता हूँ, CFA कर सकता हूँ, या मैं किसी भी फाइनेंस लाइन में जा सकता हूँ MBA करके। बट इंश्योरेंस इज सिमिलर बैकअप कि अगर कल को अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो भी जाता है तो आई हैव अ बैकअप।
0: सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बैकअप के लिए तैयार होना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। एंड मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बहुत सारे लोग इस टाइम जो आपको सुन रहे हैं, दे माइट गेट इंस्पायर्ड कि यार एक्चुअली अच्छा डिपार्टमेंट है। आई वांट टू नो अबाउट द फाइनेंस पार्ट, कि सैलरीज कैसे कैसे होती हैं यहाँ पर, रेंज कितना जाता है।

0: से शुरुआत होती है, अपना बता सकें अगर आपकी, कितने से आपने शुरुआत करी थी और कहाँ तक वो रेंज जा सकता है?
1: जब एक्चुअली आजकल इंडस्ट्री में फ्रेशर्स जो भी ज्वाइन करता है उनके लिए एक सेट मार्केट रेट फिक्स है, ठीक है, इट कैन रेंज बिटवीन 6 to 8 lakhs
0: पर एनम,
1: ठीक है, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स. एंड अगेन सी, ये सैलरीज बिटवीन द फ्रेशर्स इज ऑल्सो वेरी फ्लक्चुएटिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको कंपनी से इंक्रीमेंट्स मिलते हैं. नाउ इफ समवन इज जॉइनिंग विद अ वन पेपर तो उसकी सैलरी कम होगी एज कम्पेयर टू समवन हु इज जॉइनिंग विद 4 papers, राइट, क्योंकि उसको 3 paper का इंक्रीमेंट साथ में ही उस समय एज अ फ्रेशर भी मिलेगा, उसका बेनिफिट होता है. आपके जितने ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर हैं उसका सैलरी में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा. बट देन अगेन एज अ फ्रेशर वी नीड टू मेक श्योर कि हम ओवर क्वालिफाइड भी ना हो जाएं, क्योंकि कंपनीज भी उनको हायर करती है कि 4 papers clear हो 5 papers clear हो एट मैक्स एज अ फ्रेशर उनको हायर करती है, बिकॉज दे माइट बी एबल टू गेट अ पर्सन विद लेसर पेपर एंड वो ड्यूरिंग द जर्नी उनके क्रिएट करेगा अपने एग्जाम्स, तो उनको ड्यूरिंग द जर्नी पे करना पड़ेगा, नॉट एट इनिशियल फ्रंट एज वेल, ठीक है. तो दैट इज़ वन थिंग. मैं बात करूँ तो खुद की, तो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था एंड आई स्टार्टेड विद 4.5 lakhs पर एनम एंड आई हैड 4 exams क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नाउ डेफिनेटली इन्फ्लेशन इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर, तो प्राइसेज हैव इंक्रीज, बट या इट अगेन डिपेंड्स ऑन द पेपर्स दैट हैव क्लियर.
0: और मैक्सिमम इंडस्ट्री में मैक्सिमम रेंज कितना जा सकता है इसमें?
1: Honestly, maximum range ka I don't have any idea at the current point of time because generally salaries are not that much discussed. But I think jo online platforms se what we feel is ki I think there might be people who must be earning 1 crore per annum. Something like that. But haan, again, with increasing fluctuations in the interest rates and inflation and everything, these rates are going up and up and competition is severe in the market. ठीक है, competition ऐसा है market में कि if one person leaves a job from one company, their replacement is already available. ठीक है, and I think at current point of time, lots and lots of people are taking up actuarial science as well. So that is why, because of that, companies are getting cheaper options as well because everyone wants to get a job. So these salary rates are quite fluctuating.
0: Can AI isko affect kar sakta hai? How AI is helpful and is it a competition? Kya kabhi replace kar payega actuarial science ke professional ko AI?
1: I don't think wo replace kar sakta hai, but AI so far has been aiding our journey throughout. And since AI is also new, AI is evolving, we are also evolving with AI. Definitely there are certain processes jo AI easier kar deta, like you have to do some analysis, you have to think about something, you can get that AI to do that for you. ठीक है, आपने AI का point raise kara, I think this is very beautiful point. People should need to know what prompts to put it into AI, because AI कुछ भी generate कर सकता है आपके लिए. If you know how to give a prompt to AI वो चीज़ आपको करके दे सकता है. डेली बेसिस पे वी आर ऑल्सो यूजिंग AI इन आर वर्क्स इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड. अगर फॉर example मेरे को कोई नई टर्म आ रही है तो आई फर्स्ट थिंग what आई डू इज आई गो ऑन चैट GPT, टेल मी कि what इज दिस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, there are various versions of AIs as well. Like for example, there is one Claude. वो coding भी कर लेता है, वो आपको models भी बना के दे देगा, वो आपको सारा का cash flows वगैरह बना के दे देगा. But again, everyone knows कि AI is only as reliable as the prompt that goes in. Garbage in, garbage out वाला concept है उसमें भी. आप अगर prompt अच्छा देंगे, उसका output अच्छा आएगा, ठीक है. But then again, you cannot rely on AI output. आपको स्टिल वैलिडेशन, स्टिल उस पर एनालिसिस करना जरूरी है कि वट एवर द AI हैज़ गिवन यू इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग एक्चुअल जॉब्स, आई डोंट थिंक AI कैन डू इट बाय इटसेल्फ. ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ मैनुअल इंटरवेंशंस दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस जॉब. यू हैव टू टेक अलॉट ऑफ डिसीजंस, यू हैव टू टेक अलॉट ऑफ थिंग्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिजर्व कैलकुलेट करना है कंपनी के लिए कि इतना आपको फॉर एग्जांपल इस साल का एक कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजर्व कैलकुलेट करना है. AI cannot completely do that because you have to set certain assumptions. ठीक है, वो assumptions set कौन कर रहा है? वो actuaries set कर रहे हैं. मोर्टैलिटी का डेटा कौन रीड कर रहा है? एक्चुअरीज रीड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अजम्पशन सेट कर रहे हैं. एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, काफ़ी चीज़ें हैं. तो काफ़ी मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है. डेफिनेटली एआई विल ग्रो इन द फ्यूचर, बट देन अगेन आई थिंक द जॉब्स विल स्टिल बी सेफ एंड एआई विल बी काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग हैंड इन कंटिन्यूइंग विद आवर जॉब्स.
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग. व्हाट You feel कि आपके अंदर चेंज हुआ है after joining actuaries, after becoming a professional in actuaries, आपकी personal life में क्या changes आए हैं?
1: Right. I think what I have learned is being able to understand people. ठीक है, उनसे बात करना. Everyone has a different point of view. Even अगर मैं जैसे office जाता हूँ तो I like to talk to people, socialize with them. सब क्योंकि and this is a very actuarial science is not a very small particular area जो आप just आपने for example 13 papers clear कर लिया आपको आ गया वो. In practicality while you are doing your job it is very wide, it is very vast. ठीक है, तो there are everyday new learnings. तो what actuarial science has taught me is to be open to learning, never be closed about it. ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी मेरे अंदर बिल्ड हुई है इससे. ठीक है, वन थिंग दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी इन माय जर्नी एज वेल इज टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज एक्चुअल साइंस में वन स्किल दैट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी टू हैव इज टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल बी क्रश्ड बाय डेडलाइंस इन योर वर्क एंड यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स एज वेल प्लान्ड फॉर a particular diet. You have to manage your exams, you have to manage your workload, you have to manage some time with your family, and then again you need your personal space as well. So time management, ye sari skills I think I am still developing, and obviously people skills is something that I really appreciate. So wo bhi main saath saath seekh raha hu.
0: So amazing. I'm done with my questions. Is there anything jo main nahi puch paya aur aap kehna chahte ho, aapke man mein ho, to please feel free.
1: Nay, I think we have covered quite a variety of areas. I think main ek cheez batana chahunga ki actuarial science mein jaise for example people still don't understand what actually actuarial science is. Theek hai, abhi bhi main kisi ko batata hu ki actuarial science kar raha hu to first thing is ki we have to explain them ki actuarial science kya hai. Then आई थिंक हम भी ईजिएस्ट वे आउट ढूंढते हैं तो हम बोलते हैं ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है. तो समटाइम्स फील कि अच्छा इंश्योरेंस से रिलेटेड, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज कि अच्छा पॉलिसी बेचते हो आप. बट दैट इज़ नॉट द ओनली जॉब दैट इज देयर इन इंश्योरेंस सेक्टर, देर आर लॉट ऑफ एरियाज. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन एक्चुअल साइंस मैंने जैसे आई थिंक हमने डिस्कशन में काफ़ी एरियाज कवर करे. वन आई टोल्ड वॉज एजम्पशन सेटिंग, आप एजम्पशन सेट करते हो. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, आप प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हो. प्राइसिंग, आप प्रीमियम प्राइसिंग कैसे होनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिफाइन कर सकते हो. देर इज़ वन रिपोर्टिंग एरिया जहाँ पे आप रिजर्व्स कैलकुलेट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी. देर इज़ वैल्यूएशन, वी हैव IRDAI, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ईच एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया हैव टू रिपोर्ट टू देम देयर लाइबिलिटीज, वट आर देयर एसेट्स, हाउ दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग. तो वो सारी रिपोर्टिंग भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज किससे करवाती है, वो एक्चुअरीज करते हैं उनके लिए. तो देर आर वाइड एरियाज. रिस्क मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि फ्यूचर रिस्क इवेल्युएट करना है आपको, दैट यू हैव टू डू. आपको सॉल्वेंसी कैपिटल कैलकुलेट करनी है. कैपिटल इज बेसिकली कि आपके पास आज के टाइम पे कितना पैसा होना चाहिए कि आपको क्लाइंट्स मतलब पॉलिसी होल्डर्स के आप क्लेम्स मीट कर सको. तो एक्चुअल साइंस इज नॉट अ स्मॉल एरिया, इट्स अ वेरी वाइड एरिया. पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज एंड देन ऑब्वियसली वी हैव लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इज ऑल्सो देयर. इवन फॉर एग्जाम्पल पेंशंस, ग्रेचुटी कैलकुलेशंस एंड एम्प्लॉई बेनिफिट्स इज ऑल्सो वेयर एक्चुअरीज प्ले देयर रोल्स.
0: सो दिस प्रोफेशन, दिस डोमेन इन इटसेल्फ इज वेरी बिग, वेरी वास्ट. ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज जस्ट बीइंग इन लव विद मैथमेटिक्स, बीइंग इन लव विद द नंबर्स, बीइंग इन लव विद द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज. एंड देर आर सो मेनी ऑप्शन, जैसा मिलिंद ने बताया पूरा अच्छे से एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करी कि अगर आप जेन्युइनली उसको करना चाहते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट, सो यू शुड बी इन लव विद द नंबर्स. बाकी इंश्योरेंस क्योंकि डोमेन काफी वास्ट है और काफी सारी नई कंपनीज आ रही हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सो विद दिस चीजें भी चेंज हो रही हैं, प्रोफाइल्स भी फिल्टर आउट हो रही हैं, बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है. सो इफ यू आर इन लव विद द नंबर्स, यू कैन एक्सप्लोर दिस डोमेन. द नेम ऑफ दिस डोमेन इज एक्चुअरियल साइंसेज. Just go and check it out. Thank you so much, Milind, for doing this. I loved this session. Honestly, this is one of the sessions जो मुझे बहुत मजा आया personally. मैंने बहुत कुछ सीखा. Thank you for doing this, man.
1: Thank you, Sagar.
0: All right, दोस्तों, on this note, वक्त है अपने show को यहाँ पर conclude करने का. I just hope आपको मजा आया होगा इस show में. चलते हैं फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और show. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए. This is RJ Sagar signing.
2: ज्वाला समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
3: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
3: तो फिर एक वादा करो.
2: मेरी जान मांग लो जान मेरी.
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
2: ज्वाला ये मेरा वादा है.

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेले के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं औषधीय गुणों से भरपूर। करेले को सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक औषधि भी माना जाता है। डायबिटीज और शुगर के मरीजों के लिए इसका सेवन बेहद लाभकारी माना जाता है। किसान भाइयों, डॉक्टर भी कई बार मरीजों को करेले का जूस या सब्जी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये खून में शुगर की जो मात्रा है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा करेले में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसका सेवन पाचन शक्ति बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और त्वचा रोगों में राहत देने में सहायक माना जाता है। पथरी, मोटापा, उल्टी दस्त, पीलिया और खूनी बवासीर जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग लाभकारी बताया जाता है, और यही कारण है कि बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो किसान भाइयों, करेले की खेती को कैसे आप बेहतर से बेहतर करके बेहतर से बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं, बताऊंगा, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: जी से।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, आज बात हो रही है करेले की खेती के बारे में। करेले की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक आय देने वाली खेती मानी जाती है। कई किसानों का कहना है कि इसकी खेती में लगने वाली लागत की तुलना में कई गुना अधिक कमाई हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किसान बताते हैं कि एक एकड़ खेत में करेले की खेती करने पर लगभग 30,000 रुपए तक की लागत आती है, जबकि इससे करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में इसकी लगातार मांग रहने के कारण किसानों को अच्छे भाव मिल जाते हैं। अगर किसान सही समय पर बुवाई करें और फसल की देखभाल भी ठीक तरीके से करें तो उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि अब अधिक किसान करेले की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और भी देखिए किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, जब तक आप उसकी जो तकनीक होती है नहीं समझेंगे तब तक आपकी फसल बेहतर नहीं हो सकती है। आज आपको करेले की खेती के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो इस फसल के लिए ज़रूरी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि करेले की फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और तापमान कैसा होना चाहिए। करेले की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी और अनुकूल तापमान का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी आवश्यक है, क्योंकि पानी का ठहराव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तापमान की बात करें तो करेले की खेती के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन अधिक पानी नहीं होना चाहिए। सही जलवायु और मिट्टी मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक फल देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, करेले की खेती के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूं। अब सवाल आता है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करके अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, करेले की खेती में अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज बाजार में कई हाइब्रिड और उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जिन्हें किसान अपने क्षेत्र और मौसम के अनुसार चुन सकते हैं। प्रमुख किस्मों में पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा औषधि, पंजाब करेला 1, पंजाब 14, अर्का हरित, हिसार सिलेक्शन, कल्याणपुर बारामासी और पूसा शंकर 1 जैसी किस्में काफी लोकप्रिय हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रखती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित हाइब्रिड किस्मों की मदद से किसान साल भर करेले की खेती कर सकते हैं। यही किस्मों का चयन करने से फसल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, करेले की बुवाई का सही समय और तरीका क्या होता है, ये भी आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
2: देखिए किसान भाइयों, करेले की जो खेती है ना, वो साल भर की जा सकती है, लेकिन मौसम के अनुसार इसकी बुवाई का समय अलग अलग होता है। गर्मी की फसल के लिए जनवरी से मार्च तक बुवाई की जाती है। बारिश के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में जून से जुलाई के बीच इसकी बुवाई की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से जून तक इसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है। बुवाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसे समतल करना चाहिए। इसके बाद 2-2 फीट की दूरी पर क्यारियां बनानी चाहिए। बीजों को 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बीजों को बुवाई से पहले 1 दिन पानी में भिगोकर छाया में सुखाना लाभकारी माना जाता है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखने से बेलों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, आप करेले की बुवाई कर सकते हैं और अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, आप जानते हैं करेले का जो पौधा होता है वो बेल के रूप में बढ़ता है, इसलिए इसे सहारा देना बेहद जरूरी होता है। अगर बेलों को सहारा नहीं दिया जाए तो फल जमीन पर लगकर खराब हो सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आप बांस, लकड़ी या लोहे की छड़ों का उपयोग करके बेलों को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इससे पौधों में हवा और धूप का सही संचार होता है और फल की गुणवत्ता बेहतर होती है। सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। फूल और फल बनने के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें खेत में पानी जमा ना हो, वरना जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे खराब हो सकते हैं। करेले की फसल में शुरुआती समय में निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। खरपतवार पौधों की वृद्धि रोकते हैं और पोषक तत्वों की कमी पैदा करते हैं, इसलिए समय समय पर खेत की सफाई करते रहना चाहिए। बुवाई की अगर हम बात करें तो बुवाई के लगभग 60 से 70 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाती है। करेले की तुड़ाई हमेशा मुलायम और छोटी अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छे दाम मिल सकें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदा।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे

बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चीलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गोंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गोंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त वहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब खैर।
2: लहरा के आ जरा आंखों से।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान, उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का, कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता, परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा, रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आर्टिस्ट स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास कुछ स्पेशल ट्रेंडिंग टॉपिक, और दोस्तों इस हफ्ते मैं फिर से आ गई हूँ लेकर आपके लिए कुछ खास बातें कुछ खास जानकारी, साथ ही लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। दोस्तों आज हम किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम एक स्पेशल डे पर बात करने वाले हैं, जो स्पेशल डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम रोज सोचते तो नहीं है, लेकिन जो हर दिन हमारी सेहत पर असर जरूर डालता है। दोस्तों सोचिए, हर दिन हम कितनी बार खाना खाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूरी होता है खाना। खाना हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या सिर्फ पेट भरना ही काफी है, या फिर ये भी जरूरी है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के सहयोग से दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये दिन है। इसका उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि फूड सेफ्टी सिर्फ एक चॉइस ही नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत की बुनियाद है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 में इसका थीम भी स्पेशल रखा गया है, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। और इस थीम का मतलब है कि अनसेफ फूड से होने वाली बीमारियों का बोझ को समझना और फिर उसे साइंस डेटा और सही जानकारी की मदद से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना। दोस्तों WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन लोग कंटेमिनेटेड या फिर अनसेफ फूड की वजह से बीमार पड़ते हैं, यानी कि करीब हर 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है कि किसी फूड बर्न डिसीज से प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, हर साल लाखों लोगों की जिंदगी पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कि फूड सेफ्टी आखिर है क्या, फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, पैकेज फूड खरीदने वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और घर से लेकर रेस्टोरेंट तक हम अपने फूड को और ज्यादा सेफ कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंडिंग तड़का में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। दोस्तों, जब हम किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर डायबिटीज, हार्ट डिजीज या फिर पॉल्यूशन का नाम दिमाग में आता है, लेकिन एक ऐसी समस्या भी है जो हर दिन करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है और जिस पर हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते। ये समस्या है अनसेफ या फिर कंटामिनेटेड फूड। जरा सोचिए, WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन लोग यानी कि करीब 10 में से एक व्यक्ति कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से बीमार पड़ता है। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 4,20,000 लोगों की मौत अनसेफ फूड से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। अनसेफ फूड की वजह से होने वाली बीमारियों को फूड बॉर्न डिजीज कहा जाता है और ये बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, हार्मफुल केमिकल के कारण हो सकती है। WHO के मुताबिक कंटामिनेटेड फूड 200 से भी अधिक तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। कुछ केसेस में तो सिर्फ पेट खराब होता है, जबकि कुछ सिचुएशन में बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि बच्चे इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि WHO के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे फूडबॉर्न डिजीज़ के ग्लोबल बर्डन के लगभग 40% हिस्सा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, अनसेफ फूड सिर्फ हेल्थ को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका असर परिवारों पर, स्कूल्स पर, वर्कप्लेस पर और पूरी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जब लोग बीमार होते हैं तो उनकी पढ़ाई, काम और रोजमर्रा की जिंदगी इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स फूड सेफ्टी को सिर्फ हेल्थ इशू ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर का भी इशू मानते हैं। अच्छी बात ये है कि इनमें से बहुत सी फूडबॉर्न डिजीजेस को रोका जा सकता है। सही जानकारी, सफाई की आदत, फूड हैंडलिंग के बेसिक रूल्स और अवेयरनेस के जरिए हम रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर फूड अनसेफ बनता कैसे है, खाने में कंटामिनेशन आता कहाँ से है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट पे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों आज स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूं मैं आपके लिए, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यानी कि 7 जून जो कि मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए। जी हाँ, इस दिन को जाना जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से। इससे हम आज के दिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। ये स्पेशल एपिसोड मैं लेकर आई हूँ फूड सेफ्टी के लिए। दोस्तों पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि अनसेफ फूड दुनिया भर में कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर फूड अनसेफ बनता कैसे है। इसका जवाब है फूड कंटेमिनेशन। सिंपल से शब्दों में कहे तो फूड कंटेमिनेशन का मतलब है कि खाने में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये कंटेमिनेशन फूड प्रोडक्शन से लेकर कुकिंग और सर्विंग तक किसी भी स्टेज पर हो सकता है। एक्सपर्ट्स आमतौर पर फूड कंटेमिनेशन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल कंटेमिनेशन। सबसे पहले है बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। ये सबसे कॉमन टाइप माना जाता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई फंगी फूड में पहुंच जाता है, जिससे अगर खाना साफ हाथों से प्रिपेयर ना किया गया हो या फिर फूड को गलत टेम्परेचर पर स्टोर किया गया हो तो ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से फूड पॉइजनिंग के कई केसेस सामने आते हैं। दूसरा है केमिकल कंटेमिनेशन। ये तब होता है जब फूड में हार्मफुल केमिकल मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अगर गलती से फूड के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो हेल्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी माना जाता है। तीसरा है फिजिकल कंटेमिनेशन। इसमें फूड में कोई अनचाही फिजिकल चीज मिल जाती है, जैसे कि बाल, प्लास्टिक का टुकड़ा या फिर मेटल का कोई छोटा सा पीस या फिर ग्लास का कोई पार्टिकल। ऐसे केसेस कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो ये सीरियस इंजरी भी बन सकते हैं। दोस्तों कंटेमिनेशन सिर्फ फैक्ट्रीज या फिर रेस्टोरेंट में ही नहीं होता है, बल्कि घर के किचन में भी कुछ कॉमन मिस्टेक से ये बन सकता है। जैसे कि रॉ और कुक्ड फूड को एक साथ रखना, सेम चॉपिंग बोर्ड को बिना साफ किए अलग अलग फूड्स के लिए यूज करना, या फिर बचे हुए खाने को बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना। इसीलिए फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंटेमिनेशन को रोकना ट्रीटमेंट से ज्यादा आसान है। अगर हम प्रिपरेशन, स्टोरेज और हैंडलिंग के बेसिक रूल्स को फॉलो करें तो बहुत सी फूड रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों अब जब हमें कंटेमिनेशन के बारे में पता चल गया है तो अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि पैकेज्ड फूड और फूड लेबल्स की। क्या आप एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट का असली फर्क जानते हैं? और इसका जवाब मिलने वाला है अगले सेगमेंट में, क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। स्पेशल एपिसोड में आज मैं फूड सेफ्टी से जुड़ी कुछ जानकारी, कहीं तो कुछ जरूरी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों आजकल हम सब पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, स्नैक्स, जूस, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोजन फूड या फिर कोई दूसरी चीजें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन एक सवाल है, जब आप कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड या फिर प्राइस या फिर उसका लेबल? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फूड लेबल एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी की तरह होता है। इसमें ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जो कंज्यूमर को सेफ और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट की। मैन्युफैक्चरिंग डेट बताती है कि प्रोडक्ट कब बनाया गया था, जबकि एक्सपायरी डेट ये बताती है कि किस डेट तक उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना सेफ माना जाएगा। इसलिए किसी भी पैकेज्ड फूड को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और टर्म पर जो कई लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है बेस्ट बिफोर। बेस्ट बिफोर का मतलब ये होता है कि उस डेट तक प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी, टेस्ट और टेक्सचर मेंटेन करेगा, लेकिन एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर डेट एक जैसी नहीं होती, इसलिए कंज्यूमर को लेबल्स ध्यान से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। फूड लेबल्स पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी दी जाती है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल है। अगर किसी व्यक्ति को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंडिया में पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट पर FSSAI लाइसेंस नंबर भी दिया जाता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है। इसलिए कंज्यूमर्स को खरीदारी के दौरान ये भी देखना चाहिए कि प्रोडक्ट पर FSSAI डिटेल मौजूद है या फिर नहीं। दोस्तों छोटा सा लेबल हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, बस जरूरत है उसे पढ़ने की और समझने की। आखिर में याद रखें, स्मार्ट कंज्यूमर्स वही होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी खरीदते हैं। और जब बात हो हेल्थ की तो जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। इस मौके पर फूड सेफ्टी से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी जो आज मैं आपको दे रही हूं। दोस्तों, अब तक हमने अनसेफ फूड, फूड कंटेमिनेशन और फूड लेबल के बारे में बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि एक आम इंसान अपने घर में फूड सेफ्टी को कैसे बेहतर बना सकता है। इसका जवाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। WHO ने 5 कीज टू सेफर फूड नाम से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिन्हें फॉलो करना फूडबॉर्न डिजीज के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। जिसकी पहली की है कीप क्लीन, यानी कि सफाई बनाए रखिए। खाना बनाने से पहले और खाने से पहले हाथ धोना एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल हैबिट है। किचन सर्फेस, चॉपिंग बोर्ड्स या फिर कुछ बेसिक चीजें जो हमारी किचन में है, उसे साफ रखना बहुत जरूरी है। कई बार जर्म्स आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वेल्थ प्रॉब्लम में काफी बड़ा रीजन बन सकते हैं। दूसरी की है सेपरेट रॉ एंड कुक फूड। रॉ फूड खासकर मीट, पोल्ट्री और सी फूड में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कुक्ड फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, इसलिए रॉ और कुक फूड को अलग रखना और उसके लिए अलग अलग बर्तनों का यूज करना, चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तीसरी की है कुक फूड थ्रूली। फूड को सही टेम्परेचर पर और अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कुकिंग कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। हाफ कुक्ड या फिर अंडर कुक्ड फूड कई बार हेल्थ रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। चौथा की है कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। कुक्ड फूड को बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह रेफ्रिजरेटर फूड को भी सही टेम्परेचर पर स्टोर करना जरूरी है। गलत स्टोरेज कंडीशन बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। और पांचवी की है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। साफ पानी और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स फूड सेफ्टी के फाउंडेशन होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोना, फ्रेश प्रोडक्ट्स को चुनना और ट्रस्टेड सोर्सेज से फूड खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि इन पांच प्रिंसिपल्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल हैबिट्स हैं जो हर घर में अपनाई जा सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्हें फॉलो करने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: ये हुई ना बात।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूस्ती हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। स्पेशल एपिसोड में आज मैं आपको बता रही हूँ फूड सेफ्टी और कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमारी ईटिंग हैबिट्स काफ़ी बदल गई है। आज घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप से फूड ऑर्डर करना बहुत आम बात हो गई है। कुछ ही मिनट्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी या फिर हमारी कोई फेवरेट डिश घर तक पहुंच जाती है। लेकिन इस कन्वीनियंस के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, वो है फूड सेफ्टी को लेकर अवेयर रहने की। जब भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें तो कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रेस्टोरेंट की रेटिंग और रिव्यूज़ को ज़रूर देखिए। ये परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन फूड क्वालिटी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस के बारे में एक आइडिया ज़रूर दे देता है आपको। फूड रिसीव करते वक्त पैकेजिंग को चेक करना भी ज़रूरी है। आजकल कई रेस्टोरेंट्स टेम्पर एविडेंट या फिर टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर पैकेज खुला हुआ लगे, सील टूटी हुई लगे या फिर फूड स्पिल हुआ हुआ अगर आपको नजर आए तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर फूड की स्मेल, कलर या फिर कोई टेक्सचर अनयूजुअल लगे आपको तो उसे कंज्यूम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी फूड आइटम को लेकर डाउट हो तो उसे खाने की बजाय अवॉइड करना ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर फूड क्वालिटी ख़राब हो गई है या फिर हाइजीन को लेकर कोई कंसर्न है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कंज्यूमर्स को सेफ फूड पाने का अधिकार है। अगर किसी पैकेज्ड फूड या फिर फूड एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आपको कोई कंप्लेंट है तो उसे एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक पहुंचाया जा सकता है। फूड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस सिर्फ गवर्नमेंट या फिर फूड बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि कंज्यूमर का फीडबैक भी सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब लोग इश्यूज को रिपोर्ट करते हैं तभी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन इन्फॉर्म चॉइस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कंज्यूमर वही है जो सिर्फ टेस्ट और डिस्काउंट नहीं देखते हैं, बल्कि क्वालिटी, हाइजीन और सेफ्टी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। दोस्तों आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमें फूड सेफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा है। हमने जाना कि फूड सेफ्टी सिर्फ एक हेल्थ टॉपिक नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो खाना हम रोज खाते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसलिए फूड का सेफ होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसमें न्यूट्रिशन का होना। आज हमने ये भी जाना है कि अनसेफ फूड दुनिया भर में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चैलेंज मानी गई है। हर साल करोड़ों लोग फूडबॉर्न डिजीज से प्रभावित होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कई केसेस को सिर्फ जानकारी और बेसिक प्रिकॉशंस के जरिए रोका जा सकता है। हमने फूड कंटेमिनेशन के बारे में भी बात की और उसके बारे में भी समझा कि बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल या फिर कोई फिजिकल पार्टिकल्स किस तरह फूड को अनसेफ बना सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि फूड लेबल्स पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो या फिर इंग्रेडिएंट्स और FSSAI डिटेल्स जैसे कि पॉइंट्स कंज्यूमर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करते हैं। WHO की 5 कीज टू सेफर फूड ने भी हमें एक सिंपल सा मैसेज दिया है। सफाई रखिए, रॉ और कुक्ड फूड को अलग रखिए, फूड को अच्छी तरह पकाइए, सही टेम्परेचर पर स्टोर कीजिए और सेफ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी हेल्थ को और ज्यादा पॉजिटिव असर डाल सकती है। फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट के दौर में भी कंज्यूमर अवेयरनेस भी पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। हम जितने अवेयर होंगे उतने ही बेहतर चॉइसेस कर पाएंगे और जब कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड होते हैं तब पूरा फूड सिस्टम और ज्यादा मजबूत बन जाता है। दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 की थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। इस थीम का संदेश भी यही है कि फूड सेफ्टी में जो चुनौतियों को समझने के साथ साथ हमें उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर भी काम करना होगा। सेफ फूड सिर्फ फूड इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रेस्टोरेंट्स, रेगुलेटर्स और कंज्यूमर्स सबको अपना योगदान देना चाहिए। इसी सोच के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। याद रखिए, सेहतमंद जीवन की शुरुआत सेफ फूड से होती है। जितनी जानकारी उतनी सुरक्षा। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ और तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 24 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकले, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेस हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वायलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयबीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। तो जयबीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
1: जी मैम।
0: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
1: जी मैम।
0: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: हम फरीदाबाद की बात करते हैं और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
1: जी मैम।
0: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
1: जी मैम।
0: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
1: जी मैम।
0: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
1: यस मैम।
0: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
1: जी मैम।
0: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
1: जी मैम।
0: तो ऐसी परिस्थिति में जयबीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं?
1: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
0: जी।
1: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
0: जी।
1: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चलाता है वहाँ पर से फोन आ गया या दोस्त या जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
0: जी जी। यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते हैं।
1: और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं। और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको अगर उसका नशे का संबंधित है वो चलान भी करते हैं हम।
0: जी जी। जयबीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं, जिनको भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती है, ऐसा लगता है कोई 5-स्टार होटल खुला हुआ है, और वहां पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
1: जी मैम।
0: क्या जयबीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
1: जी मैम।
0: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
1: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है, तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं,
0: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
1: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
0: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
1: चालान ही का सिस्टम है,
0: चालान का सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया, उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
1: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम, जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं, तो ये बात देखते हुए कोर्ट लगेगी।
0: हाँ
1: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
0: ये कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
1: हाँ आधा दे दीजिए
0: जी जी जी।
1: हाँ इसलिए फिर भाई आजकल क्या है, जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हैं ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है, तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15,000 रुपए चले।
1: ये मायने नहीं रखते
0: जी, ये मायने नहीं,
1: उनके लिए मायने नहीं रखते
0: जी जी।
1: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, वो कहते हैं आप चालान करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता। So, बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगे, हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर आप ये सारी बातचीत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग रील्स के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रेडियो मानव रचना और फेसबुक पर भी, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको मिल जाएगी सारी बातचीत ट्रैफिक इंचार्ज जयवीर सिंह के साथ हुई। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक, यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज एनआईटी फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीस है
1: जी,
0: और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन कि आज तो 3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है अतः इन पर फाइन करते हैं। माँ बाप को जो पेरेंट्स को हो उनको भी बुला गए, वे कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
0: एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाती है।
1: एफआईआर माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है, ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, तो उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती
0: यानी
1: है।
0: आपने गाड़ी दी क्यों बच्चे?
1: हाँ, बच्चे को क्यों, उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को थोड़ा समझाए गाइड
0: जी,
1: तो जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए
0: जी जी। तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
1: नहीं है, आजकल क्या है मैम, जो पहले पिटाई वाला था ना
0: जी, जी वो तो
1: का लाले या पुलिस का लाले हो तरह नहीं, नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
0: जी,
1: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं
0: बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए।
1: हाँ, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं
0: वैसे।
1: हाँ,
0: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई, बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं, और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें, बच्चे को इस तरीके से समझाएं। और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में जरूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं।

0: क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। हेलमेट और सीट बेल्ट
1: जी मैम
0: पहनना कितना ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया, पर लोग समझते नहीं हैं।
1: ये बहुत ज़रूरी है मैम, हेलमेट पहनना। जैसे भाई टू व्हीलर पर चलता है, वह उसका पैर भी फिसल जाता है या कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, तो चोट लगनी है उसको मैम। तो हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
0: जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है? एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
1: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा, जैसे उस पर अलाउड ही दो आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई। जैसे तीन तीन चार चार, जैसे थ्री राइडिंग का हम चलान करते हैं।
0: अच्छा, मतलब चलान कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
1: हाँ, थ्री राइडिंग का चलान होता है।
0: ओके,
1: अगर तो तीन बैठे हैं तो थ्री राइडिंग का चलान होता है।
0: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
1: हाँ वैसे उसमें थोड़ा
0: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
1: बिल्कुल मिलते हैं।
0: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट? देखिए, मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर लेंगे।
1: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है।
0: जी तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
1: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
0: जी,
1: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
1: हाँ, ये बहुत खतरनाक है
0: जी। जयवीर जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं, और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
1: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
0: जी,
1: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से भाई अंखीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इस नंबर की गाड़ी है, बाइक है, अगर इसको अपना पकड़ लो, इसको इंपाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं, जेडो हैं, एरिया सभी सक्रिय हो जाता है, उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं।
0: जी जी, ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
1: ओवर स्पीडिंग है, जैसे जाम लग रहा है मैम, वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है, वो उनसे काम नहीं चलता, व्हीकल तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुँच जाते हैं, जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं, फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पर भी मैसेज दे देते हैं।
0: तो इंटरसेप्टर जो है, वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमरास वगैरह लगे होते हैं।
1: हाँ, उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक नहीं, तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई, अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं, बैरियर लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
1: हाँ, इसे पकड़ना है
0: तो ये नजर में रखने के लिए।
1: हाँ, कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास भाई, इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है
0: जी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में
1: जी मैम,
0: सिर्फ बचने के लिए
1: जी मैम,
0: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं, तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
1: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है। हाँ, उसके FIR होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका।
0: जी जी,
1: हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है पूरी,
0: मतलब FIR वगैरह होगी, फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है, ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की, लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को।
1: जी मैम,
0: सर क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मैम, जैसे भाई अपना टू व्हीलर पर चला है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए। अगर तो 18 साल से ऊपर है तो अपना लाइसेंस बनवाओ, डीएल बनवाओ, उसके बाद ही व्हीकल चलाना चाहिए रोड पे।
0: जी जी जी।
1: और अपना जैसे फोर व्हीलर पे है तो सीट बेल्ट लगाओ और आउट स्पीड में नहीं चलाओ,
0: जो स्पीड है
1: हाँ हाँ रॉन्ग साइड में मत चलाओ।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 8010781078 पर पूछ सकते हैं। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और NIT एरिया की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे हैं, बहुत ज्यादा। तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे, फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में?
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वह 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें हाँ, न्यू ईयर भी आता है हाँ और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम।
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 है मैम
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैम
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,400
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है। अब मैं आपसे जयबीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है?
1: जी मैम,
0: डर इसलिए भी नहीं है जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लेंगे। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है।
1: जी मैम,
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया,
1: जी मैम,
0: तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है।
1: हाँ, 5,000 मैम,
0: 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती हूँ
1: जी मैम।
0: ओके,
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है, हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते हैं। जो हम मौके पर जो चालान करते हैं, इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता,
1: हाँ,
0: सर्वर
1: रुक जाता है। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में भी निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग रही है तो आप वहाँ पहुँचे।
1: हाँ, अपना जो चालान भरना चाहो तो भर सकता है अपना, वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश हो गए तो जो भी उसकी वे गलती है, जो भी वो सॉरी फील करता है तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं
0: जी जी जी। यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है, तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखबार में ऐड देखते रहिए। अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया है कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा।
1: जी जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को
1: जी मैम।
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप एनआईटी के ट्रैफिक इंचार्ज है और एनआईटी में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता है। नीलम फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, बाटा फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, ओल्ड कांडर पास भी एनआईटी में आता है, और ऐसी परिस्थिति में कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इस समय हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे और नियम अनुसार ही चले
0: जी। और जयवीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरज कुंड रोड से और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गईं।
1: जी मैम।
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगन आर थी।
1: जी मैम।
0: और उस वैगन आर वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो।
1: जी मैम।
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है, आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला, वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया।
1: जी मैम।
0: बदतमीजी करी।
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है।
0: पर सर, जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे याद,
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लिख जाती है मैम।
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना DCP की साहब की जीमेल आईडी है उस पे डाल सकते हो आप।
0: जी जी,
1: ट्रैफिक पुलिस,
0: मतलब मैं उस पे अपनी कंप्लेंट।
1: हाँ हाँ, मतलब उस पे फिर उसको गाड़ी का राउंड अप करेंगे, उस पर जो जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी नियम अनुसार।
0: जी, यानी मतलब अगर मामला सुबह का भी है तो दोपहर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, और इसके अलावा कोई फोन नंबर जो आप देना चाहें जिस पे कॉल करके हम ये सारी जो सिचुएशन है बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ, ये हमारा जैसे PS ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का नंबर है 01292225999।
0: जी, तो दोस्तों अगर आप फरीदाबाद शहर में हैं और आप किसी तरीके का ऐसा ट्रैफिक वॉयलेट होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में कॉल करना है 01292225999। सिंपल सा नंबर है, 3 बार 2 फिर 5 और 3 बार 9, बहुत सिंपल सा नंबर है। इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01292225999। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

0: Dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जो रॉन्ग साइड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गलियां, चाहे हाईवे, कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर, या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं, खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत, ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया, फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद। जयवीर जी, ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से, और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं, तो ऐसे में एक्सप्रेस वेज के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी।
2: बिल्कुल मैम।
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है?
2: हाँ, हो रहा मैम। जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है, गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह, जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं। अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के, जो लोकल पुलिस से बुला के ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसकी वजह से
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में।
2: हाँ, ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है, हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर। तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से, जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं।
2: जी मैम।
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा, जो कि काफी हैवी चालान है, पेनल्टी काफी हैवी है। इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है, यानी इंपाउंड भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR, आप पर FIR दर्ज कर सकती है। ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी है रॉन्ग साइड वालों की। बाकी चीजों की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें, क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं।
2: जी मैम।
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं, सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो। तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी, अब चलते चलते लोगों से कुछ जानकारी देना
2: चाहिए? उनको स्पेशल अभियान चला जाता है, समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना, मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथ अपना टारगेट करके चलता है।
1: जी।
2: और वो एकदम व्हीकल देखता है, सहम जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और स्पीड में गाड़ी रहती है, उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी, और खुद को भी, और आसपास है तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है
1: जी। तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें।
2: जी मैम।
1: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं।
2: इनके ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम। जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो 5,000 रुपए चालान है इसके।
1: जी।
2: सेक्शन 318 लगती है
1: जी। अंडर एज ड्राइविंग का कितना चालान है?
2: इनका भी 5,000 रुपए चालान है।
1: 5,000 रुपए चालान, और इसमें पेरेंट्स को भी जो है उन पर कार्रवाई होगी।
2: हाँ, कार्रवाई होगी
1: जी जी। साथ ही ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां हमने बहुत देखी है, रोकी भी जाती है सड़कों पर, ऐसा नहीं है
2: जी मैम।
1: लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि साथ में चलता हुआ ट्रक है, गाड़ी है, उस पे से पत्थर गिर गए
2: जी मैम,
1: तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं
2: जी मैम। ये मैम सेंक्शन 113(3), 194(1) के तहत कार्रवाई होती है, उनके FIR भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है
1: जी जी। यानी इसमें FIR का सीधा,
2: FIR का इसका सीधा FIR का वो।
1: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
2: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सेंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है
1: जी। यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने
2: जी मैम।
1: जी, अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए, जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंकन ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं
2: जी मैम।
1: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
2: इसमें मैम 185 सेक्शन 185(88) के तहत FIR भी होती है,
1: सीधा FIR।
2: हाँ, उसमें कोर्ट कोर्ट में पेशी होती है और वही उनका भरा जाता है, अमाउंट भरा जाता है
1: जी। एक समस्या और है जयबीर जी, जो मुझे लगता है पूरे देश में गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितना
2: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का है?
1: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
2: जैसे हम देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चलाना रहता है
1: जी जी,
2: और ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं
1: जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें
2: जी मैम।
1: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा रास्ता रुका तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना
2: जी मैम।
1: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
2: इसका मैम 1,000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना
1: जी जी,
2: 1,000 रुपए चालान है
1: जी, 1,000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना
2: जी मैम।
1: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है
2: जी मैम,
1: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
2: नहीं लगाते मैम।
1: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती
2: है? इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है,
1: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
2: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे RC के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में हम नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये
1: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर जी जी
2: जी।
1: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए
2: जी मैम
1: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम जी, मैम वेलकम।
1: तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने आपके साथ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक पुलिस की बात आती है ना तो ये दो तरफा बातें होती हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी भी है, क्योंकि जब भगवान राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा था, बिने नमानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भयभीन हुई न प्रीत। समझे आप, यानी भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ, उनकी कहानियाँ सुनवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो कि प्रेसिडेंट हैं श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: दीपक जी, अगर मैं सबसे पहला सवाल पूछूं तो हमारे सभी श्रोताओं को बताइए ना कि श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसका गठन कैसे हुआ।
2: श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल, जो कि सुदर्शन एरिया ऋषिकेश में जिला पौड़ी में पड़ता है, ये 1995 में इसका गठन हुआ था। इसके बैक में स्वामी विवेकानंद जी महाराज है, महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। इन्होंने अपने आप में स्नातक प्रयत्न करके फिर जो है गंगा की तलहटी पर माँ जो है गंगा जी हैं, उसके जो भी हमारा एरिया है जो भगवान शंकर की जो तलहटी है उसमें इसमें एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए यहाँ पर की विभिन्न विभाग हैं, जैसे कि कृषि विभाग है, विज्ञान विभाग, तो उस सब से होते हुए में इसका जो गठन है ना, उनके शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी ने इसका किया था। मतलब सबसे पहले ट्रस्ट से पहले ये गीता आश्रम के नाम से था, फिर उसके बाद में इस ट्रस्ट को फिर रूप में इसको कन्वर्ट किया गया 1995, और उसके बाद में ये ट्रस्ट जो है ये अपने आप में इफेक्टिवली समाज के कार्य के लिए, मानवता के लिए सप्लाई कर।
1: सो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो बहुत सारे मानवता के काम कर रही है। तो किस प्रकार के काम है और किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर मिलती है, इसके बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, आप सभी को एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ। वापस लौट कर आइएगा और जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज हम डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट है श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के। डॉक्टर दीपक, अगर मैं बात करूँ धर्म प्रचार की, यज्ञशाला की, किस प्रकार से काम किया जाता है यहाँ पर?
1: देखिए, धर्म प्रचार के फॉर्म में हमारे आश्रम से इसके कई फॉर्म हैं, जैसे कि पब्लिकेशन की फॉर्म के थ्रू हम एक यहाँ से मासिक पत्रिका का पब्लिकेशन करते हैं, और धार्मिक सामाजिक और आध्यात्मिक ये पत्रिका है, उसके थ्रू हम देश विदेश में ये जो है धर्म का प्रचार करते हैं। सेकेंड वे ऑफ दिस जॉब इज कि हमारी संस्था से, हमारी ट्रस्ट से हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के बच्चों को अपने आप जो मानवता का क्या पाठ है, उनको धर्म तो नहीं पता चल पाता धर्म किसे कहते हैं, लेकिन मानवता क्या चीज है, उनका वो जो लेसन है वो हम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न विद्यालयों में जहाँ कहीं पर भी हमको अवसर मिलते हैं, हम वहाँ पे जाकर के वो उसको बच्चों को जो है उसकी ये प्रेरणा देते हैं। दिस इज द बेस।
0: तो पब्लिकेशन के थ्रू आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को न सिर्फ धर्म के बारे में सिखाया जाए, लेकिन एक और खास चीज जो आपने कहा यज्ञशाला की, मैं अगर बात करूं तो क्या ये भी आज के जमाने में सिखाया जाता है?
1: यज्ञशाला एक जो कार्यक्रम है, इसमें नो डाउट कि अब अवेयरनेस की जरूरत है इसमें भी बहुत ज्यादा बच्चों को देने की। हमारे यहाँ पे जितने 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें जो हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार है, हमारे यहाँ पे जो

देखिए, अगर मैं बात करूं श्री गीता आश्रम की या श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो अलग अलग किस्म के काम किए जा रहे हैं और अलग अलग किस्म से मानवता के बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, बट उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के। डॉक्टर दीपक, अब हम बात करेंगे आपके बाल विद्यालय की। बाल विद्यालय में भी आप बच्चों को ना सिर्फ शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं लेकिन उन्हें शिक्षा देते हैं, तो ये किस प्रकार किया जा रहा है?
1: देखिए, हम आश्रम में जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमारे यहाँ पे जो गुरुदेव ने पद्धति शुरू की थी उसमें केवल गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी जो है क्षमता और साथ साथ जो एजुकेशन है उसको एक जो हमारे बोर्ड है जो डिफरेंट उनको उनकी जो सिलेबाई है उसको फॉलो करते हुए होती है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एक जो उत्तम रहा है उसमें हम लोग जो मानवता धर्म संस्कार उन सब का समावेश करते हैं, तो ये उसका एक हमारा पॉजिटिविटी होती है। और क्योंकि विद्या के साथ अध्यात्म विद्या विद्याना, क्योंकि विद्या में अध्यात्म विद्या ही ऐसी विद्या है, इस भावना से प्रेरित होकर के बच्चों को उस तरह की जो है शिक्षा दी जाए।
0: तो भाई देखिए, अगर आप देखें आज के समय में जब हम ये कहते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र से अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा ले लेते हैं तो आप आने वाले जीवन की बहुत सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। खास तौर पर आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप छोटी उम्र से अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और इस तरीके के बहुत ही अच्छे कार्य श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। Feel good, feel love.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। भाई देखिए, हम सब अपने जीवन में ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट आजकल की जिंदगी में परेशानी ये है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है जहाँ पर हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन इन 24 घंटों में से हम शायद कुछ मिनट्स भी मानवता के लिए दे नहीं पाते हैं। और अगर कोई आज के समय में मानवता का काम करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जन जन में होनी चाहिए। और इसीलिए कोशिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको उन लोगों से मिलवाऊं जो आज भी इस तरीके के काम कर रहे हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकती है। डॉक्टर दीपक गुप्ता आज हमारे साथ हैं, जो कि प्रेसिडेंट है श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के। डॉक्टर दीपक, अब बात करते हैं आपकी गौशाला की। देखिए, गौ माता की सेवा तो हमारे संस्कारों में है, हमारे धर्म में है, पर आपकी जो गौशाला है वो किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीजें हैं जो आप करते हैं वहाँ पर?
1: देखिए, गौशाला का जो मेन उद्देश्य, जैसे कि आपने अपने आप मेंशन किया है, जो कि हमारे संस्कारों का ही पार्ट बनते हैं। गौशाला में सेवा का जो तात्पर्य है वो एक हमारे आध्यात्मिक और सांस्कारिक रूप के साथ साथ हमारे को जो है जो जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा है वो देता है, क्योंकि गौ के दर्शन मात्र से, उसकी सेवा मात्र से, उसके शरीर पे हाथ फेरने मात्र से, उस तरह तरह की ये हमारे रिजल्ट आए हैं, साइंटिफिक रिजल्ट हैं, उससे हमारी विभिन्न बीमारियों का उसमें जो है क्योर होती है या उनका इलाज होता है। तो सेंस इज दैट की वो सबके साथ साथ आश्रम में जो सेवा का उनके भाव है उसमें केवल ये रहेगा कि सबको प्रेरणा दी जाती है कि गौ माता के जिसकी जैसी अवस्था है, जैसे वो सेवा कर सकता है, उनको प्रणाम करे, उनके संस्कार लाए, उनके दर्शन करे और भोजन इत्यादि और उनके जो कुछ भी व्यवस्था है वो तो ट्रस्ट की तरफ से होती है, उनके सेवा के लिए दिन से लेकर रात तक के। लेकिन जो उसके पीछे मेन उद्देश्य है वो है कि ये जो गौ माता है, इसके विभिन्न जो हमारे पास में पूजा के साधन है, उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से वो सबको प्राप्त हो सके, जो भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में इस तरफ रुझान रखे।
0: वाकई दोस्तों, देखिए, अगर मैं गौ माता की बात करूं तो उन्हें माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप उन्हीं के दूध का सेवन करने के बाद तो इतने बड़े होते हैं। लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज, अब तो ये ना सिर्फ हमें शास्त्रों में बताया गया था, लेकिन अब तो ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि गौ माता अपने आप में एक कंप्लीट पायस एनिमल है। उसका कारण है भाई, आप उनके मूत्र की बात करें, आप गोबर की बात करें, या मात्र उन्हें छू लेने से या उनके आसपास रहने से जब आपकी इतनी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, या आप उसको जब उसका सेवन करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों में आप उसे यूज करते हैं, उससे आप बेनिफिट पा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने आप में भगवान का एक रूप है। लेकिन परेशानी ये है कि इस बदलते हुए युग में कहीं ना कहीं हम उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन कर गए हैं, और इस तरीके से गौशाला में ना सिर्फ लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस देके, लेकिन साथ के साथ लोगों को इनके बारे में बताने से भी वाकई मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ कुछ और जानकारी जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर। मानवता की राह पर आज हम जिनके साथ चल रहे हैं वो हैं प्रेसिडेंट श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता। और आज इनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट अलग अलग किस्म के मानवता के काम कर रहा है। अब बात करते हैं इनके एक बहुत ही अहम चीज की, अतिथि सेवा या फिर अन्य क्षेत्र, कृषि उद्यान, बहुत सारे आपके अलग अलग कहना चाहिए डिविजन्स हैं और इन सारे डिविजन्स में आप कैसे काम करते हैं। तो बताइए डॉक्टर दीपक हमें कि अगर हम आपके अतिथि सेवा की बात करें, अन्य क्षेत्र की बात करें, कृषि उद्यान की बात करें, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं?
1: देखिए गीताश्रम में जहाँ तक अन्य क्षेत्र का है तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर अन्य क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 100 साधुओं को, भिक्षुकों को यहाँ पर भोजन उनके लिए बना करके उनको निःशुल्क वितरित किया जाता है। सुबह शाम दोनों समय पर, सुबह के समय 6 बजे और शाम को 5:30 बजे फिर उनको चाय वितरण होती है, जो कि ये आश्रम की तरफ से एक निःशुल्क सेवा है। अतिथि के काम में जितने भी हमारे साधु संत अतिथि होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और आम यात्री को भी हम जो है स्टेडियम में पावन धरती पर जो भी एक मिनिमम जो है मतलब शुल्क लेकर के, जैसे कि एक ये फ्री की भी हम पद्धति को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा शुल्क लेकर के वहाँ पर उसका जो है भोजन की व्यवस्था आश्रम की तरफ से सभी यात्रियों के लिए यहाँ पे रखी जाती है। और अतिथि सेवा के साथ साथ हमारे यहाँ पर अन्य क्षेत्र और कृषि उद्यान विभाग में ये सब कुछ, कृषि उद्यान में यहाँ पर हमारे पास में गौशाला के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है। उद्यान विभाग में हमारे यहाँ जो आम लगाए, आम के वृक्ष हैं, कटहल के वृक्ष हैं, बहुत तरह तरह के यहाँ पे पहाड़ क्षेत्र में भी तरह की जो पथरीली धरती पे हो सकते हैं पर उनकी व्यवस्था है। और यहाँ ये जो दूध है, गौशाला का दूध है और इस सबके साधु संतों के लिए, और ये जो है अतिथि सेवा के साथ साथ यहाँ पे जो पब्लिकेशन की बात भी आप कह रहे थे, तो वो जो डिफरेंट लेवल पे हमारे पास में आश्रम के जो पब्लिकेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक गीता संदेश मासिक पत्रिका के बारे में बताया था, उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रार्थना है, वेदवाणी है, तरह तरह की पुस्तकें जो धर्म और अध्यात्म की ओर लेके चली जाती है, जिनसे कि जीवन के विभिन्न चित्र जो है वो हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक वेदवाणी में संकलित किए, तरह तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं उनको एक उसमें संकलित किया कि किस तरह से आप घर बैठे भी, अगर आप अकेले भी हैं एक ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई विद्वत ब्रह्मजन आपको पूजा पाठ पद्धति संस्कार नहीं कुछ करा सकता है, तो आप उसके हेल्प से भी अपने आप में जो है ये सब कार्य कर सकते हैं। इस तरह की हमारे यहाँ से पब्लिकेशन है या फिर उसमें अतिथि सेवा, जैसे कि मैंने बताया निवास के लिए यहाँ पे आश्रम में जो है स्थान बनाया गया है, आश्रम में उस तरह की भी सुविधा है, निवास की, भोजन की, जलपान की, और अन्य क्षेत्र में मैंने बताया है कि आपको कि 100 से ज्यादा शुभ और संत महात्मा ये सब लोग यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, निःशुल्क होता है क्योंकि निरंतर चलती रहती है वे, इस तरह से डिफरेंट वे में आश्रम की ये गतिविधियां रहती है।
0: तो भाई देखिए, अगर हम बात करें श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो ढेर सारे काम हैं जो ये कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसा कुछ काम कर पाते, लेकिन कभी कभार हमारी बहुत ही व्यस्त जीवन के कारण हम शायद ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक

ऑप्शन है, आप इन सभी नेकी के कामों से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं जरूर बताऊंगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum.
1: Welcome back friends, aap sun rahe hain Radio Manav Rashna 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी. मानवता की राह पर आज हम जिनके साथ चल रहे हैं वो है डॉक्टर दीपक गुप्ता. वो प्रेसिडेंट है श्री गीता आश्रम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के. डॉक्टर दीपक, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, और खास तौर पर जब लोग ये सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए, तो कोई आपके इस पहल के साथ कैसे जुड़ सकता है, किस तरीके से वॉलंटियर कर सकता है, एसोसिएट हो सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे किया जा सकता है?
2: देखिए, गीता आश्रम के साथ एसोसिएट होने के जो पहला तरीका है वो रहेगा कि आप इसकी जो मंथली मैगजीन पब्लिकेशन जो हमने गीता संदेश बताई है उसके साथ में आप इसका मेंबर बने. उसके अगर आप पार्ट बनते हैं तो आप इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती रहती है डिफरेंट टाइम्स पे, उन सब एक्टिविटीज पे, जैसे कि हम आश्रम में जो है डिफरेंट फॉर्म मनाए जाते हैं, मानो कि जैसे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ पर आश्रम के द्वारा आयोजित की जाती है. इसमें जो है गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का प्रति वर्ष एक 30 दिवसीय बहुत बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम मनाया जाता है. और यहाँ के जो आश्रम के स्वामी जी जो उसके फाउंडर हैं कमलीन महामंडलेश्वर स्वामी वेद दयानंद जी महाराज, उनकी जो जन्मोत्सव है, उनका जो प्रकोत्सव है, और उसके साथ साथ उनकी जो पुण्यतिथि है ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद जी महाराज की जो पुण्यतिथि है, यहाँ के जो सेवक रहे हैं स्वामी संतोषानंद जी सरस्वती, इन सब की पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम में भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिसमें कि बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, कोई विषय दे दिया जाता है, इस विषय पर कि सब बच्चे जितने भी आसपास के इंस्टीट्यूशन से या जहाँ से भी जो संपर्क में आ सके, तो वो इंस्टीट्यूशन को इनवाइट किया जाता है, जिससे कि बच्चे को भी अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि दिखा करके जो भी एक तरह के विचार व्यक्त करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, शिक्षक वर्ग को सम्मानित किया जाता है, समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाता है. तो इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उन सबसे आप गीता संदेश के मात्र के सदस्य बनने से आप सभी की जानकारी में आ जाते हैं. तो ये एक वन ऑफ द वे है. दूसरा जो है हमारे पास में गीता आश्रम की जो वेबसाइट है श्री गीता आश्रम .com के नाम से, तो उसके थ्रू भी आप इससे जो है एक्टिविटीज को देख करके आप इसमें जुड़ सकते हैं. तीसरा तरीका जो है हमारा आश्रम की जो ईमेल है उसके थ्रू आप अपना मैसेज दे करके कोई भी आपकी कोई इस तरह की रुझान है कि जहाँ पे कि आप आश्रम की धार्मिक जो कार्यकलाप है उनसे लाभ लेना चाहते हैं, तो उससे आप उसके थ्रू भी मैसेज दे करके या उससे जुड़ करके कर सकते हैं. श्री गीता आश्रम की तरफ से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पहल की जा रही है वो ये है कि हम जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, आश्रम होते हैं, उनसे ये कदम हटके है कि हम बच्चों को अपने आप में संस्कारित करने के एक अभियान में लगे हुए. उसके लिए कहीं से भी हमारे को अगर इनवाइट किया जाता है तो हम बच्चों को जाकर के निःशुल्क आश्रम की तरफ से वो जो है उनको ज्ञान प्रेरणा देना, उनको संस्कारित बनाना, उनको अपने 16 संस्कारों के पे बताना कि हम अपने संस्कार भूल चुके हैं, हम अपने परिवारों को भूल चुके हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस को भूल चुके हैं, तो उन सबको समझाने के लिए एक स्पेशल रोल किया जाता है. अभी अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में किया, अभी हम लोग तो किसी डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर की जा करके इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी इस बात को प्रेशराइज करने लगे इंस्टीट्यूशन को कि वो बच्चों में संस्कार घोषित करे, तो उसी तहत में कई इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी हम लोगों को इनवाइट करती हैं, इसलिए कि हम बच्चों को कैसे संस्कारित किया, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, बच्चे के जो संस्कार हैं वो कैसे कहाँ से माँ के गर्भ से शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर के और एमपीएससी से निकाल करके उन सबके बारे में ब्रीफ दे करके बच्चों में जागृति लाने की अहम भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच वी प्रोसीड फर्दर।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। ना सिर्फ आज आपने हमारे सभी लिसनर्स को बेहतरीन जानकारी दी, लेकिन साथ के साथ आपने लोगों को मोटिवेट किया कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में संस्कार, धर्म और साथ के साथ कुछ ह्यूमैनिटी वापस लेकर आए। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे सभी को?
2: देखिए, मैसेज के कॉमेंट में यही कहना चाहूंगा कि हमारे को धर्म का जो आधार है वो हमारा परिवार है। अगर उसमें परिवार की नींव कमजोर रहेगी, जिस घरों में परिवार का प्यार सामंजस्यता और जो रामचरित मानस में व्याख्यान है हमारे यहाँ पे परिवार की जो महत्ता बताई गई है, अगर वो सब भाई का भाई के प्रति प्यार, माता पिता के प्रति श्रद्धा और जो समाज के प्रति परिवार के प्रति जो भावनाएं हैं जो हमारे को शास्त्रों ने बताई हैं, उस धर्म का अनुसरण, कोई धर्म का मतलब जो होता है वो अपने कर्तव्यों का पालन करना है और जो कर्तव्यों का पालन करता है वही धर्म का पालन करता है। तो वो कर्तव्यों का पालन जो है वो परिवार से शुरू हो रहा है। तो केवल विकासन की तरफ से यही मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोगों को सब प्रायोरिटी पे सब कुछ सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनके प्रति भावना भगवान के रूप में प्रसन्न भगवान हमारे हुए हैं तो वो माता पिता है और इसके बारे में हमारा केवल यही कहना होता है कि माता पिता और गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू और जो इनको पछतारे वो फिर से मारेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर दीपक, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अहम मैसेज है हमारे सभी लिसनर्स के लिए। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं आप ही के पास वापस लौट कर आने वाली हूँ कल सुबह ठीक 10 बजे, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में

0: इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार

यार, महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय, जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मान एवरेज 107.8 एफएम पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा। और आ गई हूँ मैं लेकर एक बार फिर से आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, यानी कि सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर दुनिया के उन महान व्यक्तियों की हम बात करते हैं, उनकी कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने पक्के इरादे के दम पर एक इतिहास रचा है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सफलता की कहानी को ही नहीं सुनाना होता है, बल्कि उन अनुभवों को सिखाना होता है, समझाना होता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना कर कुछ अचीव करा हो अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की, जी हाँ, जिनका नाम संघर्ष, साहस और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को माफ करने और एकजुट रहने की ताकत दिखाई। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला सिर्फ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ किसी पद या फिर हासिल करने का नाम नहीं होता, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सिद्धांतों पर टिककर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका असली नाम रोहिलाला मंडेला था। बचपन में उनका जीवन बहुत ही की भरा हुआ था। वो एक आम परिवार से आते थे, गांव के दूसरे बच्चों की तरह बड़े भी हुए, लेकिन बचपन से ही उनमें एक सीखने की लगन और एक अलग सी झलक नजर आती थी। मंडेला को शिक्षा का बहुत महत्व समझ में आया। उनका मानना था कि एजुकेशन वो शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और साथ ही धीरे धीरे समाज में हो रहे भेदभाव और अन्याय के बारे में समझाना शुरू किया। यही वो समय था जब उनके अंदर एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाली थी। एक ऐसी सोच जो समानता, न्याय और आजादी के लिए लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आगे के सफर में उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। देखा दोस्तों, यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा होता है। वो जब भी प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम नहीं समझते, उससे ना एक सॉल्यूशन समझते हैं, एक रास्ता समझते हैं कि शायद इस पर चलकर ही मुझे कुछ अचीव होगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा, वो भी सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष को देखा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके संघर्ष के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने उनके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में जाना था थोड़ा बहुत। अब समय है समझने का कि उस समस्या को जिसने नेल्सन मंडेला को एक आम इंसान से दुनिया के महान नेताओं में शामिल कर दिया, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों उस समय साउथ अफ्रीका में एक व्यवस्था थी जिसे एप्रीथेट कहा जाता था। एप्रीथेट का मतलब होता था कि लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव करना। काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग नियम थे। काले लोगों को कई बुनियादी अधिकारों से दूर रखा जाता था, उन्हें अच्छी शिक्षा ना देना, रोजगार और आजादी के मौके भी बराबरी से नहीं मिलते थे। नेल्सन मंडेला ने जब इस अन्याय को अपनी आंखों के सामने देखा होते हुए, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वो एक वकील के रूप में काम करना शुरू करा। उन्होंने वकील बनने के बाद उन्हें और ज्यादा गहराई से समझ में आया कि किस तरह से आम लोगों अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मंडेला धीरे धीरे अफ्रीकन नेशन कांग्रेस यानी कि ANC से जुड़े। ये एक ऐसा संगठन था जो समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। मंडेला ने शांति और संघर्ष के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने लगे। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरकार को मंडेला और उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, उन पर नजर रखी जाने लगी, उनके गतिविधियों को रोकने की कोशिश भी की गई और कई बार उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मंडेला ने डर के सामने झुकने की बजाय अपने इरादों को और ज्यादा मजबूत कर लिया। उनका मानना था कि अगर आप सच और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, यानी अपनी सोच को दूसरों से अलग बनाना होता है। मंडेला ने हमें सिखाया है कि सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़ा हो। लेकिन दोस्तों मंडेला की इस लड़ाई का एक बड़ा परिणाम सामने आने वाला था। सरकार ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन को अपने लिए खतरा माना और फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। क्या था वो मोड़, बताऊंगी मैं आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला के साथ, नेल्सन मंडेला की प्रेरणादायक जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। लेकिन हर बड़े बदलाव की कीमत होती है और मंडेला को अपने फैसलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या थी वो कीमत? दोस्तों, जैसे जैसे मंडेला की लोकप्रियता बढ़ रही थी लोगों में, उनका आंदोलन मजबूत होते जा रहा था। साउथ अफ्रीका की सरकार उनसे ज्यादा चिंतित होने लगी। सरकार को लगने लगा कि मंडेला और उनके साथी उनकी नीतियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। इसी वजह से उन पर कई आरोप लगाए गए और उनकी गतिविधियों पर भी सख्त नजर रखी जाने लगी। आखिरकार साल आया 1962, जिसमें नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। जब फैसला सुनाया गया, तब मंडेला जानते थे कि उनकी जिंदगी एक बहुत लंबा हिस्सा जेल की दीवारों के बीच गुजारने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि इतनी बड़ी सजा के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने विचारों और अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। नेल्सन मंडेला का मानना था कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच और सपनों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। जेल में जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन था, उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, परिवार से मिलने के मौके बहुत कम मिलते थे और कई बार उन्हें अलग थलग भी रखा गया था। लेकिन मंडेला ने हर मुश्किल को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने जेल के समय को गुस्से और नफरत में बर्बाद करने की बजाय खुद पर और ज्यादा मजबूती से काम करना शुरू किया। वो पढ़ते रहे, सीखते रहे और अपने शक्तियों का और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। धीरे धीरे जेल भी उनके लिए क्लासरूम सा बन गया, जहाँ वो धैर्य और अनुशासन की नई परिभाषा लिख रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मंडेला ने हमें दिखाया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत हो, तो मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। लेकिन मंडेला की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जेल के अंदर बिताए गए सालों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बना दिया। दोस्तों, वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और साथ ही दोस्तों आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके सफर के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना बड़ा नाम बनाने के लिए। दोस्तों जिंदगी के उस दौर को समझ रहे हैं हम जहाँ पर अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मंडेला ने अपनी सबसे बड़ी ताकत वहीं से हासिल की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्हें गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब बात करते हैं उन 27 सालों की जो उन्होंने जेल में बिताए थे। ये कोई छोटा समय नहीं होता है, सोचिए लगभग 3 दशक तक आजादी से दूर रहना, अपने परिवार से अलग रहना और हर दिन एक ही तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करना। ऐसे में बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस समय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। नेल्सन मंडेला का मानना था कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। जेल में रहकर भी उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। वो लगातार पढ़ते रहे, नए विचारों को समझते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि वो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते थे। जेल में नेल्सन मंडेला ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, वो था धैर्य, पेशेंस, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम है। ये अगर आपने रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको लाइफ में आधी से ज्यादा चीजें तो खुद ब खुद मिल जाएंगी। आज की दुनिया में ना सब कुछ ऐसा चाहिए हमें कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन मंडेला ने दिखाया है कि बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता के लिए कभी कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नजर से ओझल नहीं होने दिया और इसमें सबसे प्रेरणादायक बात तो ये थी कि इतने सालों की कैद के बाद भी उनके दिल में कभी नफरत नहीं थी। जिन्होंने उन्हें जेल भेजा उनके प्रति भी नेल्सन मंडेला में कभी बदले की भावना नहीं आई। वो समझ चुके थे कि नफरत सिर्फ इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है, जबकि माफी और समझदारी से इंसान मजबूत बनता है। और बस यही वजह थी कि जेल में रहते हुए भी मंडेला की पहचान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ती गई। लोग उन्हें सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि न्याय और आजादी की आवाज के रूप में देखने लगे। उनका नाम संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन गया। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला की जर्नी के साथ। और आज हम नेल्सन मंडेला की जिंदगी के उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जहां पर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए और हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदल दिया। अब बात करते हैं उनकी आजादी और उसके बाद के नेतृत्व की। दोस्तों, साल था 1919 में नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई थी। लोग सोच रहे थे कि इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद शायद उनके दिल में गुस्सा और बदले की भावना होगी, लेकिन मंडेला ने जो किया उसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बदला नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता चुना। उनका मानना था कि अगर साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाना है तो लोगों को एकजुट होना होगा। नफरत और बदले की भावना सिर्फ देश को और ज्यादा बांट देगी। इसलिए नेल्सन मंडेला ने माफी, संवाद और एकता पर जोर दिया। ये फैसला आसान नहीं था। बहुत से लोग चाहते थे कि पुराने अन्यायों का जवाब दिया जाए, लेकिन मंडेला दूर की सोच रखते थे। वो जानते थे कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो भावनाओं में बहने की बजाय देश के भविष्य के बारे में सोचे। उनकी मेहनत और नेतृत्व का परिणाम ये हुआ कि साल 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। इसी चुनाव में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी बल्कि न्याय और समानता की जीत थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मंडेला ने सत्ता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि उनका ध्यान देश को मजबूत बनाना था, लोगों को जोड़ना और एक बेहतर भविष्य तैयार करना था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं होता बल्कि लोगों की सेवा करना और उनको साथ लेकर चलना होता है। दोस्तों, मंडेला की आज़ादी के बाद का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। असली ताकत बदला लेने में नहीं है बल्कि माफ करने और आगे बढ़ने में होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है वही सच में महान बन पाता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जर्नी की। उनके साथ आज हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने कितनी सारी चीजें फेस करी, पर उन्होंने कभी भी अपना मन नहीं बदला, उन्होंने कभी भी अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि सिर्फ शांति और प्रेम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं कि हर बात पर कुछ लड़ाई करना या बदला लेना या किसी को नीचा दिखाना ही हमारे लिए सही होगा, बल्कि लोगों को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी से मिलने वाली उन सीखों की, जो हर उम्र में इंसान को सफलता की राह दिखा सकती है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने जेल से बाहर आकर बदले की बजाय माफी और एकता का रास्ता चुना। अब समय है उनकी सक्सेस मंत्रा को समझने का। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का पहला सबसे बड़ा मंत्रा था कभी हार ना मानना। जी हाँ, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपने सपने और लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के सामने टिक कर खड़े रहते हैं। और दूसरा मंत्र था, शिक्षा की ताकत को समझो। मंडेला का मानना था कि एजुकेशन दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल हथियार होता है। उन्होंने हमेशा सीखने और समझने पर जोर दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा मंत्र था, डर को अपनी सीमा मत बनने दो। मंडेला ने एक बार कहा था कि बहादुर वो नहीं होते जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर इंसान को किसी न किसी बात का डर होता है, लेकिन सफलता वही होती है जो उस डर पर जीत हासिल कर सकती है। और चौथा सबसे खास मंत्र, माफी की ताकत को समझो। इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद भी मंडेला ने कभी भी नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी। उन्होंने दिखाया कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। जब हम गुस्से और नफरत को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बेहतर कामों में लगा सकते हैं। और उनका पांचवा मंत्र था, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना। जी हाँ, मंडेला के सामने कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को कभी नहीं भुलाया। उनका फोकस हमेशा न्याय, समानता और एक बेहतर साउथ अफ्रीका पर रहा। दोस्तों, ये मंत्रा सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के सिद्धांतों पर चलकर दिखाया है। अगर हम इनमें से कुछ बातों को भी अपनी जिंदगी में अपना ले तो हम अपने लक्ष्य को और ज्यादा करीब से पहचान पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। और आज हम नेल्सन मंडेला की अद्भुत और प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को समझ रहे थे। बचपन की सादगी से लेकर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष तक, 27 साल की कैद और फिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने तक, मंडेला की कहानी हमें हिम्मत, धैर्य और इंसानियत की असली ताकत दिखाती है। दोस्तों, अगर आज के युवा नेल्सन मंडेला की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें सबसे पहली सीख है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने लक्ष्य और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंडेला के पास कई मौके थे जब वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार संघर्ष को चुना और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। दूसरी बड़ी सीख है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं होता है, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी समानता, न्याय और अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। तीसरी बड़ी सीख ये है कि धैर्य और अनुशासन। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर चीज हमें तुरंत चाहिए होती है, लेकिन मंडेला की कहानी हमें बताती है कि

वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और आप सुन रहे थे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। फिर से मिलेंगे एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ, उनकी सफलता और उनकी सूत्रों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: हेलो पीपल, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम रेडियो रीबूट, जहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आजकल के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम रेडियो रीबूट। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मुद्दे की, एक ऐसी ही चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका असर हर घर तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की और उनके इंपैक्ट की जो हमारी जनरेशन पर पड़ रहा है। और आज का जमाना रील्स का, लाइक्स का और फॉलोअर्स का है। हर दूसरा बच्चा या फिर हर दूसरा जेंजी, क्या कहे तो हर दूसरी जनरेशन किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है, चाहे वो गेमिंग हो, फैशन हो, फिटनेस हो या फिर डेली इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो। कभी तो लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ही उनकी दुनिया बन गई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दुनिया उन्हें इंस्पायर कर रही है या फिर कंफ्यूज? क्या इन्फ्लुएंसर कल्चर उन्हें क्रिएटिविटी सिखा रहा है या बस एक कॉम्पिटिशन के रेस में डाल रहा है? क्या लोगों की इंडिविजुअलिटी कहीं सच में सोशल मीडिया की वैलिडेशन के बीच में तो नहीं खोती जा रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए या समझदारी से बैलेंस बनाना चाहिए? इसी टॉपिक पर बस आज हम बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारी नई जनरेशन के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज इस थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि रेडियो रीबूट में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम लोगों की सोच बदलते हैं और लोगों की POV भी जानते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर हम आ गए हैं मानव रचना के स्टूडेंट से कुछ बातें करने, बच्चों के कुछ थॉट्स के बारे में जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कहे तो उनके इंपैक्ट से क्या समझ रहे हैं और क्या जानते हैं। सो सबसे पहले मेरे साथ है मुस्कान, आइए जानते हैं मुस्कान से कि वो उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या राय है। मुस्कान, स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: Hi, so this is Muskan from BA BEd course, which is the School of Education and Humanities from the third year, fifth sem. So I'm really glad to be with the Radio Manav Rachna, and yeah, I'll definitely tell about my views on this
2: forum. So Muskan, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, आपको क्या लगता है कि असलियत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कौन? क्या हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर जो कि थोड़ा सा फेमस होने के बाद कहता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्या वो सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है?
3: So in today's generation, social media influencers has a huge impact on everyone's life. ये वो एक वैसे individual है जिन्होंने बहुत सारी popularity और trust gain किया है through ऐसे platforms जैसे YouTube, TikTok और Instagram, जो कि हर एक youth देखता है। और फिर अभी के जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया है सर्टेन जैसे फिटनेस ट्रेंड्स पे या फिटनेस टिप्स पे, बहुत लोग रिलाई करते हैं फॉर सर्टेन फैशन टिप्स। इनफैक्ट कई लाइक फीमेल यूथ फोकस करती है ऐसे सर्टेन मेकअप टिप्स एंड मेनी मोर। और इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव साइड, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि जस्ट इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। आप अपने घर पे रहकर सिंपली स्क्रॉल कर और बहुत कन्वीनियंसी के साथ आपको बहुत सारे फिटनेस टिप्स मिल जाते हैं, आपको अपने एपेटाइट के बारे में पता लगता है कि व्हाट ऑल यू कैन ऐड, सर्टेन फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है। बट एज वी नो कि एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव साइड, तो टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, everyone today wants to be an influencer, but उसका एक बहुत ज़्यादा negative impact है, क्योंकि everyone wants followers, likes, attention, जो कि कहीं ना कहीं उनकी life को बहुत ज़्यादा stress और as a comparison base कर देती है, because people lose their self identity, self interest के बारे में वो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत busy होते हैं कि they want to gain followers, उनको बहुत ज़्यादा attention चाहिए, बहुत likes चाहिए। तो यार डेफिनेटली everything has a positive and negative side।
2: मुस्कान, मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर ने हमारे ऑडियंस को इतना तो समझा दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असलियत में होते क्या हैं। मैं आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि असलियत में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान करे कैसे?
3: इफ यू टॉक अबाउट रियलिटी तो इट इज डिफिकल्ट टू नो, बट हाँ हम सर्टेन एस्पेक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं. क्यों नहीं पॉजिटिव साइड पे फोकस करना, बिकॉज अभी के जनरेशन में एवरीथिंग हैज अ फ्यूचर, एवरीथिंग वी कैन रिलाई ऑन इट कि हम अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं बींग अ एंटरप्रेन्योर और बींग अ इन्फ्लुएंसर. तो हाँ, टू सी अ गुड साइड सोशल मीडिया, आप अगर पॉजिटिव वे में ले जाए तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को अच्छे लेसन्स दे सकते हैं जो कि उसे एक पॉजिटिव साइड में ले जाएगी, ना कि हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे फोकस कर पाएंगे.
1: बिल्कुल. थैंक यू सो मच मुस्कान.
3: थैंक यू सो मच.
1: अब हमारे साथ जुड़ गई है राशि. राशि से जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. सो राशि, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर जगह है, और शायद उनके इन्फ्लुएंस से हम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सच में रियल न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर फेक न्यूज़ के पीछे कुछ ऐसे प्रमोशंस करते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर हमारे असर पड़ता है?
3: सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का मेन रोल क्या है, हमें मोटिवेट करना, एक गुड वे में लाइफस्टाइल को शो करना. सो लाइक जितना हम लोगों ने देखा है, हम लोग रील्स देखते हैं एटसेट्रा एंड ऑल, तो हमने ये देखा है कि वो सिर्फ एक हैप्पी और गुड लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ शो करते हैं. सो बेसिकली विच इनक्लूड्स लग्जरी लाइफ, ट्रैवलिंग, ईटिंग एट फैंसी प्लेसेस एंड ऑल. बट आई गेस ये एक गुड पार्ट भी है, बिकॉज जो बेसिकली अगर हम लोगों को देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं और वो उससे बहुत मोटिवेट भी होते हैं. तो अगर इन्फ्लुएंसर्स ही बहुत ही ऐसा डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव वे शो करेंगे तो शायद वो भी एक रॉन्ग वे हो जाएगा. बट आई बिलीव कि इट शुड बी न्यूट्रल. प्लस इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो लाइक ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर बिलीव करना इज़ हार्मफुल. सो लाइक पीपल शुड ऑलवेज like always not try to copy like what influencers are telling. They should live in reality.
1: तो आपके आंसर में एक चीज़ थी कि कोई भी चीज़ को हम एक बार रीचेक करें. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राशि, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में अगर हम देखें हमारी यूथ, 60% हमारी यूथ ऐसी है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन को और मिसलीडिंग चीज़ों को बिना रीचेक करे उसे शेयर कर देती है, अपनी स्टोरीज पर लगा देती है, आसपास में फ्रेंडों के पास शेयर कर रही है, तो क्या ये सही है? आप अपना क्या POV देना चाहेंगी उन लिसनर्स को जो ऐसा कर रहे हैं?
3: सी बेसिकली दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर हम पास ऑन करते हैं, पहले तो बिना कन्फर्म करे हमें कभी भी नहीं पास ऑन करनी चाहिए, क्योंकि वही र्यूमर्स बहुत गलत चीज़ है. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग. एंड लाइक वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन गवर्नमेंट वेरीफाइड न्यूज़, जो कि हमारे वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में आती है. एंड कभी भी वी शुड नॉट लाइक प्रमोट और लाइक शेयर दी फेक न्यूज़. एंड आई नो सम इन्फ्लुएंसर्स डू दिस थिंग टू गेट व्यूज एंड ऑल दो स्टफ, बट दिस इज़ रियली रॉन्ग. एंड लाइक बींग लाइक ऑडियंस, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग भी पहले क्रॉस चेक करें एंड देन उस पर बिलीव करें.
1: बिल्कुल. थैंक यू सो मच राशि.
3: वेलकम.
1: अब हमारे साथ है आयुषी. आयुषी से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए उनके क्या POV है. सो आयुषी, आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना में.
4: हेलो.
1: सो आयुषी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारा इंडिया top 3 कंट्रीज में से आता है सोशल मीडिया फ्रॉड के केसेस में, तो आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो क्रिप्टो करेंसीज हो गई या फिर कोई ऐसे स्कैम्स जिसको फॉरवर्ड करा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है कि आप इसे खेलिए, उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो उससे कैसे बचें?
4: जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में स्कैम हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है जो वो क्रिएटर्स लाइक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं, उनको लगता है दे आर लाइक दे ब्लाइंडली फॉलो देम. सो इस वजह से वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ही स्कैम हो जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई इट बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक.
1: सो आयुषी, आपने कहा कि ओवर शेयरिंग हो रही है. ओवर शेयरिंग तो हम सब देखते हैं कि हम रील स्क्रॉल करने बैठते हैं, हम पता नहीं 25-30 रील ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, चाहे वो रियल हो या फेक न्यूज़ हो या कोई भी चीज़ हो. तो आप मुझे एक बार बताइए कि ओवर शेयरिंग से कैसे बचें?
4: सो एक्चुअली आजकल जैसे स्टूडेंट्स एंड ऑल ये सब क्या करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे सीरियसली दे शेयर प्राइवेसी एंड यू नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, एंड वो कुछ भी शेयर कर देते हैं, लाइक उनकी लोकेशन हो गई जहाँ वो पार्टी कर रहे हैं या कहीं भी वो घूमने जा रहे हैं. इससे क्या होता है, साइबर क्राइम्स की जो रेट है काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं, जो दैट डैमेजेस देयर प्राइवेसी. सो वी नीड टू थिंक बिफोर वी पोस्ट एंड ऑल्सो हमें अपनी यू नो सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स ऑन कर लेनी चाहिए फॉर प्राइवेसी रीजंस एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट्स ऑल आई हैव टू से.
1: अच्छा तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपके पास ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट आई हो जो कि फेक आईडी से हो. ऐसा बहुत बार होता है लड़कियों के साथ, हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसे लड़के की इमेज लगा करके और उनके पास फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है.

0: आप उन्हें कैसे पहचानती हैं?
1: पहली बात तो एक्चुअली अननोन रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, जो म्यूचुअल्स होते हैं मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ, सो ये चीज़ है।
2: तो आप हमारी ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि थिंक बिफोर यू पोस्ट एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स डोंट ओवरशेयर इट ऑन सोशल मीडिया।
2: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: ओके, सो कीते मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें हर जगह से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है, अपनी अनरियलिस्टिक दुनिया को दिखाना, लोगों को बताना कि हम कितने खुश हैं, या हमेशा एक कहें तो पॉजिटिव साइड को ही दिखाना लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि हम अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली तो क्या वो सही है? क्या उन्हें कॉपी करते करते कहीं हम अपनी रियल दुनिया से पीछे तो नहीं भाग रहे?
3: यस, आई फील कि वो अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स क्रिएट तो करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई या समर ट्रिप्स हो गई, उसमें वो अपना लाइक प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, सो हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं एंड हम अपना फोकस, जो हमारा जो रियल फोकस होना चाहिए लाइक स्टडीज़ हो गई, जैसे मेरा स्टडीज़ है, तो उससे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो आई वुड से कि हाँ, हम थोड़ा अपने इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं और वो ट्रेंड हम भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा करें।
2: सो कीर्ति, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ चंद कहीं तो फॉलोअर्स या फिर लाइक्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सच में सही है? कहीं ये आगे चल करके उनके लिए एक मुसीबत ना बन जाए?
3: हाँ, मुझे लगता है कि वल्गर कंटेंट जो थोड़ा है लाइक थोड़े ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा सा नहीं होता, वो नेगेटिविटी तो थोड़ा फैला रहा है एंड उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं रादर दैन जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यूथ को पहुंचा सकते हैं। सो आई फील कि इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में जाके धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ही और फैलाएंगे आएंगे।
2: ओके, सो कीते आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को
3: कि इफ़ यू सोशल मीडिया लाइक सोशल एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, सो सोशल मीडिया अगर आप अच्छे से यूज़ करें विद अ प्रॉपर टाइम लिमिट, सही है सोशल मीडिया, अगर ज़्यादा यूजेज करें या थोड़ा नेविगेट हो जाए आप रॉन्ग उसमें चले जाएँ तो इट्स
2: कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट डालेगा हमारे ऊपर।
3: हाँ जी,
2: बिल्कुल। थैंक यू सो मच कीर्ति। अब हमारे साथ है पारस। पारस, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो शेयरिंग की भी बात होती है, शेयरिंग जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में यूथ हर चीज़ को शेयर कर रहा है, चाहे अपनी फोटोज हो, वीडियोज हो या कहीं घूमने गए हो, हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें जो नॉर्मल लग रही है, क्या ये सही है सच में?
4: नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आजकल देखो अब क्या होता है, आजकल लोग अपने ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और सोशल मीडिया व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को असाइड वो सारे काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है, बी इट फूड, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, ट्रैवल, तो वो सब सारा का सारा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ वो अलग अलग हो जाती है और वो अपने इमोशन भूल जाते हैं।
2: आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो शायद नेगेटिविटी और ट्रोलिंग से ज़्यादा फेमस होते हैं, ये चीज़ तो हम सबने देखी होगी कि अगर कोई इंसान एक बार ट्रोलिंग के फेज में आ जाए तो उसके बाद उसका नाम हर जगह होता है, तो क्या ये सही है? क्या हम आज के टाइम में ट्रोल होकर के अपने आप को फेमस करके अपने कल के जीवन के लिए क्या ये सही कर रहे हैं?
4: हाँ, जैसे कि मान लो कोई किसी इंसान ने अपनी रिलेशनशिप अपलोड कर रखी है किसी सोशल मीडिया ऐप पे, लेकिन उससे क्या होता है, कई इन्फ्लुएंसर उसको अपने सोशल मीडिया ऐप में डाल के उन लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए वो लोगों की ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रोलिंग क्या होता है कि जिसके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है वो उसको पसंद नहीं आती, उससे उसके जो फैमिली में होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उसको उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है और जिससे उससे क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ ऐसी हो जाती है।
2: अपना कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
4: या मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो, आप करो सोशल मीडिया के अंदर अपनी कंटेंट करो, पोस्ट करो, लेकिन पर्सनल लाइफ को भी अपना असाइड करके थोड़ा कम करो।
2: थैंक यू सो मच पारस।
4: थैंक यू।
2: अब हमारे साथ है कुंश। कुंश से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया को देखकर ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो गई है, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको मुझे एक बात बताइए कि हम जब उन लोगों को देखते हैं हमें ये लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम वो चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, पर मुझे एक चीज़ जाननी है कि उसकी वजह से हम जो अपनी लाइफ का जो असली फोकस है उसे खो करके हम कहीं उस दुनिया में तो नहीं जा रहे जो सच में फेम के लिए या फिर एक पॉपुलैरिटी के लिए बनी हो।
0: सोशल मीडिया फेम को बहुत ओवरनाइट फेम की तरह देखा जा रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत सालों की मेहनत और फेलियर्स को छुपा देता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओवरनाइट फेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है वो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम किसी और के भरोसे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल बहुत लोग ट्रोलिंग की मदद से सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए।
2: कुछ मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो बात हो, अगर हम बात करें वीडियोस की, चाहे वो वल्गर वीडियोस हो या फिर हेरेसमेंट की वीडियोस हो या फिर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर कोई ऐसे मान लो कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। पर आपको क्या लगता है कि ये सच में एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है या फिर ये हमारे जान के लिए एक रिस्क हो सकता है या कहीं ये इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जा रहा है?
0: अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी को हैरेस करके या किसी वल्गैरिटी को यूज़ करके फेमस हो रहे हैं तो वो खाली एंटरटेनमेंट तो नहीं रह जाता, मेरे हिसाब से वो क्राइम की तरफ चला जाता है। हमें ये दूसरों की ये समझना चाहिए कि दूसरों की डिग्निटी और प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, हमें किसी और मेरे हिसाब से इन क्राइम्स के लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, ताकि जो लोग इस तरीके से फेम पाने की कोशिश करते हैं वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे और मेहनत करके ही आगे बढ़े।
5: तो दोस्तों, आज के रेडियो रीबूट एपिसोड में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वर्ल्ड में एक नजर डाली है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर ग्लैमरस भी है, ग्रोथ भी है, पर कंफ्यूजन भी साथ में है। हमने समझा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बच्चों के सेल्फ इमेज, उनके ड्रीम्स और उनके डिसीजन तक पहुंच चुका है। कहीं ये इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया है तो कहीं कंपैरिजन का प्रेशर लेकर आ रहा है, और ये रीजन बहुत बड़ा है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर हमेशा बुरा नहीं होता। अगर लोगों को राइट डायरेक्शन दी जाए वो डिजिटल वर्ल्ड में सीख भी सकते हैं नए स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी भी। जरूरत है सिर्फ एक बैलेंस और एक अवेयरनेस की, बच्चों को समझने की, बच्चों को समझाने की, ना कि उन्हें रोकने की। सोशल मीडिया को विलन नहीं बनाना बल्कि एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह उसे यूज करना सीखना होगा, जिससे हम इंस्पायर हो पर उनके स्लेव्स ना बने। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, जहाँ पर हर बात होती है दिल से। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए, फील गुड फील लाइव।
6: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन और हमारे साथ आज नए एक्सपर्ट जरूर जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सभी लिसनर्स तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं या फिर गाना सुनना चाहते हैं, गाने डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है भाई, अपना मोबाइल फोन उठाना है और व्हाट्सएप करना है। नंबर है 8010781078। आप नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का कर रही हूँ इंतजार और इसी के साथ चलिए अभी आपके लिए बड़े कमाल के गाने लेकर आई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी होने वाली है बातें। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हैप्पीनेस कोच है, हेल्थ एक्सपर्ट और साथ ही साथ योग गुरु भी है, तो चलिए उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तो साक्षी आपके साथ और बहुत सारी करिए बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

मशहूर हो जाए। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। अच्छा, संडे का दिन है ना, तो हमें मन करता है कुछ ऐसा खाने का, यानी कि एग हो गया, ऑमलेट हो गया, सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट में हमने जो है वो एग खा लिया है, तो ऐसा मन कर जाता है, संडे वाले दिन ऐसा होता है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बाजार से जाके लेकर नहीं आते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, अपने आप आ जाती है चीजें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने जहां तक एक तरफ सारे जो कस्टमर्स हैं उनको घर बैठे आसानी से सामान उपलब्ध कराया है, वहीं देखिए कई सारी जो क्वालिटी है वो खाने की ना जरूरी नहीं है, एकदम उम्दा क्वालिटी में आए और कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में FSSAI ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अंडे की क्वालिटी को लेकर जवाब मांगा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अंडे जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडों को स्टोर कैसे जो है करें, और साथ ही साथ उन्हें खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक अंडे नॉर्मल तापमान पर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस में 10 to 12 डेज के लिए रह सकते हैं, तब तक के लिए फ्रेश है, इसके बाद नहीं। इसके बाद वही ज्यादा गर्मी के मौसम में अंडों की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, और इस तरह से उमस और ज्यादा तापमान अंडों की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। और इसके अलावा FSSAI की माने तो अंडों को रेफ्रिजरेटर शेल्फ या एग ट्रे में ही रखना चाहिए, अलग से आप उसे कहीं और स्टोर ना करें, एग ट्रे में ही रखें, जिससे कि तापमान बना रहता है, सही रहता है। साथ ही FSSAI का जो कंज्यूमर को ये भी कहना है कि अंडों को उसी शॉप से खरीदें जहां आपको लगे कि ठंडा तापमान रहता है, जहां पर हवादार होने के साथ साथ अच्छे से वो कवर भी रहती है, वहीं से आपको अंडे जो है वो खरीदने चाहिए। अंडे सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो इसीलिए इसका सेवन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर देखिए ये ज़्यादा दिन के अंडे जो है वो हो जाते हैं, तो उसे ना खाएं, वो आपके सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी बॉडी देखिए 9 अमीनो एसिड नहीं बना सकती, तो एक अंडे में जो 9 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें सभी 9 अमीनो एसिड होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत होती है, और ये इस तरह के अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड इसी वजह से माना जाता है। तो इसीलिए एग खाना अच्छा है, लेकिन उनकी एक्सपायरी चेक करके, क्या वो ख़राब तो नहीं हो गए। अभी पिछले कुछ दिनों में आपको मैं एक रियल बताती हूँ इंसिडेंट, मैंने भी अंडे ऑर्डर करे और 2 मिनट या 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद वो आधे घंटे बाद अंडे आ गए। अच्छा, अंडे आने के बाद जब मैंने उनको एक को क्रैक किया, उनको जैसे मैंने क्रैक करके उसको डाला, तो उसका योक और उसका जो वाइट पार्ट होता दोनों मिक्स था, यानी कि अंडा ख़राब था और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि एक अंडा है, उसे फेंक दिया। दूसरा अंडा देखा तो अंदर से वो ब्लैक था, यानी कि अब अंडे गर्मी की वजह से सड़ रहे हैं। और इसी वजह से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप अंडे ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप उसको देखिए ये सोच के ना खरीदें कि वो बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा है। हो सकता है अगर वो इतनी ज़्यादा कम कीमत पर मिल रहा है तो अंडा ख़राब भी हो सकता है, इसी वजह से वो कम कीमत पर मिल रहा है। तो कोशिश ये करें कि बाहर जाके मार्केट जाके देख परख के अंडा लेकर के आए, क्योंकि आप अपनी सेहत के साथ ऐसे में खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे तो खराब हो ही रहे हैं, सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, लेकिन अंडों को आप खुद जाके खरीद के लेकर के आए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। चलिए इसके साथ अभी लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, और होंगी बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील बैड।

0: बमक बम बमक बम बमक बम बमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ वक्त वक्त वक्त, जी हाँ, अब वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपना इंटरनेट ऐप हमारा जो है वो डाउनलोड करना है अपने फोन में। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और झट से हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप। और साथ ही अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। जी हां, तो कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, अभी 2 दिन पहले ही जो है पर्यावरण दिवस रहा, 5 तारीख को जो है, 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है। तो इस पूरा ये जो हफ्ता है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं पर्यावरण दिवस, एक बहुत ही खास दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: देखिए, पर्यावरण दिवस मनाने से अच्छा है पर्यावरण के बारे में एक अपने सोच और बुद्धि का विकास करना, एक हमारी समझदारी जो है पर्यावरण के प्रति खास करके जरूर अपने अंदर में जागृत करना चाहिए। क्योंकि जो आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जरूर सोचिए। आप आए हैं, आप कल चले जाएंगे, लेकिन आप अपने पीछे क्या छोड़ करके जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को फायदा देगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पर्यावरण के प्रति सजगता का यह दिवस है और सजगता का यह समय है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड वेलबींग, की किस तरह से जुड़ाव जो है मन का वो होना चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस बारे में और आपसे जानना चाहूँगी मैं, कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। आज है संडे का दिन और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो ये कि सबसे पहले ये आप बताएं कि नेचर और वेलबींग का जो कनेक्शन है वो क्या है और ये मेंटल हेल्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
1: देखिए, नेचर और वेलबींग का जो है इनसेपरेबल कनेक्शन है। नेचर है तो वेलबींग है, वेलबींग है तो नेचर है। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है
0: जी।
1: एक ही सिक्के के दो पहलू का नाम है, इस तरह से समझिए आप। अगर आप प्रकृति के गोद के बीच में अगर आप हैं, पर्यावरण के संतुलन के साथ हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा
0: जी।
1: इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति के बीच में अपने आप को तैयार किया, अपने आप को सृजन किया। क्या सृजन किया? अपने मन के विकास के लिए। मन की उच्च अवस्था को उन्होंने कहाँ प्राप्त किया? किसी 5-स्टार होटल में नहीं, मॉडर्न एमिनिटीज में नहीं। वो कहाँ पर जाकर के साधना करते थे? हिमालय में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों के किनारों में। वहां पर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिलता था, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती थी, मन की शांति, जो पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिलता था उनको वहां पर। इसलिए पर्यावरण और मन दोनों बहुत ही जुड़ाव है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है। एक ही सिक्के के दो पहलू का नाम है। अगर पर्यावरण है तो मन स्वस्थ है, अगर मन दुखी है तो पर्यावरण को पकड़िए। देखिए, किसी दिन आप अगर बहुत तनाव में रहते हैं, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब आप तनाव में रहते हैं, 1 घंटे के लिए मोबाइल को छोड़ दीजिए, डिजिटल कनेक्शन को आप डिस्कनेक्ट कीजिए, सीधे किसी पार्क में जाइए, साइलेंस होकर के आप बैठिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा सिर्फ पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखिए आप। जब आप लौटेंगे आपका मन बिल्कुल चेंज मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आज के स्ट्रेसफुल ये जो लाइफस्टाइल है, उसमें नेचर के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करना हमारे माइंड के लिए किस तरह से, जैसे कि आपने अभी बताया, लेकिन और किस तरह से जो है हमें जो है अफेक्ट कर सकता है, तो वो जरा हमें बताएं।
1: देखिए, पतंजलि योग सूत्र की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें यम और नियम की बात होती है। तो नियम में हम आ रहे हैं जिसमें पतंजलि ने लिखा है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्ध, स्वच्छता। ये स्वच्छता क्या है? हम अपने शरीर को तो स्वच्छ करके रख रहे हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं,
0: करेक्ट,
1: लेकिन अगल बगल के जो वातावरण है वो भी हमारी दायित्व है कि हम उसको कैसे हरा भरा रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि आप का जो एक इनसेपरेबल कनेक्शन है प्रकृति के साथ बना रहे। इसीलिए योग सूत्र में भी इसकी बातें होती है
0: जी।
1: और जब अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो एक वर्ड आता है यौगिक इकोलॉजी। यौगिक इकोलॉजी का अर्थ होता है पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना,
0: करेक्ट,
1: जहां मन का पूर्ण विकास हो, चेतना का पूर्ण विकास हो, और आप स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, जिसको हम कहते हैं आत्म अनुशासन में रहना, आत्म संयम को सिद्ध करना और आत्म साक्षात्कार करना। इसलिए पर्यावरण का बहुत ही जरूरत है एक दूसरों के लिए। मन स्वस्थ तभी होगा जब आपका पर्यावरण स्वस्थ होगा,
0: बिल्कुल,
1: आपका वातावरण अच्छा होगा, आपके अगल बगल के जो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको तैयार करना होगा। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए जो है पर्यावरण के साथ आप समय दीजिए। हम तो पूरी दुनिया में मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, हम बहुत इजी ले लेते हैं, हम सीरियस नहीं होते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, क्या आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने क्या किया है पर्यावरण के लिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम 5 पौधों को लगा दीजिए
0: जी।
1: और खास करके जिन लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मैं आपके माध्यम से, इस रेडियो मानव रचना के माध्यम से उन लोगों को, अपने जन्मदिवस पर एक पौधे लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। लगाना नहीं है, संरक्षण करना है, उसको बड़ा करना है।
2: बिल्कुल,
1: अपने जीवन में अगर आप 50-60 के होंगे तो 60 पौधे लग जाएंगे, 70 पौधे लग जाएंगे। अपने जीवन के जन्मदिन पर आप एक पौधा लगाइए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा पौधा लगाइए।
2: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, कुछ और भी सवाल हैं जो आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, तो जरूर जान सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। और डॉक्टर राजेश, आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी। अच्छा डॉक्टर राजेश, जैसे कि आप बात करें नेचर से, क्या ऐसा हो सकता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो चैलेंजेस हैं, वो उनको मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है?
1: बिल्कुल सही चीज आपने पूछा है। आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आल्सो, आप पर्यावरण के साथ अगर जुड़ेंगे तो ठीक होगा। जब डिप्रेशन अगर हो जाए आदमी को, तो मैं तो कहता हूँ चले जाओ कहीं पहाड़ों में छुट्टियों मना के आओ, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ थोड़ा समय गुजार करके तो देखो।
0: डॉक्टर राजेश, मेरा ना यहाँ पर एक सवाल आता है कि कई सारे लोग हैं जो अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां भी हैं या एक लंबा टाइम पड़ा है, तो क्या करते हैं लोग कि फैमिली के साथ चले जाते हैं पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन इस वजह से पहाड़ों पे भी भीड़ हो गई है। तो क्या सिर्फ पहाड़ों के पास जाके ही आप अपने मन को शांत कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय नहीं है कि घर पर भी, क्या इंडोर प्लांट्स के साथ या घर पर रह के भी मन को शांत किया जा सकता है या नहीं?
1: हाँ, घर में भी हम कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं अपने छोटे मोटे गार्डन में, नहीं गार्डन है तो गमले में आप बागवानी कर सकते हैं, प्लांट का केयर कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, पेड़ पौधे फूलों को आप देखभाल कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलता है। पहाड़ पौधे का अर्थ है कि पहाड़ और जंगलों में जाने का अर्थ, ये बात सही है क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एमिनिटीज में हम जीना सीख चुके हैं, हमारे पास तो अब जंगल झाड़ रहे नहीं। जहां हम रहते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, अगल बगल दो चार हैं, नदी जो थे अब वो नाले बन गए हैं। जहां नदियां बहती थी, मैं अपने घर में जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है झारखंड में, वो पहले नदी था जहां हम लोग नहाया करते थे, अब वहां वो नाला बन गए, उनमें सब लोग सीवेज वाटर डालना शुरू कर दिए। तो ये तो हमने कितना गलत काम किया ना।
0: बिल्कुल,
1: मुझे देख के रोना आता है। मैं जब लोगों को कहता हूँ यहाँ हम लोग नहाया करते थे बचपन में, अब सब लोगों ने उसमें अपने सीवेज के नाले निकाल दिए उसमें, तो ये हमारी गलती है। हमें इसका ख्याल रखना होगा, कुछ तो आने वाली पीढ़ी के लिए रखना होगा। तो इसलिए लोगों को अब तो रहा नहीं शहर में जहाँ हम रहते हैं, तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ता है पहाड़ों में, तो ऑब्वियसली भीड़ हो जाती है।
0: और इस वजह से जैसे अगर हम पर्यावरण की भी बात करें, तो पहले जो टेम्परेचर होता था पहाड़ों पे आप जाते थे तो मैक्सिमम वो जाता था 32-33 ये मैक्सिमम होता था, लेकिन आज के टाइम में पहाड़ों में भी टेम्परेचर जो है दिन के टाइम वो मेजर किया गया है कि 40-45 तक पहुंच गया है।
1: देखिए एक चीज और भी जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पहले जो घर बनते थे ना वो दूसरे तरीके के बनते थे, मोटे मोटे दीवार होते थे, ख्याल रखा जाता था। आज जो पतले दीवार होते हैं और इसके बाद जो हम बड़े बड़े गिलास लगाते हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि बड़े बड़े गिलास मत लगाओ, क्योंकि ये जो गर्म होती है तो फिर हीट को पर्यावरण को ही देती है। इसलिए गिलास कम से कम उपयोग कीजिए, जितना जरूरत हो मिनिमम गिलास का उपयोग कीजिए अपने घर में। देखिए घर में हीट कम होगा और पर्यावरण को भी, अभी लोगों ने पूरी बिल्डिंग बनाई है और गिलास लगा दिया, तो उसके तो हीट होंगे ही ना। एयर कंडीशन हम चलाते हैं वो भी तो बाहर, फाइनली हीट तो बाहर ही फेंक रहे हैं।
0: करेक्ट,
1: सारे जगह कंक्रीट पूरे बन गए हैं चारों, तो कंक्रीट का भी तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो हीट बढ़ रही है। तो इसलिए अब पर्यावरण का जो गर्म, इतनी गर्मी जो लोगों को मिल रहा है, इसका जो मेन जो सोर्स जो है मनुष्य ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, कुछ और भी सवाल है आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, और संडे का आज दिन है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी कि रिसर्च के मुताबिक ग्रीनरी और नेचुरल सराउंडिंग्स हमारे मूड और इमोशन वेलबींग को किस तरह से इम्प्रूव करता है, और साथ ही आजकल जो नेचर थेरेपी है या ग्रीन थेरेपी है, इसका मतलब क्या है या ये कैसे काम करती है, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, हरा रंग जो है वो हरियाली का है, वो खुशियां प्रदान करता है, एक पॉजिटिव देता है, आपके ब्रेन के वेवलेंथ को वो मेंटेन करता है, खास करके अल्फा वेव को, इसलिए वो बहुत ही जरूरी है। जहां भी आप रहते हैं घर में, इंडोर प्लांट रखिए 2-4, नहीं कुछ हो तो एरिका पाम जरूर रखिए, मनी प्लांट रखिए, इससे ऑक्सीजन का भी लेवल बढ़ता है। तो इसलिए हरा रंग जो है आपके जीवन का यह सार है, चाहे वो खाने के समय में आप यूज कीजिए कुछ ना कुछ हरा भरा, और अगल बगल भी रखिए। इसलिए हरा के साथ जो मन का एक गहरा लगाव है, मन के साथ आपके पूरे स्वास्थ्य का एक कनेक्शन है इस रंग के साथ, इसलिए हरियाली में जीना ज्यादा अच्छा है। कोशिश कीजिए अपने अगल बगल कुछ हरे पौधों को घर में रखिए, इससे क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन का भरपूर सप्लाई होगा, दूसरा क्या कि मूड जो है स्कैटर्ड जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब आप पेड़ पौधों को देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना काम डाउन हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मॉर्निंग वॉक, सनलाइट या फ्रेश एयर को मेंटल हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है वो बताएं।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक में जाएंगे एक घंटे का, शुरू कीजिए 10 मिनट से, 10 मिनट में आप देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, फिर उसको 15 मिनट कीजिए, फिर 20 मिनट, हर बार 5 मिनट बढ़ाते चलिए, और एक घंटा जब आप आ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने अपने लिए क्या किया है। जब आप करते हैं आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन होती है पूरे सेलुलर लेवल पर, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करती है आपकी मॉर्निंग वॉक। ना दौड़ना है, ना तेज चलना है, और ना स्लो चलना है, मॉडरेट वे में आप वॉक कीजिए, लेकिन बिना फोन के साथ, बिना फोन के साथ, क्योंकि और हम लोग क्या करते हैं, कान के अंदर बहुत सारे वो स्पीकर वगैरह लगा लेते हैं, गाना सुनते जा रहे हैं, नहीं, उसको भी हटा दीजिए, अपने अगल बगल देखते चलिए, अनुभव कीजिए, फील कीजिए, थोड़ा अपने लिए, अपने आप से जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। इसमें आपकी टोटल वेलबींग फिर से इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी और रिपेयर हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए एक घंटे का वॉक तो जरूर कीजिए, देखिए आपकी सारी बीमारियां किनारा लग जाएगी।
0: बिल्कुल। देखिए, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से जानना, तो जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मैनम रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, मैं अब आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी बच्चों और टीनेजर्स के बारे में। क्या बच्चे और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में नेचर का कोई खास रोल होता है? क्योंकि बचपन में तो मतलब एक होता है कि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप जॉब कर रहे हो तो आप थोड़ा ब्रेक लेके आप नेचर में जाइए, लेकिन बच्चों और टीनेजर्स के लिए भी क्या ये सेम चीज़ है?
1: देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है गार्डनिंग करने में, मिट्टियों से खेलने में। खास करके मैं बताता हूँ कि एक जनरेशन पहले जो मेरे फादर लोग थे, हम लोग जिसमें, हम लोगों का समय बचपन में मिट्टियों के साथ जुड़ा। पहले सुनते थे, माँ डांटती थी बच्चों को, मिट्टी मत खाओ, मिट्टी मत खाओ। आज के बच्चों को तो मिट्टी मिलता ही नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अब तो मैं नहीं सुनता हूँ कि बच्चे मिट्टी खाते हैं, क्योंकि उसकी सौंध की खुशबू ना बच्चे के मन को आकर्षित करती थी और वो मिट्टी डालता था मन के मुंह के अंदर और उसका अनुभव करता था। अगर आप भागवत पुराण को खोलेंगे तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बाल रूप में एक बार मिट्टी खा ले तो यशोदा आकर के बोले, मुंह खोलो दिखाते हैं। भगवान ने मजा किया, बोला चलो माता के लिए मैं मुंह खोलता हूँ, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा तो अकस्मात हो गई, ये मैं क्या देख रही हूँ, पूरा संसार दिख रहा है। और फिर भगवान ने कहा कि अरे मैंने तो मुंह दिखा दिया अपना, ब्रह्मांड दिखा दिया, अब ये तो माता स्वरूप हमारे साथ नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर खेल खेल लिया, सारी मेमोरी खत्म कर दी, डिलीट कर दिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बच्चों को समय दीजिए मिट्टी से जुड़ने का, गार्डनिंग कीजिए, पेड़ लगाना है, फूल पौधे का ख्याल करना है, वाटरिंग करना है गार्डन में, चिड़ियों के लिए पानी देना है, चिड़ियों के लिए खाना देना है। ये सब तो छोटे छोटे चीज हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जीव जंतु पर्यावरण के प्रति, और ये बहुत ही उनके अंदर एक विकास होता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब जैसे बच्चे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका जुड़ाव भी होना, लेकिन आजकल जो फ़ोन की एडिक्शन है ये नहीं छूट पाती है। बच्चे को हम कितना भी अब बोलें तो उनको वो फोर्सफुल डिसीजन लगता है पेरेंट्स का कि नहीं, गार्डनिंग जो है वो नहीं करनी है। एक बार को अब वो बोल भी दें लेकिन फ़ोन का एडिक्शन, तो कैसे ये नेचर जो है वो हील कर सकता है? फोन को एडिक्शन को हटाना जो है वो कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है और कैसे होगा ये?
1: देखिए, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कि धीरे धीरे प्यार से कह करके कि अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर फोन लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे का आप समय बनाइए, कुछ नियम बनाइए। खाने के टेबल पर फोन नहीं रहेगा, पूजा के समय फोन नहीं रहेगा, गार्डनिंग हम करते हैं फोन नहीं रहेगा, वॉकिंग करते हैं फोन नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे।
0: तो क्या अगर नेचर की बात करें हम, तो उसके साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ, तो क्या हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है?
1: ऑफ कोर्स, इंटायर आपका पूरा बायोरिदम चेंज होता है। जो आपकी बॉडी की एक जो इंडिविजुअल रिदम है, ये जो बायो रिदम है, ये आपके कॉस्मोस के साथ, कॉस्मिक रिदम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप वॉकिंग करते हैं, पर्यावरण से जुड़ते हैं, तो आपके पूरे स्लीप पैटर्न के अलावा भी, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है, थायराइड की इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, यही सब तो मिसमैनेजमेंट है। तो सारे रिदमिक जितने हैं आपके, मैंने बोला आपको कि शुरुआत आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म से होता है। एक बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपका ट्यून हो गया, तो 99.9% डिजीज आपने रिजॉल्व कर लिया।
0: बिल्कुल। और साथ ही मेंटल वेलबींग के लिए अगर आप अपने लिसनर्स को कौन से सिंपल नेचर बेस्ड डेली हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए आप सलाह देंगे, वो जरा हमें बताएं।
1: सबसे पहले वॉकिंग जरूर कीजिए, और दूसरा, जब आप डे शुरू करते हैं तो पहला चीज जो खाना इंटेक है ना, उसको चबा के खाइए, चाहे वो गाजर हो चबा के खाइए, और सलजम हो, बीट रूट हो, जो भी आप खाते हैं, ऐसा कोई भी भोजन जो आप चबा के खा सकते हैं।

0: एक रॉ फूड के रूप में नहीं कुछ मिलता है, खीर आप ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए, उसको चबा के खाइए। पहला इनटेक यहाँ से कीजिए भोजन। नहीं कुछ मिलता है, कभी आप स्पिनेच लीजिए ग्रीन, उसका जूस निकाल लिए, उसको पी सकते। पहला चीज कुछ ना कुछ नेचर बेस्ड प्लांट बेस्ड आप डालिए अपनी बॉडी को। और समय गुजारिए थोड़ा सा पार्क में जरूर, लेकिन बिना फोन के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, जिसके बाद एक और सवाल है मेरा, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ और हमारा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, इमोशनल बर्नआउट से जो गुजर रहे लोग हैं, नेचर को अपनी हीलिंग जर्नी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? कोई सिंपल सी प्रैक्टिस जो है, कोई प्रैक्टिकल मैसेज है वो आप ज़रूर बताएं सभी के लिए।
1: देखिए, स्ट्रेस तो आपके जीवन में रहेगा, ये आपके जीवन का एक भाग है। इसको एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिव वे में। इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स होना ये नेचुरल और स्वाभाविक रिदम है। इमोशंस कभी हाई होंगे, कभी डाउन होंगे, कभी इधर होंगे, लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, वो फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। उसको भी आप नेचुरल वे में एक्सेप्ट कर लीजिए। मेन होता है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं तूफान से लड़ने के लिए। अगर घर मजबूत है ना, तो तूफान कुछ नहीं करता है। घर का फाउंडेशन अगर आप बना रहे हो, घर की पिलर अगर अच्छी है, तो तूफान आए, बरसात आए, कुछ नहीं होता है, वो बगल से निकल जाता है। इसलिए अपने फाउंडेशन को आप मजबूत कीजिए ना, उसके लिए आप समय दीजिए अपने लिए। समय कैसे देना है? अपने आप को हेल्दी वे में, हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप एक्सेप्ट कीजिए। अपने लिए समय निकालिए। ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है। अरे भाई, आपके पास पूरा समय है। आपके पास सोशल मीडिया के लिए समय है। इंस्टाग्राम पर बैठते हो, रील देखते हो, घंटों निकल जाते हैं, और एक घंटा आपके लिए अपने पास नहीं है। जाइए किसी पार्क में, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा जॉगिंग कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलिए, किसी क्लब में जाइए, स्विमिंग जाइए, अभी थोड़ा आप इन सब जगहों में तो जाइए, घर के चार दीवारी से बाहर निकलिए। ड्राइंग रूम में अपना समय मत गुजारिए, वो जगह आपके हेल्थ का नहीं है
0: जी।
1: आपको बाहर जाना है। जब तक आप आउट नहीं होंगे अपने अपार्टमेंट से, तो आप हेल्थ रिजुविनेट नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये सीक्रेट आपको बताया है कि घर को छोड़िए। अगर आप प्रॉपर हेल्थ चाहते हैं, 1 से 1.5 घंटा आपको बाहर गुजारना है। अब आप डिजाइन कीजिए क्या करना चाहते हैं। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में जाइए। योग में इंटरेस्ट है, योग में जाइए। गार्डनिंग, फ्लावर का इंटरेस्ट है, गार्डनिंग करने के लिए जाइए।
0: बिल्कुल
1: समय गुजारिए बाहर में। देखिए आप कैसे, कोई इमोशन बर्नआउट नहीं होता इसके बाद। आपकी माइंड और शार्प होती है और आप तैयार होते हो कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप अपने अंदर तैयार करते हो सिचुएशन के साथ को रिलेट होने के लिए, क्योंकि अब आपके पास एंजाइटी नहीं रहा। आप अपने आप को इतना तैयार करके रखे हो मेंटल लेवल पर कि छोटे मोटे ये सब आपके लिए इजिली रिजॉल्व हो जाते हैं चैलेंजेस। इसलिए तनाव आपके जीवन का हिस्सा है। अगर कोई कहता है कि तनाव मुक्त जीवन है, तो फिर कोई जीवन का मायने नहीं है
0: जी।
1: अरे किसके जीवन में तनाव नहीं रहा है? कृष्ण के जीवन में तो देखो, कुंती के जीवन को तो देखो, द्रौपदी के जीवन को तो देखो, राम के जीवन को तो देखो, किसके जीवन में तनाव नहीं है। इसलिए तनाव तो आपके हिस्से हैं जीवन के। इसकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक प्रयास करना चाहिए हमें। समस्याएं आती है तो समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करना, समाधान ढूंढना है। और समाधान तभी आप ढूंढ सकते हैं जब आपका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, आपकी भावनाएं जो हैं संतुलित होगी। इसलिए मन और भावनाओं का जो तालमेल है, यह आपके वेलबींग से आता है। इसलिए आप अपने लिए 1 घंटा जरूर समय निकालिए बिना फोन के।
0: बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी, साझा करी, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बिखेरिए।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो हम लेकर के आते हैं हर हफ्ते आपके लिए, और इसमें कोशिश होती है हमारी कि आपको हम वो चीज़ें बताएं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ नोइंग द स्टार्टअप इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ नोइंग द कंट्री, इन टर्म्स ऑफ नोइंग द सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो आज का शो आपस से बहुत खास होने वाला है, करेंगे डिस्कस कौन सी इंडस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं इंडस्ट्री के बारे में जो आपको बतानी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे आज के स्टार्टअप के बारे में। बट फिलहाल कहीं जाइएगा मत, मेरा सलाम कबूल करिए, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं। पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: वापिस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के

अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है, इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक यू नो डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताए, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

धर गिरद करन धरन धरत पाग परत नहीं परन झन के झन नन नन नन नन।

0: Din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum tanana dir na din tanana dir tanum
1: मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइक।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं आप फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उनके सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है।

0: और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ, ना इज्जत।

मुद्रा बन के हम सन्यासी काम है चलते।

महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आई, म्यूजिकल वाइब अच्छी लगी, आपको इंडस्ट्री के बारे में जो बताया वो अच्छा लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। आज की मेरी कंपनी है फाइव मनी, फाइव बेसिकली फाइनेंस एंड शॉर्ट फॉर्म करके फाइव मनी इसको किया गया है। हम सब पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो हम में से बहुत लोग नहीं पूछ पाते हैं। अगर पूछ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज क्या हम अपने पैसे को समझते भी हैं? सैलरी आई, एक्सपेंसेस हुए, सब्सक्रिप्शंस कट गए, यूपीआई की पेमेंट्स हो गई, और मंथ एंड में बस एक क्वेश्चन रह जाता है, भैया पैसा कहाँ गया, इतना तो कमाया था। एग्जैक्टली ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है हर एक मध्यवर्गीय इंसान की दिक्कत है, जो हर एक मध्यवर्गीय इंसान या जो सेम लूप से गुजरता है वो रिलेटेड एक चीज से कर पाएगा। ट्रेडिशनल बैंकिंग आपको आंसर देती है इसके, लेकिन अलग तरीके से देती है। ठीक है, आंसर होते हैं अकाउंट बैलेंस कितना है, ट्रांजेक्शन कब हुआ, बट नई जनरेशन को जवाब चाहिए। जवाब किस तरह के, मेरा स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, मैं कहां अननेसेसरी खर्चा कर रहा हूं, हाउ कैन आई ऑटोमेटिकली सेव एंड इन्वेस्ट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2019 में स्टार्ट हुई ये कंपनी विच इज फाइव मनी, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको एपीफाई जो है टेक्नोलॉजीज ने बनाया था, एंड अपने आप को इन्होंने पोजिशन किया है एज अ स्मार्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट इंडियंस। सो द आइडिया वॉज वेरी सिंपल, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से आइडिया आया कि पेमेंट्स इंडिया में डिजिटल हो रहे थे, लेकिन पर्सनल फाइनेंस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ डिजिटल पेमेंट, स्पेशली यूपीआई अडॉप्शन, उसके बाद फाउंडर्स को ना गैप नजर आया कि लोग ना सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बट पैसा मैनेज करना भी मुश्किल है लोगों के लिए। तो मोस्टली जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं वो ओल्ड पैटर्न्स पे चल रही थी, और इस तरीके से उनको डिजाइन किया गया था कि वो आपकी ट्रांजैक्शन तो करा सकती हैं, बट पैसे सेव करने का, आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का वो खासा इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो वहां पर तो ये था कि ये रहा आपका बैंक अकाउंट, आपको जो मर्जी चाहिए वो करिए। बट यहाँ पर ये जो जवाब लेकर के आए हैं, विच इज ये रही आपकी धनराशि, समझिए इसको, कंट्रोल करिए इसको और ग्रो करिए। ये एक नियो बैंक है, यानी कि फुल फ्लैज जैसे ट्रेडिशनल बैंक हुआ करते थे वैसा बैंक नहीं है, लेकिन बैंक की तरह ऑपरेट करता है। ओके, सो दिस इज आर टुडेज कंपनी विच इज फाइव मनी। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट कहीं जाइएगा, मैं उठ रही हूँ हमारे साथ, फील गुड फील।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आए गाने। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। तो इस फाइव मनी हमारी आज की कंपनी है, इसके दो फाउंडर हैं, एक है मिस्टर सुजीत नारायणन, दूसरे हैं सुमित ग्वालानी। पहले हम सुजीत जी की बात करेंगे। सुजीत नारायणन जो हैं वो इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट नाम निकल के सामने आता है। बिफोर फाइव मनी उन्होंने गूगल के साथ काम किया है, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था गूगल पे के पीछे। मतलब पहले उसको तेज इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको गूगल पे ने एक्वायर किया था। बट उस एक पर्टिकुलर कंपनी को बनाने में, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनका आप कह सकते हैं एक मेजर रोल था इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग गूगल्स पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। इनके एक्सपीरियंस ने सिखाया कि पेमेंट्स आर ओनली द एंट्री पॉइंट, द बिगर प्रॉब्लम इज हाउ डू पीपल मैनेज देयर फाइनेंशियल लाइफ आफ्टर पेमेंट। एंड उसके बाद जब इन्हें बात समझ में आई तो फिर उन्होंने उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काम करना शुरू भी किया। दूसरा नाम है यहाँ पर सुमित ग्वालानी। सुमित ग्वालानी गूगल इकोसिस्टम से ही आते हैं। उन्होंने काम किया कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बिल्डिंग गूगल पे इन इंडिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट दोनों फाउंडर्स के लिए ये था कि दोनों ने इंडिया की एक बहुत बड़ी मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था एंड लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के साथ कंफर्टेबल होते हुए उन्होंने देखा, कुछ उनका भी उसमें योगदान रहा। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट उसके बाद अगली प्रॉब्लम उन्हें समझ में आई कि लोगों को स्मार्ट बनाना है पैसे के साथ, एंड दैट्स व्हेन

दे स्टार्टेड दिस कंपनी विच इज फाइव मनी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी बातें आपको बताई आप समझ पाए हैं। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: वेलकम बैक, शो को आगे बढ़ाएंगे। आज की कंपनी हमारी है फाई मनी। फाई मनी एक इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो D2C नियो बैंकिंग एप्लीकेशन के तौर पर इन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया था, जहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आपको मिलता था, क्रेडिट कार्ड आपको मिलते थे, इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको मिलते थे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बट अभी कंपनी ने थोड़ा शिफ्ट किया है। अभी कंपनी जो है AI ड्रिवन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल होता है उसमें ये कंपनी काम कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंडिया में आइडेंटिफाई किया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ एक ऑब्जर्वेशन है उसको आप ये देखिए कि आप किस नए पैकेट में आप उसको दे सकते हैं, क्या नई प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाई मनी ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी विच वॉज, आप इमेजिन करिए एक इंसान जिसकी सैलरी है 70,000 रुपए प्रति माह, 3 बैंक अकाउंट हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, UPI एप्लीकेशन हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर जगह पर स्कैटर्ड है। सो ही इज नॉट हैविंग एनी कंप्लीट पिक्चर। फाई वॉन्टेड टू बिकम द कंट्रोल रूम ऑफ दैट गाइज फाइनेंशियल लाइफ एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जैक्टली इनका बिजनेस मॉडल है क्या। फर्स्ट आता है स्मार्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस। यूजर्स डिजिटल सेविंग्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पार्टनर बैंक्स, ठीक है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंस ट्रैकिंग। इंस्टेड ऑफ शोइंग 500 रुपीज स्पेंट, इस कंपनी ने जवाब दिया आप स्पेंड कर कहां पे रहे हो, और मंथ का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है कि खाने पर 8,000 रुपए गए, शॉपिंग पर 12,000 रुपए गए, आपके पैटर्न रिकॉग्निशन वहां पर ज्यादा हुए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस असिस्ट, एक यूजर यहां पर मनी हिस्ट्री अपनी सर्च कर सकता है, व्हेन डिड आई लास्ट पे फॉर माई नेटफ्लिक्स अकाउंट या अमेजोन प्राइम अकाउंट, ठीक है, व्हाट वॉज माई फूड स्पेंडिंग लास्ट मंथ। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने इस कंपनी को जो है एक बहुत स्ट्रांग अपर हैंड दिया, जिसकी बदौलत लोगों ने इसको पसंद करना शुरू भी किया और एक्चुअली अडॉप्ट भी किया, कंपनी ने अपनी जगह बनाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर ऑटोमेटेड सेविंग, ठीक है। इनका एक फीचर था पहले FYT रूल्स करके, ठीक है, एवरी टाइम यू ऑर्डर अ फूड 50 रुपए ऑटोमेटिकली आपके सेव हो जाएंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा होगा, मतलब जैसे मानकर चलिए हर बार इंडिया अगर मैच जीतेगा 100 रुपए सेव हो जाएंगे, तो एक सिंपल बोरिंग सी एक्टिविटी को इन्होंने एक बिहेवियरल हैबिट बना दिया एंड इट एक्चुअली वर्क्ड। सो ये है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो इस कंपनी ने लोगों को दिया और लोगों को पसंद भी आया। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
1: हमसे रोशन है चांद और

आशा करता हूँ आपको मजा आ रहा है शो सुनने में। फिलहाल एक और बार अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। फील गुड, फील लाइव। अब बात करते हैं इस कंपनी की यूएसपीज की। फाइव मनी की यूएसपी है, फर्स्ट इज बिहेवियर प्लस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस एप्लीकेशन नहीं बनाई इन्होंने, इन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस नहीं किया, ह्यूमन बिहेवियर को समझा है एंड हाउ ह्यूमंस बिहेव विद मनी, इसको इन्होंने केटर किया। क्योंकि मनी प्रॉब्लम्स आर यूजुअली नॉट मैथमेटिकल, दे आर बिहेवियरल। सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। फाउंडर्स जो हैं वो गूगल से एक्सपीरियंस लेकर के आए थे, सिंपल डिजाइन, फाइनेंशियल जागन बहुत कम, कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच उनके पास था वो। थर्ड आता है डेटा इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है, अगर आपने 20,000 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, तो 20,000 रुपए आपके गए, बट यहां पर है 20,000 रुपए आपने जो खर्च किए हैं वो कहां पर किए हैं भैया, कैटेगरी कौन सी है। तो मंथ एंड में आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपकी इतनी स्पेंडिंग है, अपने पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल बी मोर माइंडफुल अबाउट इट। तो ये वो चीजें हैं जो इस कंपनी ने चेंज करी, नथिंग लाइक कि बहुत अलग से कुछ लेकर के आए। इट्स जस्ट लाइक सिंपल एवरीडे प्रॉब्लम्स को, उनके हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, हमें दिखाना शुरू कर दिया कि तुम ये कर रहे हो। That's how this whole thing worked. Key growth drivers तो भैया इंडिया का UPI revolution रहा है obviously, क्योंकि UPI सब लोगों ने use करना शुरू कर दिया। Young working professionals, millennials, Gen Z employees, digital natives, इन सबको target किया और उन लोगों को, क्योंकि पैसे बचाने हैं, finance को समझना है, तो ये इस company को समझ में आया। Founder credibility, Google Pay से आए हैं, Google Pay बना के आए हैं दोनों लोग, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे से समझते हैं, मैथ को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, फाइनेंस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इंडियन कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फंडिंग का सपोर्ट भी रहा बहुत सारी कंपनीज से, तो ये वो कंपनी के की ग्रोथ ड्राइवर्स बने जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया, जिनकी बदौलत ये कंपनी उठी और वहां से आगे बढ़ पाई। तो यूएसपी और की ग्रोथ ड्राइवर्स हमने आपको बताए, बट अगेन आई एम सेइंग कि हर बार गुंजाइश होती है कुछ और बेहतर कर देने की, तो ये कभी मत सोचिएगा कि कुछ परफेक्ट बन चुका है। नथिंग इज लाइक परफेक्शन, कीप वर्किंग। एक और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: Alright, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आ रहा है शो सुनने में। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो 8010781078 इस नंबर पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर वक्त है शो को कंक्लूड करने का। हमने अब फिनटेक इंडस्ट्री की बात करी, हमने फाई हमारी जो आज की कंपनी है उसकी बात करी। बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम फाई मनी ने सॉल्व करी है जो एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसको आवाज नहीं दे पा रहे थे हम लोग कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये कंपनी आपको बताती गई कहाँ जा रहा है और बचाना चाहते हो, लो चलो इसमें भी हेल्प करते हैं आपकी। लाइक दिस कंपनी हेल्प्ड अस। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपनी फाई मनी। आज की हमारी कंपनी रही, अच्छे से हमने आपको बताया। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो कि कुछ भी परफेक्शन नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, हमेशा गुंजाइश होती है कुछ और बेहतर करने की। ये अपने साथ हमेशा याद रखिएगा बस। फिलहाल इसी नोट पर चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी पिलौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। एक्सपर्ट जुड़ते हैं हर हफ्ते हमारे साथ इस प्रोग्राम में, जो देते हैं आपको हेल्थ रिलेटेड एक खास टॉपिक पर अपनी बेहतरीन एडवाइस। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसे कैपिटल के फॉर्म में भारत अब पहचानने लगा है, और पूरी दुनिया में हमें कहा जाता है कि हम सबसे ज्यादा पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के भारत में ही देखते हैं। जी हाँ, डायबिटीज, मधुमेह, कहने को एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिंपल सी प्रॉब्लम अगर कंट्रोल में ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हम बात करते हैं, जिसमें डायबिटीज बात करना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे डिजीजेस लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं या फिर जेनेटिक आ रहे हैं, पर ये आ तो रहे हैं, और भारत में आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले होते चले जा रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 के फॉर्म में आपने सुनी होगी, लेकिन एक्चुअली में यह है क्या, किस तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, और क्या डायबिटीज जो है वो कभी रिवर्स हो सकती है? ऐसे कुछ सवाल हैं मेरे पास और आपके पास भी होंगे, तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर तारिक, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और इनसे हम बहुत से सवालों के जवाब आज डायबिटीज से जुड़े हुए जानेंगे। सो डॉक्टर तारिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना। सबसे पहला सवाल सर मैं जानना चाहती हूँ, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पर लें तो डायबिटीज में ये होता है कि आपका शुगर लेवल जो है, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं, वो बहुत हाई चला जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे मेडिकल फॉर्म में पूछूं तो हमें थोड़ा सा विस्तार में और सिंपल भाषा में समझाइए कि डायबिटीज यानी मधुमेह एक्चुअली में बॉडी में क्या है।
3: डायबिटीज बेसिकली हम इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, आम भाषा में हम बोलते हैं कि शुगर बॉडी में बढ़ गई है तो ये मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें जो बॉडी में इंसुलिन या तो बन नहीं पाता, अगर बनता है तो वो बॉडी यूज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो इसको ही डायबिटीज बोलते हैं
2: जी।
3: और डायबिटीज वैसे तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन जो कॉमन डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, तो और जो कि बड़ों में पाई जाती है, जो ओबेस लोग होते हैं उसमें उनमें पाई जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है कि उसमें इंसुलिन या तो बनती नहीं है, बनती है तो बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बच्चों में जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम पैनक्रियास पर अटैक करता है और वहाँ पर इंसुलिन बन नहीं पाता, तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डिफिशियंसी होती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में जो हम OHAs मेडिसिन खाते हैं वो काम नहीं करती, इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ही देते हैं, उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन होता है
2: जी। जी, उसको कंट्रोल करने का तरीका इंसुलिन है, और टाइप 2 की अगर हम बात करें तो उसमें मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया,
3: मेडिसिन प्लस इंसुलिन हम
2: दोनों ही
3: चल सकता है
2: जी। सो टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, हर घर में कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट मिल ही जाते हैं और संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, अगर ऐसे कोई आपके घर में भी हैं और आपके मन में कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे 8010781078 पर। बातचीत बहुत सारी चल रही हैं, और ये जो पॉडकास्ट है, ये ऑडियो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप पर भी, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर iOS स्टोर से, और RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर पॉडकास्ट सेक्शन में आप डॉक्टर तारिक के साथ हुई ये सारी बातचीत कभी भी कहीं भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। फिलहाल रेडियो मानव रचना पर वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है बहुत सारी डायबिटीज के बारे में, और डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा हद तक ये जो है परेशान कर देती है। जिस पेशेंट को डायबिटीज होती है, सिर्फ उसे मीठी चीजें दूर नहीं होती हैं, उससे बहुत सारी और भी चीजें दूर रखनी पड़ती हैं। जी हाँ, यानी उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत बदलना पड़ता है। अब डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये तो हमें डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन कैसे पता लगे कि डायबिटीज बॉडी में आ गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत समय तक ये पता ही नहीं लगा पाते कि उनके शरीर में डायबिटीज आ चुकी है या उन्हें शुगर हो चुकी है, तो ये सिम्टम्स जानना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर तारिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर तारिक, सिम्टम्स की बात अगर हम करें तो एक व्यक्ति अपने शरीर में अगर उसके डायबिटीज हो जाती है तो उसको सबसे पहले क्या महसूस होगा, कैसे वो ये पता लगाए?
1: डायबिटीज इनिशियली स्टेज में तो पता ही नहीं चलता, वो एसिम्टोमेटिक रहती है। तो जब किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो बहुत टाइम तक तो कुछ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता। कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे जब डायबिटीज़ होती है तो लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे और भूख भी ज़्यादा लगती है, उसमें पेशाब ज़्यादा आता है, इस पर रात में भी बहुत कई बार वो लोग पेशाब करने के लिए उठते हैं। और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से वेट लॉस भी होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, कि डायबिटीज़ क्या करता है, इम्यूनिटी कम करता है, उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है डायबिटीज पहचानने का।
0: यानी आप ज्यादा बीमार हो रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि डायबिटीज हो सकता
1: है। और बहुत टाइम में कभी बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज में जो उसका कॉम्प्लिकेशन है, वो डायबिटीज न्यूरोपैथी, एक जो नस जो होती है उसका डैमेज होने लगती है। तो अगर पैर में चोट लग जाए तो उसके वो पता ही नहीं चल पाता कि उस घाव का, और फिर डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर है कंट्रोल नहीं है तो वो घाव भरता नहीं है, जिसकी वजह से वो जख्म बहुत ज्यादा गैंग्रीन में बदल जाता है।
0: ओके,
1: तो ये भी एक सिम्टम है। हाँ, कि कोई पेशेंट आ रहा है गैंग्रीन से तो उसको हम लोग डायबिटीज शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसको डायबिटीज है, उसको वो बोलता है कि मुझे तो डायबिटीज है नहीं, तो फर्स्ट टाइम ऐसे पता चलता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़े लोगों की बात हो गई, लेकिन टाइप वन की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑटो इम्यून होता है और जनरली छोटी एज में होता है, तो टाइप वन पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस पे ज्यादा चर्चा होती नहीं है, जनरली लोगों को यही लगता है कि बड़ों को डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज बच्चों को भी होता है, सो क्या इसके सिम्टम्स बच्चों में क्या देखे जाएंगे?
1: टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होता है, और मैंने जैसा अभी आप बताया था कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो पैनक्रियास पे अटैक करता है, पैनक्रियास से ही इंसुलिन सिक्रेट होता है
0: जी।
1: अब वो पैनक्रियास पर अटैक, जब वहाँ पर इंसुलिन बनेगा नहीं तो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसमें भी वही सब सिम्टम्स होते हैं कि शुगर अगर ज़्यादा है रहेगी तो उसमें प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये सब टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जब सीवियर फॉर्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये, तो इसमें जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें ये एक मतलब एक इट इज़ एक इमरजेंसी, ये बहुत तो इसमें जान का भी खतरा रहता है। तो इसमें शुगर इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज होता है।
0: जी जी, यानी कीटोसिस की आप जो बात करें, ये बहुत, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये थोड़ा बताएं।
1: इसके सिम्टम्स में ये रहता है कि पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, वो डिहाइड्रेटेड रहता है पूरा, ये सब चीज़ें। और अगर ये डायबिटिक कीटोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से उसको सांस भी लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, तो ये इट्स एक इमरजेंसी। इसको अगर ये किसी को पेशेंट को दिख रहा है तो इसमें लापरवाही ना करें, तुरंत हॉस्पिटल में जाए और उसका इलाज कराएं, वरना इसमें जान जाने का खतरा रहता है।
0: जी, यानी बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है, बड़ों में भी होता है।
1: बड़ों में भी होता है
0: जी,
1: कॉमनली ये टाइप 1 डायबिटीज के में पाया जाता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस, लेकिन बड़ों में टाइप 2 में भी मिलता है।
0: जी जी बिल्कुल, यानी अगर वॉमिट ज्यादा हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिहाइड्रेशन फील हो रहा है और पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जो है जरूर कंसल्ट करें, इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बहुत सारी बातें और भी जानेंगे डायबिटीज से जुड़ी हुई, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल और हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसवी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. डायबिटीज जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया में है लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही आंकड़े हैं और डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है भारत को. इस वजह से इस प्रॉब्लम पर चर्चा करनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है और हम जो आज बात करें हैं वो डायबिटीज के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करें हैं. डायबिटीज को कैसे समझें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे जानें और कैसे अपनी बॉडी को फिट रखें डायबिटीज होने के बाद भी. हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर तारिक. डॉक्टर तारिक, डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं आपने अभी बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये किसी भी एज में हो सकते हैं. इसका एज से कोई अब मैटर जो है वो ज्यादा रहा नहीं गया है लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जब डायबिटीज की बात करते हैं तो कैसे जो है कौन से टेस्ट हैं जो कराए जाएं. अगर किसी व्यक्ति को कुछ फील हो रहा है कि हाँ उसे डायबिटीज हो रही है तो वो अपने आप कैसे चेक करें और साथ ही जब डायबिटीज हो जाती है तो रेगुलरली कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कराने चाहिए. तो डायग्नोस्टिक्स पे ज्यादा मैं ध्यान देना चाहूंगी इस वक्त.
1: डायबिटीज अगर आप घर पर हैं तो आपको लग रहा है ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं. जैसे एक तो हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं खाली पेट, तो उसके लिए 8 घंटे का आपको फास्टिंग होना जरूरी है. तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं क्योंकि रात में हर कोई फास्टिंग में रहता है. तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं. अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज. एक होता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज या पोस्ट पेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज. अगर ये 200 से ज़्यादा आ रहा है तो ये भी एक डायग्नोस्टिक है डायबिटीज का. एक जो टेस्ट है HbA1c, ये अगर 7 से ज़्यादा अगर जा रहा है, ये घर पर तो नहीं कर सकते, ये लैब में करते हैं हम लोग, तो वो भी एक डायबिटीज मेलिटस का डायग्नोसिस और टेस्ट है.
0: ओके, यानी ये जो टेस्ट है हम नॉर्मल जो हमारे पास एक मशीन होती है शुगर चेक करने की, अगर उसमें फास्टिंग चेक कर लेते हैं तो भी हमें आइडिया मिल जाएगा.
1: जी. और इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट है, मैं आपको वही बता रहा था कि बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि वो डायबिटीज़ है, तो अगर डायबिटीज़ है तो हम कुछ टेस्ट और करते हैं जैसे क्रिएटिनिन लेवल, क्योंकि पेशेंट बहुत टाइम से क्या होता है कि वो डायबिटीज़ रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता, तो उसका बहुत सारा बार क्या होता है कि किडनी पर भी इफेक्ट पड़ जाता है. तो इसलिए हम किडनी पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई नहीं हुई, किडनी पर इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए हम ये सब टेस्ट करते हैं.
0: जी जी, यानी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं. डॉक्टर साहब, एक डायबिटिक पेशेंट है, अब उसको किसी ने डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट कर ली, तो वो दवाई उसे रेगुलर खानी है और खाना खाने से पहले खानी होती है, जनरली ये होता है, या इंसुलिन है तो खाना खाने से पहले उसे लगाना होता है. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसके अलावा उनको और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ में.
1: देखो, डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर दो टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं. एक तो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं. नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में तो जो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने के चांस बढ़ जाते हैं. एज के साथ साथ तो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है एज के साथ साथ डायबिटीज़ के चांस होने के चांस बढ़ जाते हैं. और दूसरा जो फैक्टर होता है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और तो उसमें डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं. दूसरा रिस्क फैक्टर होता है डाइट, जो ये शुगर हुआ या फिर सोडा स्वीट्स वगैरह होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल चल रही हैं, बहुत लोग पीते हैं इन सब चीज़ों से भी, मतलब ये प्रोसेस फूड हुआ, ये सब डायबिटीज़ के चांस इसमें बढ़ जाते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, ये इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं.
0: जी, यानी लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं इसको. हाँ. और ये लाइफस्टाइल अगर खराब होगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती
1: है. यहाँ तक कि हम लोग ये भी करते हैं कि अगर सपोज कर किसी को डायबिटीज हो गई है तो सबसे पहले हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं. अगर लाइफस्टाइल, बहुत कुछ लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो वो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं.
0: जी.
1: अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं हुआ तब जाके हम मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे ये दवाई शुरुआत करते हैं. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए.
0: और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, लेकिन ये है क्या, कैसे मॉडिफाई किया जाए लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफ का जो स्टाइल है वो तो एक सेट पैटर्न बन चुका है, लेकिन इसमें क्या बदलाव जरूरी है खाने में और अपने डेली रूटीन में, वो सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर तारिक से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
3: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ। ना इज्जत

महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल और हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और हम बात करें आज डायबिटीज के बारे में. डॉक्टर तारिक हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन SSP हॉस्पिटल फरीदाबाद में. और हम बात करें हैं डायबिटीज के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए हम बात करें क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है और वो ये दावा करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी. यानी रिवर्स मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी. जो डायबिटीज हो चुकी है वो वापस नॉर्मल होने लग जाएगी. बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है? क्या डायबिटीज एक बार रिवर्स होने के बाद वापस नहीं आती? आइए जानते हैं डॉक्टर तारिक से. तो डॉक्टर तारिक, डायबिटीज रिवर्सल के बारे में हमने इंटरनेट पर हजारों रील्स देखी हैं. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है जैसे ही आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा या जैसे ही आपका रूटीन चेंज होगा. सो क्या है इसके पीछे का सत्य, हमें थोड़ा सा बताइए.
1: देखो, डायबिटीज में एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है. जो डायबिटीज से जस्ट पहले की जो कंडीशन होती है उसमें डायबिटीज होती नहीं है, वो रिवर्सिबल हो सकती है, वो हो भी जाती है. लेकिन एक बार डायबिटीज हो गई तो वो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है. इंडिया में बहुत एक कॉमन मिथ है, बहुत लोग हैं वो क्या करते हैं, दवाई खाते हैं और वो जो उसकी फिर शुगर कंट्रोल हो जाती है. वो जो कंट्रोल है वो दवाई की वजह से है. वो सोचते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल हो गई तो इसलिए वो दवाई छोड़ देते हैं, फिर से बाद में वो प्रॉब्लम के साथ आते हैं और डैमेज हो जाते हैं मतलब बॉडी. तो इसलिए डायबिटीज अगर एक बार हो गई तो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है. तो इसे अपनी दवाई प्रॉपर लें. मेरे एक यही सजेशन है, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट
0: कंट्रोल
1: बहुत जरूरी है और दवाई प्रॉपर टाइम से लेना चाहिए. तो डायबिटीज रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल है.
0: डायबिटीज को रिवर्स करना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है जो ये दावा कर रहे हैं. बेसिकली आप जब तक वो सारी चीज़ें खाते पीते रहेंगे जो ठीक ठाक आपकी डायबिटीज़ को रख सकती हैं तो ठीक है, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो डायबिटीज़ वापस आ जाएंगे. तो बेसिकली ये रिवर्स नहीं है, कंट्रोल्ड है. तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपने जिक्र किया कि दवाई तक जो है आप रोक सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दिया है, जो पहले चीज़ें खराब थी उनको बेहतर कर दिया है. तो क्या है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटीज़ के पेशेंट

0: के लिए सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या पे बात करेंगे।
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है एक्सरसाइज।
0: जी,
1: एक्सरसाइज डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज करनी कितनी है ये भी है, तो 150 मिनट पर वीक।
0: Okay.
1: और आप अगर देखा जाए तो आप 30 मिनट पर डे के हिसाब से हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि आपको रोज करनी है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो और आधा घंटा रोज कर रहे हो तो ये काफी है,
0: काफी है
1: डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए।
0: ओके, यानी अगर आप आधा घंटा डेली एक अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो काफी हद तक आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं।
1: दूसरी चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट। डाइट में मैंने अभी आपको वही सब बताया था कि एक तो जितने भी ये मीठी चीज है जैसे शुगर हुआ और कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड, इन सब चीज को अवॉइड करना है। ये इसमें ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनकंट्रोल्ड रहती है। तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया था अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ को अवॉइड करना ये बहुत ज़रूरी है, और अपना मेडिसिन टाइम पर ले तो उससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाती
0: है। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे जब हम डाइट की बात करते हैं, आपने कहा कि प्रोसेस फूड नहीं खाइए, बहुत सारे लोग जो हैं वो नमकीन खाते हैं पैकेट में जो मिलती है और कहते हैं ये तो नमक है, ये तो मीठा नहीं है, हम बिस्किट तो नहीं खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव?
1: हाँ, जो नमकीन के अंदर नमक होता है, नमक से बीपी बढ़ता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज। तो और दूसरी चीज ये होती है, जो नमकीन वगैरह जो होती है इसमें सब में प्रिजर्वेटिव, ये प्रोसेस फूड होती है, ये भी एक डायबिटीज, इससे भी मतलब एक अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को, और जितने भी प्रोसेस फूड आ रहे हैं वो सब हुआ सोडा, लाइम और ये स्वीट्स और आइटम्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ के लिए।
0: जी बिल्कुल, यानी अगर आप कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो बिस्किट है चाहे वो नमकीन है, अब आप सोच रहे हैं कि आप डायबिटिक हैं तो आप नमकीन खा रहे हैं या नमकीन बिस्किट ले रहे हैं, बट एक्चुअली में इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनमें एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं, इनमें शुगर कॉन्टेंट भी होता है। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं तो पीछे ज़रा उसके थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लीजिए, जो चीज़ सबसे ऊपर लिखी होगी वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और जो चीज़ सबसे नीचे लिखी होती है वो सबसे कम मात्रा में होती है। जनरली इनमें भी एसिडिटी रेगुलेटर और शुगर होती हैं जो कि मेंशन होती हैं, सो उसकी परसेंटेज देखिए और अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, सिर्फ थोड़ी देर का टेस्ट है जो कि कुछ मिनट में गायब हो जाता है। तो बहुत सारी और भी बातें हम जान रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, कुछ एक्सरसाइजेज और जानेंगे डॉक्टर तारिक से, और साथ ही जानेंगे कि डायबिटीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए और हमारी बॉडी तक ना पहुँचे इसके लिए क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पर से अगर जेनेटिक कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही हैं।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और हम बात करें आज डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत सारे घरों में है और इसे कंट्रोल करने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, इंसुलिन, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो डॉक्टर से एडवाइस लेना बेहद जरूरी है। खुद के डॉक्टर खुद ना बने, खासतौर पर ऐसी चीजों में। हमारे साथ आज डॉक्टर तारिक हैं जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर तारिक, बहुत सारी बातें आप कर चुके हैं, आपने बहुत सारी एडवाइस भी दी हैं, लेकिन अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में, कुछ ऐसे मिथ होते हैं या फैक्ट्स होते हैं जिन पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें एडवाइस करें। क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? लोगों के दिमाग में होता है कि जितनी चीनी खाएंगे डायबिटीज़ के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, बट वी हैव सीन पीपल जो पुराने ज़माने के हैं आज भी दो चम्मच चीनी चाय में डालकर ले रहे हैं पर डायबिटीज़ उनको नहीं है, तो क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है?
1: चीनी खाने से डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीनी है इस आजकल तो हम उन स्लो पॉइजन की तरह बोलते हैं, कहते हैं, तो अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं भी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। चीनी की जगह आप जैसे गुड़ वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर डायबिटिक नहीं हो। और जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो पहले से ही अपना रेगुलर एक्सरसाइज, ये चीनी वगैरह, वो सब मैंने आपको बताया था, प्रोसेस फूड वगैरह, इन सब चीज़ को अवॉइड करें तो वो कंट्रोल कर सकते हैं अपना आपको डायबिटीज़ ना होने पहले से ही, मतलब अपने रिस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं अगर वो अपने ये सब चीज़ों को ध्यान रखें।
0: जी, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ अचानक से लो हो जाती है और अचानक से हाई भी हो जाती है, जब फ्लक्चुएशन होती है तो क्या करना चाहिए?
1: फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हैं। एक सपोज़ करो कि पेशेंट डायबिटिक है और मेडिसिन ले रहा है, तो वो क्या बीच बीच में अगर आप कोई अपना खाना मिस कर देते हो, आपने मेडिसिन ली है, खाना मिस कर दिया, तो फिर वो लो हो जाएगा, या फिर आपने अपने खाने का जो टाइम तो ड्यूरेशन थोड़ा सा लेट खाया हो तो उसकी उसमें भी उस केस में भी शुगर लो हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि मेडिसिन ले रहे हो आप फॉलोअप में नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, तो बीच बीच में ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस वजह से भी सपोज़ करो डोज ज़्यादा हो गई तो उसमें केस में भी डायबिटीज शुगर जो होता है ये लो हो जाती है। तो इसलिए आप प्रॉपर खाना लो, टाइम टू टाइम खाना लेना है और अपना रेगुलर डॉक्टर से फॉलो आपको करना है।
0: कितनी लो शुगर खतरनाक हो सकती है?
1: 70 से नीचे तो नहीं जानी चाहिए, 70 to 80 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और उसमें शुगर लो होने की वजह से बेहोश होने का खतरा रहता है। और रात में आप सो रहे हो और रात में एक काफ़ी लंबी रात होती है तो उसमें खाना बीच में नहीं खाते, दिन में तो हर 6 घंटे 8 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, रात में जब सो जाते हैं तो एक तो खाने नहीं कुछ खाते नहीं सोते हैं तो इसलिए लो रहती है, दूसरी बात ये सोते पता नहीं चलता, तो रात का जो शुगर लो होना वो बहुत डेंजरस होता है,
0: तो रात को अपनी चेक करके अगर आप सोएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और थोड़ा खा के सोएं।
1: जी।
0: और हाई की अगर मैं बात करूं, अब हाई हो गई है क्या उसको किसी तरीके से जल्दी लो किया जा सकता है इंसुलिन या मेडिसिन के अलावा भी अगर हाई हो रही है किसी की शुगर?
1: नहीं, हाई का अगर पेशेंट का अगर शुगर लेवल हाई जा रहा है तो बेहतर तो ये है कि डॉक्टर के पास जाकर अपना मतलब दिखाएं, क्योंकि कितना हाई हो रहा है और वो उसी हिसाब से मेडिसिन उसी एडजस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है सपोज़ करो 400-500 तब तो हम लोग फिर उसको इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं, और अगर थोड़ा बहुत हाई जा रहा है तो फिर हम उसी हिसाब से उनको मेडिसिन एडजस्ट करते हैं उसको।
0: जी बिल्कुल। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके घर में अभी तक डायबिटीज़ नहीं आई है, कैसे खुद को ठीक ठाक रखें, और अगर इनके घर में किसी के घर में डायबिटीज़ है भी तो भी कैसे ठीक रखें?
1: मेरी यही एडवाइस है, तो एक तो अपना लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने में जो भी मैंने बताया प्रोसेस फूड वगैरह ये स्वीट्स आइटम वगैरह इसको अवॉइड करो, आप खाने में सब्जी फल फ्रूट्स या जो भी घर में आप हेल्दी डाइट है उसको मतलब यूज़ करें, और इसके अलावा प्रॉपर अपना डॉक्टर से फॉलोअप करें, मेडिसिन लें प्रॉपर, और दूसरी बात ये कि मेडिसिन अपना अपना छोड़ें, जो भी मतलब वो डिसीजन लेना वो डॉक्टर के जो डॉक्टर एडवाइस करे उसको ही फॉलो करें, अपने आप कुछ ना करें।
0: जी, अपने आप दवाइयां खुद ना शुरू करें, डॉक्टर से मिलकर ही, उनसे परामर्श लेकर ही दवाइयां जो हैं वो स्टार्ट करें या बंद करें। सो डॉक्टर तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और डायबिटीज से जुड़ी हुई जानकारी आपने दी। थैंक यू। सो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी भारत में रह रहे हैं। बहुत सारी खूबियाँ इस देश में, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ की तरफ ध्यान हम ज़रा कम दे रहे हैं। या तो आपको वो वर्ग मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा जिम जाता है, हेल्थ का ख्याल रखता है, या फिर वो वर्ग भी मिल जाएगा जो बिल्कुल कभी एक्सरसाइज करता ही नहीं है। तो आप इन दोनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये ज़रूर देखिएगा, और अपनी हेल्थ को ठीक रखने के बारे में थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिएगा। फिलहाल बहुत सारी बातों के बाद उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और सुनते रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था, और साथ ही PCOD, हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
5: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
4: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
5: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
4: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
5: जी,
4: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
5: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपने हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
4: जी।
5: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
4: जी।
5: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
4: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
5: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूँ एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूँ. तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4.5 साल.
6: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही है. मतलब बहुत उम्दा मैं कहूँगी आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग. वो तो देखकर ही आपको लग रहा है. सो उस टाइम पे आपका क्या कितना वेट था?
5: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं. और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो. तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर. और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई. तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूँगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे. तो वो 78 kg का मार्क मुझे याद है. और एट द एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 kg पे थी.
6: वाओ, सुपर. सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफ़र, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ. सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
5: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय. और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी. जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा. वही चीज़ हुई. डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है. और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए. तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है. तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज़ में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गोंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज ख़राब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा. लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक ज़िद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया 1.5 साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
6: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज़ के लिए भी उतनी ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
5: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरन ही देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें, मुझे लगता है, डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5-6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं. और सबसे बड़ी बात, उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s 50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं। ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अच्छा। तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं। अगर आप 20s 30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है। तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है। मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है। जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है। तो मैं कहूँगी वुमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है। मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है, पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ। तो वुमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है।
6: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है। हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ एक घंटा, और वहां पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग। सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल,
6: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की,
5: बिल्कुल।
6: बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इनटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइव्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग,
1: बॉडी अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा, यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है, और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन कोचेस
0: देखे हमने, आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखे हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करिए, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 से 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है, और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है, सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं, तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोज़ भी होती हैं, तो वो वीडियोज़ के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं, तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हॉर्मोनल मेडिकल वाइज वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन. तो वहाँ प्लान्स होता है एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज़ में गुरु होना तो बहुत ज़रूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज़. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज़ जो हैं NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर के काम, उनके बच्चे, और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प ही हो जाती है, और यहाँ पर लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ, मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपीनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%. या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा वुमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ही इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारी वुमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते. फिर भी वही हैं जो स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए, रोज़ मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं, तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा. तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरिक रिक्वायरमेंट ही कम है, अब जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि आप ट्रेन करें. ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की जरूरत है. अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहां फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी.
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं. जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे
1: जी,
0: में
1: जी,
0: बिल्कुल ही नहीं पता हमें. जिसने आपने इतनी इसमें आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी.
1: धन्यवाद.
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपकी जैसी जर्नी पर हैं। तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने 2.5 घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए या कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे 1-1.5 घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड हैं।
0: अच्छा
1: जी, और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा,
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो 5 चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो
0: जी,
1: वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलेड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा, ना दूध, ना चावल, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन पीसीओडी आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: देखो मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से, और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्ज ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो

0: हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा. ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा है घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं. तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस. और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है. अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है. आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे. मुझे भी पीसीओडी के काफ़ी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी. लेकिन देखिए यही लाइफस्टाइल, यही पांच चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ. मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो.
1: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत. मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का.
0: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है. तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है. शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है. ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि यू नो आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है. आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा. स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी. भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं.
1: जी, और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही ज़रूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
0: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें. डिपेंड करता है, कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है. कोशिश करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी जाएं. लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है, ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है. 24 घंटे हैं, मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मेंटीज, 120 मेंटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ.
1: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद ज़रूरी है.
0: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए कंसिस्टेंसी बिल्ड. लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है. हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है. एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए, और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है. सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से day 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप day 2 पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है, क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया. फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं, तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं. तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे. वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा. आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर पीसीओडी या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी.
1: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, और काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा.
0: थैंक यू गौरी.
1: सिमरन, अभी हमने बात की पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं, बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकती है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़, या फिर मिथ है?
0: नहीं नहीं ये बिल्कुल

0: बिल्कुल मिथ नहीं है. मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ एच बी ए वन सी 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है. डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं. अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, आज 7 से 8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
1: जी.
0: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है. तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
1: जी.
0: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3 महीने 6 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए. जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं. हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है. डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं. ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है.
1: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे. तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी. हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद, उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है. आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है. तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना, और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का. तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं. जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं
1: जी. मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
0: बच हैं. तो सकते हैं 100%. तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है, तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया. तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग. मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
1: जी.
0: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं. और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है. घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
1: जी. और साथियों, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट ये डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ, लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका BMR, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से BMR थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैट्यू हिट करेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें
0: जी। तो सिमरन, हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड।
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म।
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विथ फ्लेक्सिबिलिटी।
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए।
0: नाइस। एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा।
0: वाओ, सुपर, थैंक यू सो मच। तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है। सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं। तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की जी, कि बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल
0: जी।
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचेज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए, और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए। ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है। बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं
0: जी। थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे, तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, आई एम ऑल देयर टू गाइड देम। एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा।
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच, एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे। सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: हाय, आई एम दिग्मांशु धूलिया, यू आर लिस्निंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
3: तुझे भी मैं करा दूं तमन चे पे डिस्को।
4: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सर, श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज को हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। शो हमारा बहुत खास है, रेडियो मानव रचना 107.8 की एक पहल है, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग डोमेन से एक्सपर्ट्स यहां पे लेके आए, आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे ये शो आपको सर्व करता है. सो द पर्पस इज टू लेट यू नो अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स इन इजी वर्ड्स, ताकि आप समझ पाएं अलग अलग प्रोफाइल्स को, अलग अलग यात्राओं को, जर्नीज को, और आपको ये पता लगे कि कुछ भी देखिए साहब इम्पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पर. लेकिन उसको थोड़ा और आसान करते हुए हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ प्रोसेस जिसमें आपकी हेल्प होती है जानने में कि एग्जैक्टली कोई भी चीज़ काम कैसे करती है. जैसे आज का हमारा शो होने वाला है मिलिंद के साथ. मिलिंद कपूर नाम है इनका, और ये एक्चुरीज डिपार्टमेंट, जिसका ऑफिशियल नाम एक्चुरियल साइंसेज होता है, जिसमें बेसिकली इंश्योरेंस में जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो जो रिस्क इवैल्यूएशन होता है वो काम करता है ये डिपार्टमेंट. पॉलिसी एग्जैक्टली कैसे बनती है तो आज उस एक डोमेन की बात करेंगे, क्योंकि पहले कभी हमने उस डोमेन की बात नहीं करी है. सो आज का शो अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है. हमारे साथ है मिलिंद, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे मिलिंद का. हाय मिलिंद, वेलकम टू आवर शो.
5: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर.
4: It's a pleasure to have you here. So first question would be about your journey. Please take us through the journey and tell us about ki exactly kaise strike hua, kya kya kya laga aisa ki yaar actuaries mein jana hai.
5: तो सागर, मैं ना अपनी स्कूल लाइफ से स्टार्ट करना चाहूँगा. मैं हमेशा से स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाता था. मैं टेक्निकली मैथ्स में बहुत स्ट्रांग था, तो हमेशा मेरे को एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, ये मेरी हमेशा से स्ट्रांग थी. तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन दैट एरिया, बट मेरे को कभी पता नहीं था कि कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ पर मैं ये सब एक साथ कर सकूँ. उस टाइम पर CA, इंजीनियरिंग, ये सारा ज़्यादातर फेमस था, एंड इवन मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं CA करूँ, बट मैं CA करना नहीं चाहता था, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था. तो आई एम ग्लैड कि मैं ट्यूशन कोचिंग लेता था वहाँ पे, तो एक सर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि उनकी वाइफ एक्चुअल साइंस में कर रही हैं, एंड गिवन दैट आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो वाई डोंट यू

0: और इट। तो अगेन उन सर को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, तो मैं गया घर पे, मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने गूगल किया, तो गूगल पे एक लाइन आई, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो एक्चुअल साइंस में होती थी। तो फिर मैंने उसके बारे में और स्टडी करा कि इसमें होता क्या है। उसमें बताया गया कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में आपको नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, आपको बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के बारे में नॉलेज बढ़ती है कि आपके इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी लेते हो तो उसका प्रीमियम प्रीमियम कैसे सेट होता है, वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्क है कि कब आपको क्लेम पे आउट करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सारा रिस्क इवैल्यूएट करना होता है कंपनी के लिए। तो इस सब ने मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी जगाया कि रिस्क के बारे में जानना, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर। ऑल दो अगेन सर्टेनिटी से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट देयर इज समथिंग अबाउट इट कि आप पैटर्न्स पढ़ सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो। तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइव करा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्चुअल साइंस, एंड मैंने माइंड में बना लिया कि ठीक है मैं एक्चुअल साइंस करूँगा। मैंने 11th 12th में कॉमर्स विद मैथ्स लिया, मैंने वहाँ से आगे कंटिन्यू करा। नाउ माई एम वॉज कि मैं बी कॉम ऑनर्स करूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड कि एक्चुअल साइंस आई हर्ड कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स होने वाला है, डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है, लॉन्ग जर्नी होने वाली है। तो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आई हैव अ बैकअप इन माई माइंड एज वेल। अगर कल को मैं एक्चुअल साइंस में नहीं कर पाता तो आई नीड समथिंग दैट इज़ बैकिंग मी। तो आई टुक बी कॉम ऑनर्स, आई स्टार्टेड, एंड देन कॉलेज में ही द बेस्ट थिंग अबाउट एक्चुअल साइंसेज कि यू कैन स्टार्ट इवन आफ्टर 12th। देर इज़ नो नीड कि यू हैव टू हैव ग्रेजुएशन फर्स्ट और एनीथिंग लाइक दैट, आप कॉलेज के साथ ही उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉलेज टाइम में ही मैंने फर्स्ट ईयर में एज अ नॉन मेम्बर एक्चुअल साइंस का एक एग्ज़ाम दिया भोपाल जाके, एंड आई वॉज ग्लैड कि वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया पहला, एंड फिर मैंने उसकी मेम्बरशिप ली, एंड देन मैंने धीरे धीरे उसकी स्टडीज़ करना शुरू करी। तो विद इन द कॉलेज ग्रेजुएशन पीरियड इटसेल्फ 3 साल में मैंने 4 पेपर क्लियर कर लिए थे, एंड देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई हैड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब्स। तो वहाँ से फिर मैंने जॉब्स देखना शुरू करा। तो दिस इज़ वन थिंग दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम सी ए इज़ दैट कि अगर आप सी ए कर रहे हो तो आपको पहले सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, देन इन दैट आर्टिकलशिप आप एक कंपनी में जाते हो, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, एंड देन फाइनल एग्जाम्स देते हो, एंड देन यू लुक आउट फॉर जॉब्स। एक्चुअल साइंस का ये भी मेरे को एक बेनिफिट लगा कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता हूँ, पेपर क्लियर कर सकता हूँ। और एक्चुअल साइंस में क्या होता है, एज एंड वेन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, एज एंड वेन यू क्लियर एग्जाम्स, कंपनी आपका इंक्रीमेंट करती है फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम क्लियर। आपका पे उस बेसिस पे होता है। तो दैट रियली मोटिवेटेड मी कि ठीक है लेट्स गो हेड एंड डू दिस कोर्स। इनिशियली थोड़ा टफ था, बट धीरे धीरे आई गॉट द हैंग ऑफ इट। मैं थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स लगाए बिकॉज मैं कॉलेज के साथ कर रहा था, तो कॉलेज की स्टडीज़ भी थी, एक्चुअल साइंस के एग्जाम्स भी थे, तो आई मेड श्योर कि मैं दोनों को इक्वली टाइम दे पा रहा हूँ। नाउ हमने अच्छी बात तो कर ली कि आप जॉब के साथ पेपर्स भी कर सकते हो, बट इट कम्स विद अ चैलेंज एज वेल, बिकॉज नाउअडेज एवरीवन नोज कि जॉब्स कितनी चैलेंजिंग है, कितनी टाइम कंज्यूमिंग है। तो यू नीड टू मेक श्योर यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर स्टडीज एज वेल। मैं थोड़ा एक्चुअल साइंस के बारे में भी बता देता हूँ। एक्चुअल साइंस में टोटल 13 पेपर होते हैं, ठीक है, यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी पेपर टू गेट बिकम अ क्वालिफाइड एक्चुअरी, ठीक है। अनलेस अंटिल यू हैव क्लियर 13 पेपर्स यू आर अ स्टूडेंट एक्चुअरी और अ पार्ट क्वालिफाइड एक्चुअरी। एक्चुअल साइंस करने के 2 मीडियम्स हैं एटलीस्ट इन इंडिया, 2 अवेलेबल हैं मेजरली। वन इज़ IFOA, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, UK बेस्ड, ठीक है। वहाँ से आप कैसे कर सकते हो, आप इधर यू कैन टेक अ मेम्बरशिप फॉर देम। उसके लिए आपके क्राइटेरिया होता है कि आपके मैथ्स में इन 12th 90% एंड अबव मार्क्स आ रखे हैं, एंड आप इंग्लिश मीडियम स्टडीज़ करी हुई हैं आपने, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप, गेट द मेंबरशिप एंड स्टार्ट गिविंग राइटिंग एग्जाम्स, ठीक है। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे इज़ कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कोर्स कम्प्लीटली, तो वट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव फर्स्ट पेपर एज अ नॉन मेम्बर, कि मैं पेपर दे के देख लेता हूँ यार मेरा क्लियर होगा तो मैं मेंबरशिप लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। तो एज अ नॉन मेम्बर आप पेपर दे के देन यू कैन टेक अप मेंबरशिप। एक हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट भी है विच इज़ कॉल्ड IAI, इंस्टीट्यूट एंड एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, तो वो भी सेम चीज़ एक्चुअल साइंस के एग्जाम्स ऑफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट विच इज़ कॉल्ड ESET। आप वो एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, वो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आपके लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, ये सब इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं. यू क्लियर दैट एग्ज़ाम, देन यू कैन टेक अप मेंबरशिप फॉर IAI एंड आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यही दो इंस्टीट्यूट हैं जो एक्चुअल साइंस करवाते हैं, देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन इंस्टीट्यूट्स दैट आर बींग फॉलोड अमंग अदर एक्चुअल स्टूडेंट्स. ठीक है, एक्चुअल साइंस देर आर ऑप्शंस कि आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, आपको कोचेस भी मिलते हैं, लाइक आजकल एक्टेड है, वो अपनी वीडियोस पब्लिश करते हैं ऑन पेपर्स एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. देर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल थ्रू आउट मतलब स्टेट्स, लाइक इंडिया में, मतलब दिल्ली में है, मुंबई में है, अदर स्टेट्स में भी है, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कोचिंग भी ऑफर करते हैं फॉर ऑब्वियसली अ पर्टिकुलर फी. तो दिस इज अबाउट द एक्चुअल साइंस कोर्स. और ओके, सो नाउ इन एक्चुअल साइंस द पेपर्स आर डिवाइडेड इन सर्टेन लेवल्स. ठीक है, फर्स्ट इज योर CP सीरीज विच इज कोर प्रैक्टिसेस, सॉरी CM सीरीज फर्स्ट, देन CP सीरीज, देन SP सीरीज एंड फाइनली SA सीरीज. इन CM सीरीज यू हैव टू क्लियर 6-7 एग्जाम्स एंड देन सॉरी CP सीरीज में देर आर 3 एग्जाम्स, SP में 2 विच मेक्स इट 5 एंड SA में 1 दैट इज 6 एंड टोटल CM में देर आर 7 एग्जाम्स. सो दैट इज हाउ यू वॉन्ट टू क्लियर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग देर इज इन एक्चुअल साइंसेज कि देर इज नो लिमिटेशन ऑन एनी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, देर इज नो कंडीशन अबाउट दैट. बट जनरली पीपल प्रेफर टू गिव SP एंड SA एग्जाम्स ऑन अ लेटर बेसिस बिकॉज आपकी पहले बेसिक टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग हो जाती है एंड देन आप वो थियोरेटिकल एग्जाम्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ वो आप लेटर ऑन देना चाहते हो. सो दैट इज हाउ इट इज जनरली फॉलोड.
1: ओके, सो मिसिंग दो तीन सवाल है मेरे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज अगर मैं एक्चुअरीज की बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्योंकि इस टाइम जो लोग हमें सुन रहे हैं ऑब्वियसली बात है उनमें से मैं सब अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग या शायद सारे लोग एक्चुअरीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे. ठीक है, उनके लिए बहुत एलियन टर्म है. कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअरीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्या स्किल सेट ऐसा होना चाहिए, क्या क्या वो USP होती है इंसान की जो उसको बोलता है कि हाँ यार ये इसमें ये चीज़ है ये एक्चुअरीज के लिए जा सकता है.
0: ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक किस चीज की टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए. वन इज कि मैथ्स, आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर द की थिंग्स जो कम आती हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ नॉट स्ट्रांग अ पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम कि कई बार क्या होता है कि स्कूल में बच्चा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं होता, बट इवेंचुअली दे ग्रो अप, उनका माइंड ऐसा होता है कि दे आर क्यूरियस अबाउट इट, दे वॉन्ट टू डू गुड इन दोज थिंग्स. तो इवन इफ देर इज अ स्लाइट इंटरेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दे शुड गो अहेड फॉर इट. देन अनदर थिंग इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स आती है एंड अकाउंटिंग आती है. तो दीज टू थिंग्स अगर इन में से किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल सेट है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उनका इंटरेस्ट इस एरिया में है, तो दे शुड डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट. ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अपनी बात करी, मेरा एनालिटिकल माइंडसेट था, मेरे को चीज़ें एनालाइज करना, लॉजिकल थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करता था, नंबर से बहुत इंटरेस्ट था, मैं सुडोकू खेलना मेरे को बहुत पसंद है. तो ऐसे अगर नंबर से खेलना या कैलकुलेशंस करना, स्टैटिस्टिकली सोचना कि इस अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इससे फाइनेंशियली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ऐसी कुछ स्किल्स हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली एक्चुअल साइंस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज टू गो इन.
1: ओके, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. मृंदा हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक्चुअल को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. फर्दर और कुछ चीजें हैं जो यहां पर हम डिकोड करेंगे, बट विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं आरजी सागर शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान यहाँ पर मिस्टर मिलिंद कपूर एक्चुअरीज डिपार्टमेंट से आते हैं, एक्चुअरियल साइंस उसका ऑफिशियल नाम है। और यहाँ पर हम उसे एक डिपार्टमेंट को, उसे एक पर्टिकुलर डोमेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प ही हो सकती है अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक कि यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर लाइफ। सो वी आर हियर ट्रिगरिंग योर क्यूरियोसिटी ताकि आपको ये पता लग सके कि अगर आपके पास ये वाला स्किल सेट है सो यू माइट थिंक ऑफ दैट डिपार्टमेंट एक्चुअरीज, क्योंकि बहुत कम इसके बारे में बात होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है जो एक्चुअरीज में तो काम करता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपका जॉब डोमेन है, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन मेरी और मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो अप्लाई होता है, विच इज रिस्क इवैल्यूएशन। यू डू दैट पार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस डोमेन, बट आई वॉन्ट टू नो वट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला। लाइक अगर मैं ये बात करूँ कि मेरे को अपनी लाइफ में रिस्क कैलकुलेट करना है, हाउ कैन आई डू दैट?
1: सो सागर बेसिकली क्या होता है ना कि यू थिंक ऑफ इवेंट्स दैट कुड हैपन, ठीक है। रिस्क इवैल्यूएट करने का सबसे मेजर रीजन यही है कि आप रिस्क मिटिगेट करना चाहते हो कि यार मैं इस सिचुएशन में ना हूं, इससे बेटर मैं पहले ये करके रख लेता हूं। तो जनरली रिस्क इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ यू डोंट क्वांटिफाई द रिस्क कि इतना मेरा रिस्क होने वाला है। यू थिंक अबाउट कि हाउ कैन आई मिटिगेट द रिस्क और व्हाट रिस्क कैन हैपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर ड्राइविंग, यू थिंक कि यार मैं जा रहा हूँ, देयर कुड बी चांसेस आई मेरे को इमीडिएट ब्रेक्स लगाने पड़े, तो यू टेक रिस्क मिटिगेशन, आपने सीट बेल्ट लगा ली, ठीक है। यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्पीड लिमिट, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ रिस्क मिटिगेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक ऑफ, ठीक है। जनरल डे टू डे एनवायरमेंट में देर आर वेरियस रिस्क दैट अब इन इंडिविजुअल कैन अब कम अक्रॉस, तो आपको जस्ट ये सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन दिस सिनेरियो, तो इस सिनेरियो में मेरे को क्या करना है कि मैं वो अवॉइड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनीज की भी बात करूं, तो कंपनीज कैसे रिस्क इवैल्यूएट करती हैं? कंपनीज रिस्क इवैल्यूएट करती हैं कि यार ठीक है, मेरे को आज मान लो मेरे को 10 लोग, मैं एज्यूम करता हूँ कि इस साल मेरे 10 लोग मर जाएंगे, मेरे को उनको क्लेम पे आउट करना पड़ेगा। तो कंपनी सोचते हैं कि यार मैं 10 तक क्यों सीमित रहूँ, क्या पता कोई पैंडमिक हो जाए, कोविड हुआ था जैसे, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, उसको एज्यूम करते हैं कि हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है, 10 नहीं 100 हो सकता है। तो इस केस में अब उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनके लिए सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि वो एक साइड पे पैसा एक्स्ट्रा बना के रखें अपने पास कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो चीज़ को मीट कर सकें, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है लोग ज़्यादा मरें। आपने देखा आजकल मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन चल रही है, हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में रिटर्न्स कम है, मार्केट डाउन जा रही है। तो इस केस में अगेन कंपनी ने कहीं पे पैसा लगा रखा होगा, उनका कंपनी को पैसा भी वापस रिटर्न जो है वो कम मिल रहा होगा, बट उनको पॉलिसी होल्डर जो है उसको तो एक अमाउंट फिक्स कर रखी है उन्होंने कि आप अगर आपका अगर क्लेम आएगा तो मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा। तो वो कैसे मीट करना है? अगेन उन्होंने कुछ पैसा उसके लिए साइड रखा हुआ है कि अगर मेरी मार्केट डाउन जाती है तो मेरे को फिर भी इतना पैसा देना होगा, तो इतना पैसा मैं अलग से उस चीज़ों के लिए रखता हूँ। ऐसे अलग अलग रिस्क कंपनी कंसिडर करती है और उसके बेसिस पे फिर वो आगे अपना फ्यूचर प्लान करती है।
0: ओके, एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते टाइम जब आप एक स्क्रैप से बना रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू कीप इन माइंड? किन पैरामीटर्स पे आप उसको तोलते हो कि यार ये पॉलिसी मैं बनाऊंगा, इसका इतने सम अश्योर्ड पे इतना प्रीमियम होगा, एट द सेम टाइम कितना रेशो यहाँ पर आपके सामने स्टैट्स का होता है कि यार ये पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में प्रेडिक्शन इतना हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसमें बहुत हद तक शायद ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक रोल प्ले करता होगा कि इतनी पॉलिसीज बिकनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं नंबर्स?
1: तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज और सारी कंपनीज वर्क करती हैं, हमने सबने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सुना हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, कि मेरे को कंपनी ये लॉन्ग टर्म चलानी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कंपनीज क्या एम करते हैं कि उनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली जब भी एक पॉलिसी बिल्ड हो रही होती है, ठीक है, तो जैसे आपने बोला बिल्कुल सही कि एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ पॉलिसीज दे हैव टू मेक श्योर कि इतनी पॉलिसीज ऑन हो, क्योंकि जो उस पॉलिसी को बनाने में पैसा लगा है, सब कुछ लगा है, वो तो एटलीस्ट रिकवर हो, राइट। तो उसके लिए एक लिमिट होती है डेफिनेटली। बट देन जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, जनरली हमारे यहाँ पे फेमस प्रोडक्ट्स क्या हैं कि एक पर्टिकुलर, या तो आप टर्म में अगर आपकी डेथ होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, या फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टर्म कंप्लीट हो गई, आप जी गए वहाँ तक, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो अब वो जीने ना जीने की चीज़ जो है उसको स्टडी करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड को हम स्टडी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। उसके अलावा क्या होता है, आप देखते हैं हमारी कंट्री में सेंसस होता है, ठीक है, हम रिपोर्ट करते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम रिपोर्ट करते हैं कि ये अब पर्सन नहीं रहे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेटा बनता है जिससे कैलकुलेट होता है कि पिछले 15 साल या 20 साल में कितने लोग मरे और कितने लोग जिंदा थे, तो एक हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है उससे कि इतने में इतने लोग मरे। तो वो चीज़, अब वो चीज़ भी उसमें ट्रेंड्स निकालने पड़ते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कंसिडर होती है एज, आप किस एज पे इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी हैबिट्स क्या है, क्या आप स्मोकर हैं, क्या आप स्मोकर नहीं हैं, ठीक है, आप ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी हेल्थ हैबिट्स थोड़ी ऑन अ वीकर साइड है, देर आर चांसेस कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, देर आर वेरियस थिंग्स, ठीक है, विच इंक्रीजेज योर मोर्टैलिटी, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर इंश्योरेंस की बात करें, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपका पोस्ट कोड काफ़ी मैटर करता है, आपका एरिया काफ़ी मैटर करता है, आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया होगा, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में चोरी बहुत होती है गाड़ी की, तो वहाँ से क्लेम आने बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स क्या हैं, आपसे कंपनीज ये पूछती हैं कि नो क्लेम डिस्काउंट आपको मिलता है, राइट, वो इसीलिए मिलता है आपको, इट्स काइंड ऑफ अ बेनिफिट टू यू। वो बेनिफिट क्यों दे रही है कंपनी आपको, क्योंकि आपकी ड्राइविंग हैबिट अच्छी है, आप स्पीड लिमिट्स फॉलो कर रहे होंगे, आप सीट बेल्ट लगा रहे होंगे, आप रेड लाइट्स फॉलो कर रहे होंगे, तो आपके एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं वाइल प्राइसिंग द पॉलिसी एंड वाइल सेटिंग अप द पॉलिसी एज वेल।
0: सो अमेजिंग। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ करी है स्मोकर। एक्चुअली इस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्मोकर या एक अल्कोहलिक इंसान जो है उसको रिस्क एवैल्यूएशन उसका कैसे होता है?
1: तो देखिए क्या होता है ना कि आपके जब ये स्टडी डेटा होता है, ठीक है, डेटा स्टडीज में अगर मान लीजिए आप 100 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं फॉर अ नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर पर्सन, ठीक है, उस पर एक फैक्टर लगाया जाता है ऊपर से कि अगर ये स्मोकर इंसान है तो इतना परसेंट इसका ज़्यादा चांसेस हैं मोर्टैलिटी होने के, मतलब इसके मरने के, ठीक है, तो इसलिए इसका इतना फैक्टर से प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये फैक्टर इज़ नॉट समथिंग दैट कंपनी एज्यूम कि ठीक है 1.2 ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ स्मोकर्स, इवन विद इन द स्मोकर्स एज वेल हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है थ्रू द ऑब्वियसली गवर्नमेंट एजेंसीज एंड वेरियस एजेंसीज कि इतने स्मोकर्स थे, इसमें से भी इतने स्मोकर्स मरे, ठीक है। अगर आप स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर डेथ्स का कंपैरिजन करेंगे, आप एक्सीडेंटल डेथ्स को हटा दीजिए, नेचुरल डेथ्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो देयर विल बी हाईली लाइकली चांसेस ऑफ अ स्मोकर पर्सन डाइंग एज कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर पर्सन। तो एक एक्चुअल साइंस में वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है जिसमें कि मोर्टैलिटी का ट्रेंड भी पढ़ाया जाता है कि एज 18 से लेके 90 या 120 एज तक कैसे मोर्टैलिटी ट्रेंड वर्क करता है।
0: ऑलराइट, और एक अल्कोहलिक?
1: अल्कोहलिक अगेन वर्क्स ऑन द सिमिलर बेसिस, बट अगेन अल्कोहल में देयर कम्स अ कंडीशन कि आप कितनी ड्रिंक कर रहे हैं, कितनी रेगुलर कर रहे हैं, विच इज अगेन केस विद द स्मोकर एज वेल। बट देन स्मोकर के केस में ये है कि आपका दो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे, आप एक्टिव स्मोकर हैं या पैसिव स्मोकर हैं, ठीक है। अल्कोहल में तो आप ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आप कई बारी तो आपने न्यूज़ में भी सुना है डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं कि हैविंग 2 pegs अ डे इज़ गुड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट इंश्योरेंस कंपनीज डोंट सी इट दैट वे, ठीक है, दे सेग्रीगेट पीपल हु आर ड्रिंकिंग टू मच एंड हु आर ड्रिंकिंग ऑन अ मिनिमल बेसिस, ठीक है। बिकॉज अगर मैं कम पी रहा हूँ तो मेरे चांसेस अगेन कम होंगे मेरे लिवर को इम्पैक्ट करने पे या कोई और बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करने पे, बट जो ज़्यादा पी रहा है रेगुलर बेसिस पे पी रहा है, तो उसके लिए पूरी स्टडीज़ करी जाती हैं, एक प्रिडिक्शंस कैलकुलेट करी जाती हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट करे जाते हैं बेसिस दैट, एंड दैट्स हाउ प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड।
0: सो अमेजिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक एक्सेस मिला है एक पॉलिसी मेकर के माइंड का, तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको डिकोड करने की। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा, हम जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील।

0: गुड फील लाइफ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ, और हमारे साथ है मिलिंद कपूर। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअलीज की, हम लोग बेसिकली रिस्क इवैल्यूएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये सब चीजें खाली इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है, याद रखिएगा, ये आपके और मेरे जीवन से भी जुड़ी हुई है, तो इनको वैसे भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम बहुत बार डिसीजन लेते हैं इमोशनली लेते हैं, जब अपने करियर चूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो इमोशंस को अपने हम प्रायोरिटाइज करते हैं। एक एक्चुअल थिंकिंग से, एक एक्चुअल थिंकर के माइंडसेट से एक नॉर्मल आदमी क्या सीख सकता है, कैसे लेने होते हैं डिसीजन सही?
1: आई थिंक इसमें एक्चुअल थिंकिंग इतनी नहीं लगेगी, बट जो चीज विद एक्सपीरियंस मैंने सीखी है एटलीस्ट, वो है पेशेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हीट ऑफ द मोमेंट में काफी डिसीजंस ले लेते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं यार, आई थिंक ये ऑप्शन अगर मैंने ली होती तो बेटर होता। एंड कई बार आई थिंक सबको लगता होगा कि वो किसी डिस्कशन में है, उन्होंने कुछ बोल दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद सोचा कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या बेटर कर सकता था। एंड आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरे को लगता है यार, मैं बाद में जो मेरे मन में आता है, मेरे को लगता है कि यार वो ही सही था, मुझे जो बाद में मैंने सोचा था वो सही था। तो ऑलवेज टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, देर इज नो हरी इन एनीथिंग, जस्ट बी पेशेंट अबाउट इट। ठीक है, लाइफ में हर किसी की टाइमलाइन अलग है, लाइफ में हर किसी के डिसीजंस अलग हैं, हर चीज अलग है, तो वी नीड टू एकोमोडेट विद आर ओन पेस। ठीक है, बट वी आर गोइंग अहेड विद, तो पेशेंट होना आई थिंक इस केस में बहुत जरूरी है।
0: सो अमेजिंग। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल जो सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड आई वुड से, कि लोगों को लगता है यार इंश्योरेंस क्यों ही लेना है, इतना गलत सोचना ही क्यों है। आपके पास क्योंकि डाटा होता है, स्टैट्स होता है, तो आप फिलोसफिकल बात नहीं करोगे, आप मेरे को जाहिर सी उम्मीद है कि आप डाटा के हिसाब से जवाब दोगे। तो आप बताइए कि कितना ये बात सही है और कितना हमें उसको सीरियस लेना चाहिए इंश्योरेंस डोमेन को।
1: देखिए, दिस इज वेरी ट्रू। मैंने फॉरेन मार्केट में भी काम किया है एंड इंडियन मार्केट में भी काम किया है, बट आई रियलाइज्ड दिस कि इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज स्टिल अनटैप्ड। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देर आर स्टिल एरियाज वेयर पीपल डोंट बाय इंश्योरेंस। ठीक है, बिकॉज आई थिंक मैं खुद एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो आई थिंक हमारी प्रायोरिटी पहले क्या रहती है, सेविंग करना, कि यार ये पैसे जोड़ लो ये तुम्हारे काम आएंगे, ये पैसे जोड़ लो ये तुम्हारे आगे काम आएंगे, तो हम वो ही माइंड सेट में रह जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है टर्म एश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्म के ड्यूरिंग अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को उसमें पैसा मिलेगा। अब लोग सोचते हैं यार अगर मैं मरा ही नहीं उस टर्म में तो मैंने जो प्रीमियम दिया वो तो मेरा बेकार हो गया, मेरे को तो पैसा मिला ही नहीं, इससे बेटर मैं एक FD कर लेता हूँ, मेरे पास एटलीस्ट वो पैसा भी है और वो चीज़ भी है। बट लोग वो ये नहीं सोचते कि जितना वो प्रीमियम दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको सम एश्योर्ड में मिलता है जनरली। ठीक है, टर्म एश्योरेंस ऐसे हेल्प करता है, बट हम एज अ फैमिली हम इंडियंस ये सोचते हैं कि यार मेरे को सेव कर लूँ, मेरे पास पैसा है वो मैं कभी भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बड़े सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम इंश्योरेंस को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आजकल आफ्टर कोविड एटलीस्ट हमने ये देखा है कि लाइफ हैज़ नो गारंटी, लाइफ हैज़ यू नो बडी कैन प्रिडिक्ट दैट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस इज वेरी मच देयर टू प्रोटेक्ट यू, योर फैमिली, योर किड्स फॉर देयर स्कूलिंग, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर वट एवर नीड्स दैट दे हैव। ठीक है, आई थिंक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ये रूल है मोटर इंश्योरेंस का कि यू हैव टू हैव कंपल्सरली मोटर इंश्योरेंस, इंडियंस गो फॉर इट, वी गो फॉर इट। ठीक है, बट अदरवाइज वी नीड

0: अप्लाई दिस रूल टू आवर कल्चर कि हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए. इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ बैकअप. ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने बीकॉम ऑनर्स करके मैंने बैकअप रखा अपने पास कि यार अगर मेरे से एक्चुअल साइंस नहीं हुई तो मैं बीकॉम ऑनर्स करके मैं सीए कर सकता हूँ, मैं सीएस कर सकता हूँ, सीएफए कर सकता हूँ, या मैं किसी भी फाइनेंस लाइन में जा सकता हूँ एमबीए करके. बट इंश्योरेंस इज सिमिलर बैकअप कि अगर कल को अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो भी जाता है तो आई हैव अ बैकअप.
1: सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बैकअप के लिए तैयार होना चाहिए. यू शुड थिंक अबाउट इट. एंड मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बहुत सारे लोग इस टाइम जो आपको सुन रहे हैं दे माइट गेट इंस्पायर्ड कि यार एक्चुअली अच्छा डिपार्टमेंट है. आई वांट टू नो अबाउट द फाइनेंस पार्ट कि सैलरीज कैसे होती हैं, यहाँ पर रेंज कितना जाता है, कैसे शुरुआत होती है. अपना बता सकें अगर आपकी कितने से आपने शुरुआत करी थी और कहाँ तक वो रेंज जा सकता है.
0: जब एक्चुअली आजकल इंडस्ट्री में फ्रेशर्स जो भी ज्वाइन करता है उनके लिए एक सेट मार्केट रेट फिक्स है. ठीक है, इट कैन रेंज बिटवीन 6 to 8 lakhs
1: पर एनम.
0: ठीक है, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स. एंड अगेन सी, ये सैलरीज बिटवीन द फ्रेशर्स इज ऑल्सो वेरी फ्लक्चुएटिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको कंपनी से इंक्रीमेंट्स मिलते हैं. नाउ इफ समवन इज जॉइनिंग विद वन पेपर तो उसकी सैलरी कम होगी एज कम्पेयर टू समवन हु इज जॉइनिंग विद 4 papers. राइट, क्योंकि उसको 3 paper का इंक्रीमेंट साथ में ही उस समय एज अ फ्रेशर भी मिलेगा, उसका बेनिफिट होता है. आपके जितने ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर हैं उसका सैलरी में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा. बट देन अगेन एज अ फ्रेशर वी नीड टू मेक श्योर कि हम ओवर क्वालिफाइड भी ना हो जाएं. क्योंकि कंपनीज भी उनको हायर करती है कि 4 paper क्लियर हो, 5 paper क्लियर हो एट मैक्स एज अ फ्रेशर उनको हायर करती है, बिकॉज दे माइट बी एबल टू गेट अ पर्सन विद लेसर पेपर एंड वो ड्यूरिंग द जर्नी उनके क्रिएट करेगा अपने एग्जाम्स, तो उनको ड्यूरिंग द जर्नी पे करना पड़ेगा, नॉट एट इनिशियल फ्रंट एज वेल. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग. मैं बात करूँ तो खुद की, तो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था एंड आई स्टार्टेड विद 4.5 lakhs पर एनम एंड आई हैड 4 exams क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नाउ डेफिनेटली इन्फ्लेशन इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर, तो प्राइसेज हैव इंक्रीज. बट या, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द पेपर्स दैट हैव क्लियर्ड.
1: और मैक्सिमम इंडस्ट्री में मैक्सिमम रेंज कितना जा सकता है इसमें?
0: ऑनेस्टली मैक्सिमम रेंज का आई डोंट हैव एनी आइडिया एट द करेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जनरली सैलरीज आर नॉट दैट मच डिस्कस्ड. बट आई थिंक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वट वी फील इज कि आई थिंक देयर माइट बी पीपल हु मस्ट बी अर्निंग 1 crore और पर एनम, समथिंग लाइक दैट. बट हाँ, अगेन with increasing fluctuations in the interest rates and inflation and everything, these rates are going up and up and competition is severe in the market. ठीक है, competition ऐसा है market में कि if one person leaves a job from one company, their replacement is already available. ठीक है, and I think at current point of time lots and lots of people are taking up actuarial science as well. So that is why, because of that, companies are getting cheaper options as well, because everyone wants to get a job. So these salary rates are quite fluctuating.
1: Can AI isko affect kar sakta hai? How AI is helpful and is it a competition? Kya kabhi replace kar payega actuarial science ke professional ko AI?
0: I don't think wo replace kar sakta hai, but AI so far has been aiding our journey throughout. And since AI is also new, AI is evolving, we are also evolving with AI. Definitely there are certain processes jo AI easier kar deta, like you have to do some analysis, you have to think about something, you can get that AI to do that for you. ठीक है, आपने AI का point raise kara, I think this is very beautiful point. People should need to know what prompts to put it into AI. बिकॉज ए आई कुछ भी जनरेट कर सकता है आपके लिए. इफ यू नो हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू ए आई वो चीज़ आपको करके दे सकता है. डेली बेसिस पे वी आर ऑल्सो यूजिंग ए आई इन आर वर्क्स इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई नई टर्म आ रही है तो आई फर्स्ट थिंग वट आई डू इज आई गो ऑन चैट GPT, टेल मी कि वट इज दिस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, देर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ ए आईज एज वेल. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज वन क्लाउड, वो कोडिंग भी कर लेता है, वो आपको मॉडल्स भी बना के दे देगा, वो आपको सारा कैश फ्लोज वगैरह बना के दे देगा. बट अगेन एवरीवन नोस कि एआई इज ओनली एज रिलायबल एज द प्रॉम्प्ट दैट गोज इन. गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी. आप अगर प्रॉम्प्ट अच्छा देंगे उसका आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है. बट देन अगेन यू कैन नॉट रिलाई ऑन एआई आउटपुट. आपको स्टिल वैलिडेशन, स्टिल उस पर एनालिसिस करना ज़रूरी है कि वट एवर द ए आई हैज़ गिवन यू इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग एक्चुअल जॉब्स, आई डोंट थिंक ए आई कैन डू इट बाई इट्सल्फ, ठीक है. देर आर लॉट्स ऑफ मैनुअल इंटरवेंशंस दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस जॉब. यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिजर्व कैलकुलेट करना है कंपनी के लिए कि इतने आपको फॉर एग्जाम्पल इस साल का एक कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजर्व कैलकुलेट करना है. एआई कैन नॉट कम्प्लीटली डू दैट बिकॉज यू हैव टू सेट सर्टेन एजम्पशंस, ठीक है. वो एजम्पशंस सेट कौन कर रहा है? वो एक्चुअरीज सेट कर रहे हैं. मोर्टैलिटी का डेटा कौन रीड कर रहा है? एक्चुअरीज रीड कर रहे हैं. उसके बेसिस पे एजम्पशन सेट कर रहे हैं. एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, काफ़ी चीज़ें हैं. तो काफ़ी मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है. डेफिनेटली एआई विल ग्रो इन द फ्यूचर, बट देन अगेन आई थिंक द जॉब्स विल स्टिल बी सेफ एंड एआई विल बी काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग हैंड इन कंटिन्यूइंग विद आवर जॉब्स.
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग. व्हाट यू फील कि आपके अंदर चेंज हुआ है आफ्टर जॉइनिंग एक्चुअरीज, आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन एक्चुअरीज, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं?
0: राइट, आई थिंक वट आई हैव लर्नड इज बींग एबल टू अंडरस्टैंड पीपल, ठीक है. उनसे बात करना, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इवन अगर मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ तो आई लाइक टू टॉक टू पीपल, सोशलाइज विद देम सब, क्योंकि एंड दिस इज़ अ वेरी एक्चुअल साइंस इज नॉट अ वेरी स्मॉल पर्टिकुलर एरिया जो आप जस्ट आपने फॉर एग्जाम्पल 13 पेपर्स क्लियर कर लिए आपको आ गया. वो इन प्रैक्टिकलिटी व्हाइल यू आर डूइंग योर जॉब इट इज़ वेरी वाइड, इट इज़ वेरी वास्ट, ठीक है. तो देर आर एवरी डे न्यू लर्निंग्स. तो वट एक्चुअल साइंस हैज़ टॉट मी इज़ टू बी ओपन टू लर्निंग, नेवर बी क्लोज अबाउट इट, ठीक है. तो वो चीज़ काफ़ी मेरे अंदर बिल्ड हुई है इससे, ठीक है. वन थिंग दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी इन माई जर्नी एज वेल इज़ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज एक्चुअल साइंस में वन स्किल दैट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी टू हैव इज टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल बी क्रश्ड बाय डेडलाइंस इन योर वर्क एंड यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स एज वेल प्लान्ड फॉर अ पर्टिकुलर डाइट. यू हैव टू मैनेज योर एग्जाम्स, यू हैव टू मैनेज योर वर्कलोड, यू हैव टू मैनेज सम टाइम विद योर फैमिली एंड देन अगेन यू नीड योर पर्सनल स्पेस एज वेल. तो टाइम मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स आई थिंक आई एम स्टिल डेवलपिंग एंड ऑब्वियसली पीपल स्किल्स इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट. तो वो भी मैं साथ साथ सीख रहा हूँ.
1: सो अमेजिंग. आई एम डन विद माई क्वेश्चन. इज देयर एनीथिंग जो मैं नहीं पूछ पाया और आप कहना चाहते हो आपके मन में हो तो प्लीज फील फ्री.
0: नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट अ वेराइटी ऑफ एरियाज. आई थिंक मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्चुअल साइंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वट एक्चुअली एक्चुअल साइंस इज, ठीक है. अभी भी मैं किसी को बताता हूँ कि एक्चुअल साइंस कर रहा हूँ तो फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू एक्सप्लेन दैम कि एक्चुअल साइंस क्या है. देन आई थिंक हम भी ईजिएस्ट वे आउट ढूंढते हैं तो हम बोलते हैं ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है. तो समटाइम्स फील कि अच्छा इंश्योरेंस से रिलेटेड, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज कि अच्छा पॉलिसी बेचते हो आप. बट दैट इज़ नॉट द ओनली जॉब दैट इज देयर इन इंश्योरेंस सेक्टर. देर आर लॉट ऑफ एरियाज, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इन एक्चुअल साइंस मैंने जैसे आई थिंक हमने डिस्कशन में काफ़ी एरियाज कवर करे. वन आई टोल्ड वॉज एजम्पशन सेटिंग, आप एजम्पशन सेट करते हो. प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आप प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हो. प्राइसिंग, आप प्रीमियम प्राइसिंग कैसे होनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिफाइन कर सकते हो. देर इज़ वन रिपोर्टिंग एरिया जहाँ पे आप रिजर्व्स कैलकुलेट कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी. देर इज़ वैल्यूएशन. वी हैव IRDAI, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ईच एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया हैव टू रिपोर्ट टू देम देयर लाइबिलिटीज, व्हाट आर देयर एसेट्स, हाउ दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग. तो वो सारी रिपोर्टिंग भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज किससे करवाती है? वो एक्चुअरीज करते हैं उनके लिए. तो देर आर वाइड एरियाज. रिस्क मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि फ्यूचर रिस्क इवैल्यूएट करना है आपको, दैट यू हैव टू डू. आपको सॉल्वेंसी कैपिटल कैलकुलेट करनी. कैपिटल इज बेसिकली कि आपके पास आज के टाइम पे कितना पैसा होना चाहिए कि आपको क्लाइंट्स मतलब पॉलिसी होल्डर्स के आप क्लेम्स मीट कर सको. तो Actuarial science is not a small area, it's a very wide area. People are working in different areas, and then obviously we have life insurance, general insurance, and property and casualty is also there. Even for example, pensions, gratuity calculations, and employee benefits is also where actuaries play their roles.
1: So this profession, this domain in itself is very big, very vast. All you can think of is just being in love with the mathematics, being in love with the numbers, being in love with the statistics and probabilities. And there are so many options, jaisa Milind ne bataya pura acche se ek professional point of view se humne yahan par isko samajhne ki koshish kari ki agar aap genuinely usko karna chahte ho, if you are interested into it, so you should be in love with the numbers. बाकी इंश्योरेंस क्योंकि डोमेन काफ़ी वास्ट है और काफ़ी सारी नई कंपनीज आ रही हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सो विद दिस चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, प्रोफाइल्स भी फिल्टर आउट हो रही हैं, बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है. सो इफ़ यू आर इन लव विद द नंबर्स, यू कैन एक्सप्लोर दिस डोमेन. द नेम ऑफ दिस डोमेन इज एक्चुअरियल साइंसेज. Just go and check it out. Thank you so much, Milind, for doing this. I loved this session. Honestly, this is one of the sessions jo mujhe bahut maza aaya personally. Maine bahut kuch seekha. Thank you for doing this, man.
0: Thank you, Sagar.
1: All right, dosto, on this note, waqt hai apne show ko apne conclude karne ka. I just hope aapko maza aaya hoga is show mein. Chalte hain phir mulaqat hogi, phir lautenge lekar ek aur show. Lekin tab tak apna khayal rakhiye. Khairiyat se rahiye. This is RJ Sagar signing.
2: Jala. Samundar ki lahron ko dekho, jo baar baar hamare kareeb aakar, jaise keh rahi hoon, ki aao hamare kandhon pe baith jao. ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
3: तो फिर एक वादा करो.
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेले के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं औषधीय गुणों से भरपूर। करेले को सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक औषधि भी माना जाता है। डायबिटीज और शुगर के मरीजों के लिए इसका सेवन बेहद लाभकारी माना जाता है। किसान भाइयों, डॉक्टर भी कई बार मरीजों को करेले का जूस या सब्जी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये खून में शुगर की जो मात्रा है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा करेले में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसका सेवन पाचन शक्ति बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और त्वचा रोगों में राहत देने में सहायक माना जाता है। पथरी, मोटापा, उल्टी दस्त, पीलिया और खूनी बवासीर जैसी समस्याओं में भी इसका उपयोग लाभकारी बताया जाता है, और यही कारण है कि बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो किसान भाइयों, करेले की खेती को कैसे आप बेहतर से बेहतर करके बेहतर से बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं, बताऊंगा, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: से।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, आज बात हो रही है करेले की खेती के बारे में। करेले की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक आय देने वाली खेती मानी जाती है। कई किसानों का कहना है कि इसकी खेती में लगने वाली लागत की तुलना में कई गुना अधिक कमाई हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किसान बताते हैं कि एक एकड़ खेत में करेले की खेती करने पर लगभग 30,000 रुपए तक की लागत आती है, जबकि इससे करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में इसकी लगातार मांग रहने के कारण किसानों को अच्छे भाव मिल जाते हैं। अगर किसान सही समय पर बुवाई करें और फसल की देखभाल भी ठीक तरीके से करें तो उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि अब अधिक किसान करेले की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और भी देखिए किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, जब तक आप उसकी जो तकनीक होती है नहीं समझेंगे तब तक आपकी फसल बेहतर नहीं हो सकती है। आज आपको करेले की खेती के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो इस फसल के लिए ज़रूरी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि करेले की फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और तापमान कैसा होना चाहिए। करेले की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी और अनुकूल तापमान का होना बहुत जरूरी है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी आवश्यक है, क्योंकि पानी का ठहराव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तापमान की बात करें तो करेले की खेती के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन अधिक पानी नहीं होना चाहिए। सही जलवायु और मिट्टी मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक फल देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक यहां होता है।

ही नहीं सकती, होना ही असंभव है, क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने तुम जान के क्या करोगे, अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे। गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेवारी पूछते नहीं, जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या, अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा। ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है, आखिर उनसे न रहा गया, पर उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा, जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा रखोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके, आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं, तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता, सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके, हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वरग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं।

ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूं, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए, तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार हैं, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है, तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है, तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस, एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा, और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते,
जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सतसत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते हैं। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला था। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा, चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते हैं, तो बैटरी से कार शुरू होती है, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती है, फिर तो पेट्रोल से चलती है। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है, ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक, रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे ये मैं तुम्हें कह दूं,
मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आए। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ, स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, अब साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है, तो ही
अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता। मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से जुटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। अब तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर तो भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है,
अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है।

दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा।
संतुष्ट सुमर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुमर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी शाक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक शाक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साथियों और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते,
भगवान ने पूछा फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा। कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है। लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो? पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो। क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय है। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकर हैं, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सासों से हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साख्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना।
जीवन एक है, तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला,
क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो supposedly लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सो कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम, यू नो, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing.
5: Right.
4: क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा.
5: Absolutely.
4: लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है.

0: इसमें मैं कहाँ तक कितना नुकसान, रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
0: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
1: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी है.
1: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
0: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं, और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सिस्टर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है, और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो,
1: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का, उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
0: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
1: क्षमा कर दो, कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना

0: ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. अगर मैं disturbed हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो forgiveness कहाँ, वो possible नहीं। तो वो victim की feeling से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने create किया है, finish भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे physically harm कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहें इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली, मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी और ऐसी जीवन की फिर खोले ठीक का क्या।
1: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
0: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
1: लेकिन जब मैं उस पेन में हूँ।
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड। विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, you know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big
1: I can talk about myself, yeah, at times we start sharing actually itna zyada,
0: aapko pata hai mere sath kya hua, and wo ek record ki tarah play hota jata hai ki jahan jahan baithe logon ke sath apna, jaise bolte hai na, apna rona shuru kar dete hain ki mere sath kya hua, mere sath kya hua, we are not able to move ahead. To mere sath jo hua वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं।
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, because it's kind of a vicious circle. Again, शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज, इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस विक्टिमाइज जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर, अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं, अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है, तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए, लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक,
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो, एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड।
0: एब्सोल्युटली, तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार, और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल, क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो, तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप।
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर, that you know we are able to help somebody.
0: True.
1: Because we would like to help somebody.
0: Right, but we're not really helping.
1: Yes.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga? Ya even ye kehna, koi baat nahi, sab theek ho jayega. Matlab, it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi, sab theek ho jayega, wo theek hai. But by saying that, we're saying ke abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake. सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है देन वी आर एबल टू फिनिश इट
1: का बहुत बहुत धन्यवाद
0: ओम शांति
1: ओम शांति